मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 6 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है मंगल ध्वनि के साथ।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं प्रस्तुत हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ

0: अपनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है आज का विचार अद्वैत दर्शन पर। वाचक स्वर हैं डॉक्टर छगन मोहता के।
2: भारतीय अध्यात्म की दार्शनिक परंपरा में सर्वोच्च स्थान वेदांत दर्शन का माना गया है। वेदांत दर्शन में सर्वश्रेष्ठ स्थान अद्वैत का है। अद्वैत के दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार विश्व की परम सत्ता को सच्चिदानंद अद्वैत और अपरिछिन्न यानी असीम अनंत अनादि और अथाह कहा गया है। ये सत्ता अपने पारमार्थिक रूप में प्रकृति और उसके परिणाम रूपी संसार से परे यानी अतीत होते हुए भी वह उसका अधिष्ठान और आधार भी है। यही सत्ता व्यावहारिक रूप में समस्त अव्यक्त प्रकृति में और उसके प्रकट परिणाम तमाम वस्तु व्यक्ति और घटनाओं में ओतप्रोत रूप से व्यापक रहती है। प्राणी मात्र अपने जीवन की समस्त प्रक्रियाओं में इसी सत्ता को उपलब्ध करने या उसका साक्षात्कार करने में संलग्न देखा जाता है। उसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है। एक ये परम सत्ता सतरूप है और उस सत का लक्षण ये है कि भूत भविष्य और वर्तमान किसी भी काल में जिसका अभाव न हो। प्रत्येक मनुष्य व प्रत्येक प्राणी इस सत्ता में व्याप्त और कार्यरत होने का संकेत यही दिखाता है कि प्रत्येक प्राणी जीवित रहना चाहता है। अपना अभाव या मृत्यु कोई भी नहीं चाहता। ये सत्ता चित स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप है, इसलिए प्रत्येक प्राणी निरंतर कुछ न कुछ जानना चाहता है। मनुष्य में पाई जाने वाली जिज्ञासा वृत्ति इसी का संकेत है। परम सत्ता आनंद स्वरूप भी है, इसलिए प्रत्येक प्राणी सुखी रहना चाहता है, कोई भी दुखी रहना नहीं चाहता। प्राणी मात्र की चेष्टा दुख के निवारण और सुख प्राप्ति के लिए ही होती है, जो उसमें आनंद तत्व के निहित होने का संकेत है। ये सत्ता अपरिछिन्न और देशकाल वस्तु से सीमित या बाधित नहीं है, इसलिए प्रत्येक प्राणी विशेषतः मनुष्य मात्र अपने देशकाल और परिस्थिति की बाधाओं का अतिक्रमण करके उससे मुक्त होना चाहता है। ये इस बात का संकेत है कि मनुष्य किसी प्रकार की सीमा या बंधन को इसलिए स्वीकार नहीं करता क्योंकि परम सत्ता सर्वथा निर्बंध और मोक्ष स्वरूप है और वह प्रत्येक के हृदय प्रदेश में क्रियाशील है। परम सत्ता अद्वय अर्थात अद्वैत स्वरूप है, जिसका भावार्थ यह है कि उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वास्तविक सत्ता नहीं है और वही अद्वय सत्ता वस्तु मात्र प्राणी मात्र और मनुष्य मात्र में व्यापक और क्रियाशील है। इसलिए प्रत्येक वस्तु प्राणी और मनुष्य की गति अपने को बेजोड़ अनुपम और अद्वितीय सिद्ध करने की ओर पाई जाती है। संसार के किसी भी एक जाति के वृक्ष फल और उसी एक ही जाति के प्राणियों के आकार प्रकारों में बहुत कुछ समानता होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति विशेष में कुछ न कुछ विशेष प्रकार का अंतर

0: पाया जाता है जो उसके विशिष्ट होने की ओर इंगित करता है। मनुष्य में तो ये विशेषता और भी अधिक स्पष्ट रूप से उपलब्ध होती है। किसी भी मनुष्य का चेहरा सर्वथा किसी दूसरे मनुष्य से नहीं मिलता। किसी भी मनुष्य के अंगूठे के निशान किसी दूसरे व्यक्ति के अंगूठे के निशान से नहीं मिलते। और मानसिक गुण व क्षमता में तो ये अंतर बहुत अधिक मात्रा में स्पष्ट रूप से पाया जाता है। प्रत्येक मनुष्य को इस बात का एहसास भी है कि वह अपने आप में अनुपम, अद्वितीय और बेजोड़ है, और इसी अद्वितीयता को वह अपनी बोलचाल और शैली के द्वारा भी निरंतर सिद्ध करने में लगा रहता है। निष्कर्ष ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने में व्याप्त परम तत्व को ही प्राप्त करने की ओर गतिशील है। आदर्श समाज व्यवस्था व राज्य व्यवस्था ही नहीं किंतु आदर्श परिवार व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सुख सुविधा पूर्वक ज्ञान का उपार्जन करता हुआ अपनी अधिक से अधिक बाधाओं का निराकरण करके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने को स्वतंत्र और अद्वितीय सिद्ध कर सके।
1: अभी आपने सुना आज का विचार अद्वैत दर्शन पर। वाचक स्वर थे डॉक्टर छगन मोहता के। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। कार्यक्रम के आज के अंक में आप सुनेंगे बालकांड की दोहा संख्या 215 की पहली चौपाई से दोहा संख्या 217 तक का सस्वर पाठ। गायक कलाकार हैं ए हरिहरन, संगीतकार सतीश भाटिया।
1: एपिसोड 80 8 0।

अपने दोनों शिष्यों श्री राम लक्ष्मण तथा अन्य मुनियों के साथ मुनिवर विश्वामित्र जनकपुर पधारे हैं। ये समाचार पाकर मिथिलेश जनक अपने श्रेष्ठ आत्मियों के साथ उनके दर्शनों के लिए आए। मुनिवर के चरणों में शीश रखकर राजा ने आशीष पाया। उसी समय श्रीराम और लक्ष्मण जो फुलवाड़ी देखने गए थे वहां आ पहुंचे। सुकुमार, किशोरावस्था तथा श्याम और गौर वर्ण वाले कुमारों का चित्त चुराने वाला रूप देख तथा उनके तेज से प्रभावित होकर सभी उठकर खड़े हो गए। श्रीराम की मधुर मनोहर मूरत देख विदेह जनक को अपनी तनमन की सुदबुद्ध न रही। उन्होंने उन दो किशोरों का परिचय पूछा जिन्हें तब तक मुनि विश्वामित्र ने बड़े स्नेह के साथ अपने पास बिठा लिया था। मुनिवर ने राजा जनक की जिज्ञासा शांत की। वे दोनों रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं जिन्हें ऋषि मुनियों के जप तप को निर्विघ्न करने के लिए महाराज ने उनके साथ भेजा है। दोनों भाई रूप, शील और बल के परम धाम हैं। महाराज जनक दोनों राजकुमारों को देखकर जैसे आघाते नहीं।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

दिन के 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे सोशल मीडिया के उपयोग में सावधानियां, मेनोपोज के दौरान शारीरिक बदलाव, लक्षण और उपाय, विश्व जूनोसिस दिवस, बाबू जगजीवन राम पुण्यतिथि, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती। कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रीमती अरुणा भार्गव की वार्ता, विषय महिलाएं और बाल संरक्षण। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा खुद के लिए समय निकालें। लघु जानकारी के विषय रहेंगे युवाओं और नेतृत्व कौशल, गग्गर नदी, लोक कला पिछवाई, कुछ समय प्रकृति के साथ गुजारें। शाम 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे इस सप्ताह के कृषि कार्य, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं वन महोत्सव सप्ताह, महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं, खराब मौसम में अपना व पशुओं का बचाव कैसे करें।

सुबह 8:30 पर हमारी इसी सभा में सौरभ कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ताकार कप्तान चंद्रचारण की वार्ता, विषय वाहन बीमा की आवश्यकता और लाभ। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग NCERT।

दिन के 12:10 पर आप सुनेंगे मैनचेस्टर का अंत शीर्षक पर नाटक, लेखक श्री राजेश मोहता, और रात्रि 10 आप सुनेंगे रविवारीय अखिल भारतीय संगीत सभा, कलाकार पंडित कैलाश चंद्र शर्मा।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर, सुबह 10 बजे, दिन के 12:40 पर, दोपहर 2:30 पर, शाम 6:05 पर, रात्रि 8 बजे, रात्रि 9:15 पर और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम में पुरानी फिल्मों से गीत।

0: ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम खेती की बातें, खेती बाड़ी में पादप हार्मोनों का महत्व विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा।
1: किसान भैया राम राम। आज बात करें खेती बाड़ी में पादप हार्मोन रे महत्व बारे में। पादप हार्मोन जो है पौधे री बढ़वार वास्ते बहुत ही जरूरी है। पौधे रे ऊपर बढ़ोतरी और नीचे रे बढ़ोतरी सब रे वास्ते जरूरी है। पत्ती और तने रे विकास, फल विकास, यानी पकड़ो, पादप री आयु, पादप री मृत्यु यानी कि कम आयु, इस सब ने पादप हार्मोन नियंत्रित करे। दुनिया भर में किसान जो है कई तरीका अपनाए करे ताकि पौधे री बढ़वार रे मैंने आशा अनुरूप वे प्रयोग कर सके। और इसार मैंने सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है पादप हार्मोन और प्रयोग। हालरा सालर मैंने पादप शरीर विज्ञानी जगह है पतो लगाया हुआ की पादप हार्मोन कृषि मैंने, बागवानी मैंने, पेमीकल्चर मैंने और कृषि से संबंधित जगह क्षेत्र है इन मैंने आप विशेष महत्व क्या करें। पौधेरी जकी क्रिया प्रतिक्रिया है, उपापचय है, इस सगला ने पादप हार्मोन नियंत्रित क्रिया करे। प्राकृतिक हार्मोन तो पौधे रे मायने बढ़िया करे है, पर आज वैज्ञानिक जगह कई सिंथेटिक हार्मोन या कृत्रिम हार्मोन रे भी पहचान करी है जका की प्राकृतिक हार्मोन आर दे बढ़वार रे मायने योगदान दिया करे। पादप हार्मोन जो है इस बारे में अनुभव से पतो चलियो है कि ए हार्मोन कृषि उद्योग है इन मैंने आप री एक अमिट छाप रखा करे। यारे उपयोग रे आधार पर, यारे कामा रे आधार पर पादप हार्मोन री कई श्रेणियां बांटुड़ी है। इस श्रेणी में मैंने शामिल है जहाँ ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन, एबिसिक अम्ल, एथिलिन अम्ल और फ्लोरिजिन हार्मोन। पौधेरी जैविक क्रिया के बीच समन्वय रखने वास्ते रासायनिक पादप हार्मोन जो है ए पौधेरी बढ़वार रे मैंने या यारी उम्र रे माथे असर रखा कर। पौधे रे ई हार्मोन रो एक दूसरो नाम है फाइटो हार्मोन। ए पौधा रा हरेक अंग रे मैंने बहुत ही कम मात्रा में सूक्ष्म मात्रा में पहुंच और बठेरी उपापचय क्रिया ने ई तरह से नियंत्रित और प्रभावित करे कि पौधे रे बढ़वार रे मैंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। तो पादप हार्मोन रा कई समूह है इन मैंने सबसे पहली बात करा पा ऑक्सिन समूह मत है। एक कार्बनिक यौगिक समूह है जका पौधा रे मैंने कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन रे मैंने भाग लिया करे। इंडोल एसिटिक अम्ल और नेफ्थलिन इरा प्रमुख उदाहरण है। तने रे मैंने जकी तरफ ऑक्सिन रे मात्रा ज्यादा है बी तरफ बढ़ोतरी ज्यादा हो जावे तो कई बार पौधे रे मैंने एक तरफ ऑक्सिन रे मात्रा ज्यादा होने से पौधे रे तनु एक तरफ बढ़ जावे और वो धीरे धीरे चाल झुकन लाग जावे। पौधा जड़ा रे मैंने अगर इरी अधिकता हो जावे तो जड़ा ज्यादा बढ़ने लाग जाए। इस स्थिति में मैंने पौधे रो ऊपर रो भाग एक बार बढ़ोतरी करनो रुक जावे और निचली जड़ा जकी है ज्यादा बढ़न लाग जावे। ऑक्सिन

कोशिका रे बढ़ोतरी इरे सागे सागे तनेरी बढ़ोतरी में भी सहायक है और जड़री बढ़ोतरी ने भी नियंत्रित करें। बीज रहित फल जगह है बिहारे बीज उत्पादन में भी सहायक है। पत्तियारे झड़ने और गिरने माथे भी ऑक्सीजन नियंत्रण रखे। गेहूं और मक्का मैंने खरपतवार नाशक रो काम भी करिया करें। हारमोन री अगली श्रेणी है जिब्रेलिन्स, वो एक जटिल कार्बनिक यौगिक है और इरो उदाहरण है जिब्रेलिक अम्ल। इरो काम ओ है कि ओ पौधा मैंने जका बीज रहित भाग व्या करे है और बीज अगर सुतीरी अवस्था मैंने जकने सुसुप्त अवस्था क्या करे इसी स्थिति में इस सुतुड़ा बीजा ने जगा देवे यानी सुसुप्त अवस्था ने यानी भंग कर देवे और पौधे रे बीजारी बढ़वार मैंने सहयोग देवे बीजारे अंकुरण मैंने भाग लेवे। सागे सागे ओ पौधे रे लंबाई बढ़ाने मैंने तनेरी लंबाई बढ़ाने मैंने भी ओ सहायक है। पौधारे हार्मोन री अगली श्रेणी है साइटोकाइनिन और एक क्षारीय प्रकृति का हार्मोन है और ओ पौधारी जड़ारे अगला सिरन में होया करे और इसमें कोशिका विभाजन होया करे। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन वास्ते एक जरूरी हार्मोन है और ओ पौधेरे किनारे रे तरफ बढ़वार मैंने सहयोग दे और सागे सागे बीजारे अंकुरण ने भी प्रेरित करिया करे। अगली श्रेणी है एबीसीसिक अम्ल और एक वृद्धि रोधी हार्मोन है जो

0: काम ओ है कि ओ पौधर मैंने जका बीज रहित भाग व्यक रहे है और बीज अगर सुतुर अवस्था मैंने जका ने सुसुप्त अवस्था क्या करे इसी स्थिति में इस सुतुड़ा बीज ने जगा देवे यानी सुसुप्त अवस्था ने यानी भंग कर देवे और पौधे रे बीजारी बढ़वार मैंने सहयोग देवे बीजरे अंकुरण मैंने भाग लेवे सागे सागे ओ पौधे रे लंबाई बढ़ाने मैंने तनेरी लंबाई बढ़ाने मैंने भी ओ सहायक है। पौधा रे हार्मोन री अगली श्रेणी है साइटोकाइनिन और एक क्षारीय प्रकृति का हार्मोन है और ओ पौधा रे जड़ रे अगला सिरन में होया करे और इसो कोशिका विभाजन होया करे। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन वास्ते एक जरूरी हार्मोन है और ओ पौधे रे किनारे रे तरफ बढ़वार रे मैंने सहयोग दे और सागे सागे बीजा रे अंकुरण ने भी प्रेरित करिया करे। अगली श्रेणी है एबीसीसिक अम्ल और एक वृद्धिरोधी हार्मोन है जो को बढ़ोतरी ने रोके ओ एक अम्ल है जो पौधे की बढ़ोतरी ने रोके है और सागे सागे जका पौधा रा रंध्र है यानी खुलने और बंद करने ने नियंत्रण करे। बीज और कलियां जका है यानी सुसुप्त अवस्था है यानी कि सुवर्ण री अवस्था में लिया हुए पौधे री झड़ने री क्रिया ने नियंत्रण करे और सागे सागे फूल और फल रे पकने री क्रिया ने भी नियंत्रण करे। हार्मोन री अगली श्रेणी है एथिलीन जो कि गैसीय रूप में मैंने पौधे रे मैंने पाई जा करे और आ पौधे रे लगभग हर भाग रे मैंने विद्यमान होया करे यानी कि मौजूद होया करे। आ पौधे री चौड़ाई ने नियंत्रण करे पौधे री चौड़ाई रे मैंने बढ़ोतरी करे सागे सागे पत्तियां और फल रे झड़ने री क्रिया ने भी नियंत्रण करे। पौधे रे कई भागा ने जका सुसुप्त अवस्था है बिना खत्म करे और अंकुरण वास्ते प्रेरित करे और फल ने पकने रे मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण एथिलीन री भूमिका होया करे। अगली श्रेणी है जके ने फ्लोरिजिन्स किया करे फूला ने अंग्रेजी में फ्लोवर किया करे ई फ्लोवर रे माथे इर नाम पड़ोड़े फ्लोरिजिन्स ओ हार्मोन फूला रे खिलने ने नियंत्रित किया करे इर वास्ते इर नाम फ्लोरिजिन्स हार्मोन राख्योड़े है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में खेती बाड़ी में पादप हार्मोनों का महत्व विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक भजन।

अभी आप सुन रहे थे लोक भजन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।

0: अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अपरतः आगामिषु द्वित्रिदिनेषु राष्ट्रियराजधान्यां दिल्ल्याम्, उत्तरप्रदेशे, पंजाबे, चण्डीगढ़क्षेत्रे विकीर्णरूपेण वृष्टिः सम्भाव्यते। विम्बल्डन् टेनिस् प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बियादेशस्य लब्धप्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक् जोकोविचेन रूसदेशस्य रोमन् सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकलक्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परम् असौ फेलिक्स् नगरे उत डेविवोचिस् इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमारू चैनल है। सुबह के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम सुप्रभात।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, आप हमारे नियमित श्रोतागण हैं और रोज़ाना सुबह 7 बजे सुप्रभात कार्यक्रम में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, फिट रखने के लिए कई जानकारियां प्रोग्राम के हर एक अंक में आप रोज़ सुनते होंगे, उन्हें अपनाते होंगे। उस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम यकीनन ये कह सकते हैं कि आप नियमित रूप से योगा करते हैं और साफ सफाई का, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए आपके जीवन के वर्क प्लेस पर, हर एक कार्य स्थल पर अपने आप को हिट रखने के लिए आप हमारी बातों को निश्चित रूप से अपनाते होंगे और हर क्षण हर पल अपनी डाइट के साथ में, अपनी एक्टिविटीज़ के माध्यम से आप यह कोशिश जरूर करते होंगे कि आप सदैव स्वस्थ रहें, सदैव निरोगी रहें, सदैव फिट रहें। और एक कोशिश शायद यह भी करते होंगे कि अपने अंतर्मन से, अपने मन से किसी भी प्रकार का मानसिक विकार, ईर्ष्या, द्वेष, तुलना, एक्सपेक्टेशन और किसी की बुराई करना, चुगली करना जैसे विकारों से भी आप दूर रहते होंगे। हर पल हर क्षण ये कोशिश करते रहेंगे कि आपके चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट रहे और आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। आज के संदर्भ में चूंकि हम बहुत ज़्यादा स्पीड से जुड़ चुके हैं, 5G स्पीड को हम फॉलो करते हैं, ऐसे में हम किसी को वक्त नहीं दे सकते, किसी के साथ में बातों को साझा करने के लिए हम लंबा समय स्पेंड नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते, तो फिर हम यह कोशिश जरूर कर सकते हैं कि हमारी किसी भी एक्टिविटी की वजह से, हमारे किसी भी कार्य की वजह से, हमारे किसी भी शब्द की वजह से किसी के मन को चोट ना पहुंचे और किसी का मन दुखी ना हो। हर पल हर क्षण यह कोशिश करें कि वह स्माइल, वह मुस्कुराहट, जब आप किसी के सामने उस मुस्कुराहट के साथ में बात करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति का मन में भी खुशी आएगी निश्चित रूप से। तो कोशिश करें कि सदैव मुस्कुराते रहें, कोशिश करें कि आप सदैव स्वस्थ रहें और छोटी मोटी बीमारियों से बचने के लिए स्वच्छता का पालन करें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए बेहतरीन डाइट।

जरूर लें। बावजूद इसके श्रोताओं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमें जानवरों से मिल जाती है, चाहे वे पेट एनिमल्स आपके पालतू हों, आपने घर में पाल रखे हों, या फिर गली मोहल्ले में रहने वाले जीव जंतु ही क्यों ना हो, या फिर कुछ ऐसे पशु पक्षी एवं जीव जो अनायासी आपके फूड या आपकी लाइफस्टाइल में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं और उनकी वजह से आपके शरीर में कोई संक्रमण जन्म ले लेता है और आप रोग का शिकार बन जाते हैं। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारा फूड और हमारी बॉडी एनिमल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, और अगर आती भी हैं तो हमें उनके टीकाकरण का विशेष रूप से ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे डिजीज़ के कॉजेज हैं, कारण हैं, जो हमें पशुओं से ही आते हैं। पूरी धरती के, पूरी दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं उसका 60% हिस्सा पशुओं के माध्यम से ही उत्पन्न होता है, और इन पशुओं से होने वाली बीमारियों को पशुजन्य रोग कहते हैं। इन्हें जूनोसिस भी कहा जाता है, और आज यानी कि 6 जुलाई को पूरी दुनिया में विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। इसका जो खास उद्देश्य है वो मुख्य रूप से यह कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों के बारे में आम जन में जागरूकता पैदा की जाए। 6 जुलाई का यह दिवस फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर को समर्पित है। इन्होंने 6 जुलाई 1885 को रेबीज के खिलाफ पहला सफल टीका भी विकसित किया था। हमारे घर में जो हम दूध लेते हैं उसको हम गर्म करते हैं, उबालते हैं, और फिर उसके बाद में हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। निश्चित रूप से यह हर एक घर में होता होगा कि दूध को बॉयल जरूर किया जाता है। उसके पीछे भी खास कारण यह है कि जो दूध हमें पशुओं से मिला है उस दूध के हमारे घर तक पहुंचने में सैकड़ों हजारों बैक्टीरिया से कांटेक्ट होता है, और उन बैक्टीरिया को जब एक बार उन बैक्टीरिया वाले दूध को जब एक बार उबाल लिया जाता है तो उस दूध में जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए दूध को उबालना ज़रूरी है, और जो व्यक्ति बीमार हैं या बीमार नहीं भी हैं, अगर वे चाहते हैं कि आपका जो पानी है वह स्वच्छ हो तो वह पानी भी हमें हमेशा उबाल करके ही पीना चाहिए, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया हैं वे खत्म हो जाए। आज 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम पशुजन्य जितने भी रोग हैं उनसे बचें और उनके प्रति आमजन में जागरूकता पैदा हो। जितने भी जूनोटिक रोग हैं उनमें पहला जो रोग है वह रेबीज है, जो कि ला इलाज है। समय पर अगर इसके वैक्सीन्स वाले इंजेक्शन लगवा लिए जाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर समय निकल जाता है तो फिर यह लाइलाज हो जाता है और इस रेबीज वायरस से ग्रसित व्यक्ति को मृत्यु का ग्रास बनना ही पड़ता है। यह कुत्ते और बिल्ली के काटने से होता है। कोविड-19 के बारे में हम पूरा वर्ल्ड जानता है, 2020 में जो आपदा हमने झेली कोविड-19 की वजह से वह भी जानवरों से मनुष्यों तक पहुंची। निपाह वायरस, इबोला, एंथ्रेक्स, स्वाइन फ्लू, यह वो मुख्य पशुजन्य रोग हैं जिन्होंने मानव सभ्यता को अत्यधिक चोट पहुंचाई, अत्यधिक नुकसान किया। ऐसे में श्रोताओं, हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि अगर कोई पशु हमने घर में पाल रखा है तो हम उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएं। अगर वैक्सीनेशन करा रखा है बावजूद इसके अगर उसको कोई छोटी मोटी बीमारी हो गई है, चाहे वह गाय है, चाहे वह भैंस है, चाहे वह बकरी है, चाहे वह भेड़ है, चाहे वह आपका घर में पाला हुआ कुत्ता भी क्यों ना हो, अगर उसको कोई बीमारी हो गई है तो तुरंत से उसका इलाज करवाएं और प्रॉपर वैक्सीनेशन

ताकि उनकी लार में जो वायरस होता है वह हम तक न पहुंच पाए और हम पशुजन्य रोगों से बच पाए। आज 6 जुलाई को मनाया जाने वाला यह विश्व जूनोसिस दिवस विशेष रूप से पशुजन्य रोगों के प्रति आमजन में चेतना और जागरूकता पैदा करने के लिए बनाया जाता है। हम चाहते हैं हमारी हर एक क्षण, हर एक प्रोग्राम के हर एक एपिसोड में ये कोशिश रहती है कि हमारे तमाम श्रोतागण दुनिया के चाहे किसी भी कोने में क्यों न बसते हों, वे सदैव स्वस्थ रहें। इसलिए हम आपसे ये जानकारियाँ साझा करते हैं और हमारा एक फर्ज यह भी है कि जानकारियों के साथ में हम एंटरटेनमेंट भी निश्चित रूप से करते हैं। तो सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये पहला गीत।

माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।

श्रोताओं, आज 6 जुलाई यानी कि आज के दिन हमारे भारत देश के एक बहुत ही विशेष व्यक्ति के जन्मदिवस जन्मतिथि से जुड़ा हुआ है। और 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई जाती है। 6 जुलाई को इनका जन्म सन 1901 में हुआ था। यह एक भारतीय बैरिस्टर, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, हिंदुत्व कार्यकर्ता और राज्य एवं राष्ट्रीय सरकारों में मंत्री थे। कांग्रेस का विरोध करने के बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें नियुक्त किया। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध के लिए जाने जाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू महासभा से संबंध तोड़ने के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया। नेहरू से मतभेद होने के बाद भी लियाकत नेहरू समझौते का विरोध करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद से उन्होंने सन 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना भी की। वे बंगाल प्रांत के वित्त मंत्री रहे, बंगाल विधान परिषद के सदस्य रहे और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति रहने के साथ

साथ साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। आपकी मृत्यु 23 जून 1953 में मात्र 51 वर्ष की आयु में हो गई थी। वे 1943 से 1946 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। 1953 में जब उन्होंने राज्य की सीमा पार करने की कोशिश की तो उन्हें जम्मू और कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक तौर पर उस समय दिल का दौरा पड़ने की सूचना मिलने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और ठीक एक दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। आप भारतीय जनसंघ के उत्तराधिकारी भी रहे, इसलिए मुखर्जी को भाजपा के सदस्यों द्वारा भाजपा का संस्थापक भी माना जाता है। नमन है ऐसी पर्सनैलिटी को जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, और आज उन्हीं की वजह से हम स्वतंत्रता की आबोहवा में अपना जीवन जी रहे हैं और आपके मार्गदर्शन की वजह से ही हम जीवन के हर क्षेत्र में नए आयाम, नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शीर्ष लेवल के स्वतंत्रता सेनानी और इतनी महानता, इतनी महान सोच वाले व्यक्तित्व की वजह से आज हर एक भारतीय व्यक्ति का जनजीवन व्यवस्थित है और सुरक्षित है।

श्रोताओं, बारिशों का मौसम जल्द ही शुरू होने वाला है। ऐसे में इस बार की बारिशों में दो काम जरूर करें, निश्चित रूप से करें। पहला काम तो यह कि इस बार हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को ज़रूर अपनाएंगे। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए बारिश के पानी का संरक्षण ज़रूर करेंगे। अपनी छतों को साफ़ करके घर में ऐसा भूमिगत टैंक जरूर बनवाएंगे जिसमें हम बारिश का पानी स्टोर कर सकें और जो अत्यधिक पानी बरसता है उसको नालों में, गंदे नालों में जाने की बजाय उसे भूमि में पहुंचाएंगे ताकि जो भूमिगत पानी है वह रिचार्ज हो सके और वर्षा के इस जल संरक्षण से वह भूमिगत वाटर का जो लेवल है वह ऊपर आ सके। और दूसरा काम, वर्षाओं को बुलावा देने का जो पेड़ काम करते हैं वह वृक्ष जरूर लगाएंगे। हम किसी को अगर हॉस्पिटल में एक केला या बिस्किट का पैकेट देते हैं तब भी अपने बड़े बड़े

फोटो छपवाते हैं, अखबारों में, सोशल मीडिया में देते हैं। ये वृक्ष हमें निशुल्क सारी जिंदगी प्राणवायु के साथ फ्रूट्स देते हैं, अनाज देते हैं, बावजूद इसके वह अपना फोटो किसी भी अखबार और सोशल मीडिया में नहीं छपवाते। हमें वृक्षों से सीखना चाहिए, हमें पशु पक्षियों से सीखना चाहिए, हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। सीखने को तो हम किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं और जीवन की किसी भी पड़ाव में सीख सकते हैं, किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, बशर्ते वह सीख आपको, आपकी आने वाली संततियों और आपके जीवन को संवारे। ऐसी शिक्षा हमें जरूर लेनी चाहिए। बातों को देते हैं विराम, क्योंकि कार्यक्रम का वक्त हो रहा है पूरा। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है साथी। स्वर हैं अनुराधा पोडवाल और जॉली मुखर्जी के।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मोहरा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। स्वर थे अलका याग्निक और उदित नारायण के। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है यस बॉस। स्वर हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के।

फना फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। शान और कैलाश खेर की आवाज़ों में कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है गजनी, स्वर है जावेद अली का।

0: तेरी कमर पे।
1: फिल्म एक पहेली लीला में नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात और

0: द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्याकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। कार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
4: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्ष

0: अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
1: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। ये बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: भारत असम के गुवाहाटी में दो दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
2: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
3: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में SIT की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।

0: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है सौरभ कार्यक्रम में वार्ता, विषय है वाहन बीमा की आवश्यकता और लाभ। वार्ताकार हैं कप्तान चंद चारण।
1: वाहन बीमा की जानकारी सभी चालकों और व्यक्तियों को होनी चाहिए। इसके अभाव में दुर्घटना के बाद बहुत सी परेशानियों से जूझना पड़ता है, जो कि विधिक व सामाजिक हो सकती हैं। अतः आज हम जानेंगे वाहन बीमा की आवश्यकता और लाभ क्या हैं। वाहन बीमा में हमें अनेक लाभ दिखते हैं एवं आप बीमा करवाने से यातायात नियम को तोड़ने से बच जाएंगे, क्योंकि कोई वाहन बीमा बिना किसी बीमा योजना के रोड पर नहीं चल सकता है। आपके बीमा नहीं करवाने से फाइन देना होगा, फाइन नहीं देने पर गाड़ी जब्त की जा सकती है। आप वाहन चोरी होने के खतरों से बच जाएंगे। वाहन चालक को वाहन के साथ ही एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी करवाना चाहिए। आपके वाहन से किसी को चोट लग जाए या किसी की संपत्ति को हानि होती है तो अगर वाहन का इंश्योरेंस है तब तो क्लेम सेटलमेंट होता है, और इंश्योरेंस नहीं होने पर आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए वाहन बीमा अपनी और दूसरों की संपत्ति और जिंदगी के लिए जरूर करवा लें। आप और हम रोजाना एक जगह से दूसरी जगह जाने तथा यात्रा करने व घूमने फिरने के लिए कई प्रकार के वाहनों का इस्तेमाल करते हैं तथा यात्रा करते समय सड़क पर कई प्रकार के खतरे बने रहते हैं। वाहन बीमा हमें इसी प्रकार के खतरों या दुर्घटना के मामले में हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करता है। वाहन दुर्घटना में यदि किसी व्यक्ति या चालक की मृत्यु होती है तो बीमा कंपनी उस व्यक्ति के लाभार्थी या परिवार को एक मुश्त राशि का भुगतान करती है, जिससे परिवार को आर्थिक संबल मिलता है। किसी दुर्घटना या हादसे में आपके वाहन को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उस नुकसान को बीमा कंपनी द्वारा कवर किया जाता है। इससे आप अनावश्यक खर्चे से बच जाते हैं। यदि आपके बीमा किए गए वाहन से किसी थर्ड पार्टी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचता है तो उस नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी द्वारा की जाती है। बीमा कंपनी आपको कानूनी देनदारियों से मुक्त रखती है। किसी दुर्घटना में आपको कोई चोट लगती है या आप गंभीर रूप से घायल होते हैं तो बीमा कंपनी आपके हॉस्पिटल के खर्च तथा आपके अन्य मेडिकल खर्च का भुगतान करती है। वाहन बीमा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, अब ये जानते हैं। वाहन बीमा के रूप में सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना ही अनिवार्य होता है। यह आपके वाहन से किसी दूसरे वाहन या व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर आपकी मदद करता है, लेकिन अगर आप अपने खुद के वाहन या शरीर को नुकसान पहुंचने पर भी मदद चाहते हैं तो फिर आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में आपको दूसरों के साथ साथ खुद के वाहन को नुकसान का भी मुआवजा मिलता है। इसी तरह कई अन्य तरह की बीमा सुरक्षाएं जुड़वाने के साथ के विकल्प भी होते हैं। कुल मिलाकर आपको चार तरह की बीमा सुरक्षा लेने के विकल्प उपलब्ध होते हैं। नंबर एक, थर्ड पार्टी बीमा, ये कानूनी रूप से अनिवार्य है। नंबर दो, कॉम्प्रिहेंसिव बीमा। नंबर तीन, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। और नंबर चार, अतिरिक्त बीमा सुरक्षा। वाहन बीमा को मोटर इंश्योरेंस के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार के बीमा में सभी प्रकार के वाहनों का बीमा किया जाता है, जिसमें निजी वाहन, फोर व्हीलर, टू व्हीलर तथा कमर्शियल वाहन भी शामिल होते हैं। वाहन बीमा में आपके वाहन के साथ कोई दुर्घटना, चोरी या अन्य मामले में आपको आपके वाहन के नुकसान से संबंधित आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करता है। वाहन दुर्घटना के दौरान आपको किसी प्रकार की चोट लगती है तो वह भी इस बीमा के तहत कवर की जाती है। वाहन बीमा के अंतर्गत आपके बीमा किए गए वाहन के साथ किसी प्रकार का कोई नुकसान, दुर्घटना या चोरी होती है तो बीमा कंपनी द्वारा आपको भुगतान किया जाता है। बीमा के पकड़े जाने पर जुर्माना या जेल हो सकती है। बिना बीमा के पकड़े जाने पर जुर्माना या जेल हो सकती है। भारत में मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत हर वाहन मालिक को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अर्थात तृतीय पक्ष बीमा लेना अनिवार्य है। अगर कोई वाहन सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर बिना थर्ड पार्टी बीमा के चलते हुए पकड़ा जाता है तो वाहन मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको 2000 रुपये तक जुर्माना या 3 महीने की

जेल हो सकती है या फिर दोनों सजाएं एक साथ भी हो सकती हैं। यदि यही अपराध आप दोबारा करते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर 4,000 रुपए तक का जुर्माना या 3 महीने तक की जेल हो सकती है या फिर दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती है। अब जानते हैं वाहन बीमा कैसे काम करता है। यह बीमा कंपनी और मोटर मालिक के बीच का एक अनुबंध होता है जिसके तहत बीमा कंपनी आपके वाहन की दुर्घटना होने की स्थिति में आपके वाहन और आपके साथ हुए नुकसान की भरपाई करते हैं। जैसे कि आपको कोई नया वाहन खरीदा और उस वाहन का आपने वाहन बीमा करवाया है तो ऐसे में यदि आपकी आपके वाहन की कोई दुर्घटना हो जाए तब बीमा कंपनी आपको आपके वाहन का नुकसान तथा आपको लगी चोटों को कवर करती है और आपको आपके नुकसान और आपको लगी चोटों का भुगतान भी करती है। इसके अलावा वाहन बीमा पॉलिसी में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत दुर्घटना में किए गए वाहन के नुकसान को बचाने के लिए थर्ड पार्टी की संपत्ति पैदल यात्री को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वाहन बीमा में 2 प्रकार के कवर होते हैं, थर्ड पार्टी बीमा और कंप्रिहेंसिव बीमा या पैकेज पॉलिसी। पहले बात करते हैं थर्ड पार्टी बीमा के बारे में। थर्ड पार्टी दुर्घटना बीमा में किसी तीसरे पक्ष के नुकसान को कवर किया जाता है। इस प्रकार के बीमा में आपके बीमा किए गए वाहन के कारण किसी तीसरे पक्ष यानी थर्ड पार्टी व्यक्ति को संपत्ति को नुकसान को कवर किया जाता है। थर्ड पार्टी एक्ट के अनुसार किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को होने वाले नुकसान जैसे दुर्घटना में गंभीर चोट, विकलांगता या मृत्यु होने पर थर्ड पार्टी को मुआवजा देना अनिवार्य है। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सड़क पर वाहन चलाने के लिए लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी होना जरूरी है। यदि किसी थर्ड पार्टी व्यक्ति को नुकसान, चोट या उसकी संपत्ति का नुकसान होता है तथा वह उस नुकसान के लिए दावा करता है तो आपको उसके नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है। थर्ड पार्टी व्यक्ति के हुए नुकसान की राशि को अदालत द्वारा तय किया जाता है, इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपकी और तीसरे पक्ष के व्यक्ति के हुए नुकसान का भुगतान करती है। इसमें बीमा किए गए वाहनों के नुकसान को कवर नहीं किया जाता है। थर्ड पार्टी बीमा मोटर बीमा पॉलिसी का मूल रूप है जो पॉलिसी धारक को उन सभी खर्चों का भुगतान करता है जो किसी थर्ड पार्टी को हुए नुकसान से उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ एक थर्ड पार्टी कोई व्यक्ति, वाहन या संपत्ति हो सकता है जो सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपके बीमाकृत वाहन से क्षतिग्रस्त हो गया हो। इसमें थर्ड पार्टी लायबिलिटीज शामिल है जो निम्न स्थितियों में लाभदायक हो सकती हैं। नंबर 1 संपत्ति का नुकसान, नंबर 2 वाहन को नुकसान, नंबर 3 विकलांगता, नंबर 4 शारीरिक चोटें और तीसरे पक्ष की मृत्यु। थर्ड पार्टी बीमा के अंतर्गत शामिल हैं क्या क्या शामिल, नंबर 1 थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, नंबर 2 पर्सनल एक्सीडेंट कवर। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्टी लायबिलिटीज की। तृतीय पक्ष की देनदारियां किसी दुर्घटना के दौरान किसी तीसरे पक्ष को बीमित वाहन की वजह से होने वाली किसी भी क्षति या चोट के परिणाम स्वरूप होती है। चूंकि दुर्घटना बीमित वाहन के कारण होती है इसलिए हर्जाने का भुगतान बीमाकृत वाहन के मालिक की जिम्मेदारी है। थर्ड पार्टी देयता बीमा कई कारणों से उत्पन्न होने वाली कानूनी देनदारियों को कवर करता है। संपत्ति का नुकसान, यदि कोई व्यक्ति दुर्भाग्य से किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति जैसे कि चारदीवारी या दुकान में अपनी कार को टक्कर मार देता है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी उस व्यक्ति को हुए नुकसान या क्षति के लिए भुगतान करेगी। मोटर बीमाकृता 7,50,000 रुपए की सीमा तक आपकी क्षति देयता को कवर करेगा। यदि कोई कार मालिक गलती से किसी तीसरे पक्ष की कार को अपनी कार से टकराता है तो बीमा पॉलिसी बचाव में आएगी और पॉलिसी धारक की ओर से उस तीसरे पक्ष की कार को हुए नुकसान का भुगतान करेगी। यदि पीड़ित दुर्घटना के परिणाम स्वरूप विकलांगता से पीड़ित है तो मुआवजे की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा तय की जाएगी, लेकिन बीमाकर्ता द्वारा मुआवजे की राशि का केवल 50% भुगतान ही किया जाता है। यदि पीड़ित अंग खो जाने या आंशिक अंधापन से पीड़ित होता है, अगर कार मालिक गलती से किसी पर अपनी कार चलाता है या किसी तीसरे पक्ष के व्यक्ति को घातक चोट पहुंचाता है जिससे उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है या विकलांगता हो जाती है तो मोटर बीमा प्रदाता पॉलिसी धारक की ओर से पीड़ित के परिवार को मुआवजा देगा। नंबर 2 आता है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। इसमें हम देखते हैं कुछ मोटर बीमा कंपनियां थर्ड पार्टी कार बीमा के तहत बीमित कार के मालिक चालक को पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी प्रदान करती है। इस कवर के हिस्से के रूप में वाहन के मालिक चालक को उस स्थिति में मुआवजा दिया जाता है जब वह वाहन दुर्घटना के परिणाम स्वरूप विकलांगता से पीड़ित होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। पॉलिसी धारक की मृत्यु के मामले में वाहन मालिक द्वारा नियुक्त नामित व्यक्ति को मुआवजे का भुगतान किया जाता है। मालिक चालक के लिए अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना कवर 15,00,000 रुपए तक उपलब्ध होता है। यह जानना अत्यंत जरूरी है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत क्या

0: कवर नहीं है। बेसिक मोटर इंश्योरेंस प्लान की तरह स्टैंडर्ड थर्ड पार्टी बीमा कुछ स्थितियों पर लागू नहीं होता है। थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी के तहत कुछ कवरेज प्रदान नहीं किया जाता है, जैसे खुद का नुकसान, यानी यह बीमित कार द्वारा किए गए किसी भी नुकसान को कवर नहीं करता है, चाहे वह आकस्मिक क्षति हो, आग से नुकसान हो, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के कारण नुकसान हो या चोरी हो। नशे में ड्राइविंग करते वक्त यदि वाहन शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में चलाई जा रही हो तो यह किसी तीसरे पक्ष की देनदारियों को कवर नहीं करता है। अमान्य लाइसेंस के मामले में यदि बीमित कार के चालक के पास अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसमें किसी तीसरे पक्ष की चोट या क्षति शामिल नहीं है। यदि बीमाकृत कार इंश्योरेंस पॉलिसी में निर्दिष्ट भौगोलिक सीमा के बाहर तीसरे पक्ष को नुकसान या चोट पहुंचती है तो इसे कवर नहीं किया जाएगा। अनधिकृत उपयोग, एक थर्ड पार्टी देयता बीमा अवैध गतिविधियों, रेसिंग, कमर्शियल उद्देश्यों आदि के लिए बीमित कार का उपयोग करते समय किसी भी तीसरे पक्ष की चोटों या क्षति को कवर नहीं करता है। इसमें संविदात्मक दायित्व से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे को शामिल नहीं किया गया है। यदि कार के मालिक या नामित चालक के अलावा कोई भी व्यक्ति वाहन चला रहा था तो तीसरे पक्ष को होने वाली क्षति या चोट को कवर नहीं किया जाता है। कार के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी को हुए किसी भी आकस्मिक नुकसान या क्षति को कवर नहीं किया जाता। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परमाणु हथियार या रेडियोधर्मी संदूषण के कारण होने वाली कोई देयता शामिल नहीं है। यह बीमा पॉलिसी आक्रमण, युद्ध या किसी अन्य युद्ध जैसे संचालन के कारण तीसरे पक्ष को हुई किसी भी क्षति, हानि और अन्य किसी भी प्रकार का कवर नहीं करती है। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव बीमा या पैकेज पॉलिसी के बारे में। यह वाहन बीमा आपके वाहन के द्वारा किसी थर्ड पार्टी यानी तीसरे पक्ष के व्यक्ति की संपत्ति को हुए नुकसान को कवर करता है। इसमें बीमा किए गए वाहन द्वारा कोई दुर्घटना होती है तो ड्राइवर, वाहन मालिक और यात्रियों की मृत्यु का या विकलांगता का कवर करने का काम करता है। थर्ड पार्टी बीमा लेने की बजाय आपको कॉम्प्रिहेंसिव बीमा या पैकेज पॉलिसी लेना चाहिए, क्योंकि यह आपके थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ साथ आपके वाहन के लिए भी कवर प्रदान करता है। इस पॉलिसी में आपकी प्रीमियम वाहन के प्रकार पर निर्भर करती है और यह आपके नुकसान की सीमा पर भी निर्भर करती है। यह भी जानना जरूरी है कि वाहन बीमा खरीदने से हमें कई प्रकार के कवर मिलते हैं, जैसे चोरी, दुर्घटना, दंगे, आतंकवाद और प्राकृतिक आपदा आदि कवर किया जाता है। मानव द्वारा निर्मित आपदा जैसे आग, बाढ़, तूफान, भूकंप और विस्फोट आदि के कारण आपके वाहन को होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में बीमा कंपनी वाहन के दुर्घटना की किसी दुर्घटना में उसके इलाज के खर्च को कवर करती है, जो किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना के बाद सबसे जरूरी है। थर्ड पार्टी वाहन बीमा के तहत किसी भी थर्ड पार्टी संपत्ति के नुकसान, जैसे किसी की मृत्यु और उसकी चोटों को भी कवर किया जाता है। अब हम जानते हैं कि वाहन बीमा द्वारा क्या कवर नहीं किया जाता है। यदि वाहन चालक अर्थात ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस नहीं है और वह किसी प्रकार को कोई दुर्घटना करता है तो बीमा कंपनी द्वारा कोई क्लेम या दावा स्वीकार नहीं किया जाता है। नंबर दो, वाहन की बढ़ती उम्र के साथ होने वाली टूट फूट का कोई क्लेम नहीं मिलता है। नंबर तीन, यदि कोई वाहन गैर कानूनी तरीके से या गतिविधियों में शामिल है तो उस वाहन के साथ होने वाली दुर्घटना को कवर नहीं किया जाता है। नंबर चार, बीमा के दायरे के बाहर के इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल पार्ट टूटने पर वाहन बीमा द्वारा कवर नहीं किया जाता है। वाहन बीमा की इस विस्तृत चर्चा से हमने जाना कि वाहन बीमा करना क्यों आवश्यक है और कैसे वाहन बीमा से हमें सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
4: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
3: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
4: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
3: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
4: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
3: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
4: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
3: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
4: आकाशवाणी बीकानेर।

0: सौरभ कार्यक्रम में अभी आपने सुनी वार्ता, वाहन बीमा की आवश्यकता और लाभ विषय पर वार्ताकार थे कप्तान चंद्रचारण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित समाचार तरंग।
1: करेंगे प्रदेश को मिली विभिन्न सौगातों के बारे में और सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान यात्रा के दौरान दिए गए उद्बोधन की खास खास बातों को।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित किया। 79,450 करोड़ रुपए से अधिक की ये रिफाइनरी प्रदेश की औद्योगिक और पेट्रोलियम सेक्टर में मील का पत्थर साबित होगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राज्य सरकार के इस संयुक्त उद्यम से सालाना 90 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का शोधन होगा।
1: प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए के पेट्रोकेमिकल, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क और नवीकरणीय ऊर्जा विकास कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया।
2: श्री मोदी ने चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4-लेन निर्माण का उद्घाटन किया। उन्होंने 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया।
1: प्रधानमंत्री ने जोधपुर में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से बना ये टर्मिनल सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के हिसाब से तैयार किया गया है। इस अवसर पर श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया।
2: ये सभी सौगातें देने के अलावा प्रधानमंत्री ने बालोतरा में जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती ने हमेशा से ही स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का परिचय दिया है। यहाँ से रिफाइनरी का उद्घाटन होना बड़ी उपलब्धि तो है ही, साथ ही देश के आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: राजस्थान की धरती से भारत ने विकसित होने, आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ।
1: अपने संबोधन में आगे प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों रिफाइनरी में लगी आग की घटना के बावजूद उसे इतना जल्द दुरुस्त कर लेने और काम को पूरा करने के बारे में खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा, ये परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण है।
3: आप सबने दिखा दिया है, चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी और अप्रत्याशित क्यों न हो, नया भारत अपने संकल्पों से न पीछे हटता है और न ही अपनी रफ्तार कम करता है।
2: श्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के शिल्प की भी प्रशंसा की।
3: आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर, इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने जोधपुर के लोगों का अभिनंदन करते हुए कहा कि हवाई अड्डे के इस नए टर्मिनल से मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को गति मिलेगी।
3: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा।

0: साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: श्री मोदी ने नियुक्ति पत्र मिलने वाले युवाओं को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।
0: आज राजस्थान के करीब 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी मिला। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनका युवा मन राजस्थान के उज्जवल भविष्य को और मजबूती देगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पश्चिम एशिया में युद्ध के समय पूरा विश्व ऊर्जा संकट से जूझ रहा था, तब भारत अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ इन परिस्थितियों में अड़िग खड़ा रहा। ये देश का बहुत बड़ा सामर्थ्य है।
0: 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं

0: नियुक्ति पत्र भी मिला है। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनका युवा मन राजस्थान के उज्जवल भविष्य को और मजबूती देगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पश्चिम एशिया में युद्ध के समय पूरा विश्व ऊर्जा संकट से जूझ रहा था, तब भारत अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ इन परिस्थितियों में अड़िग खड़ा रहा। ये देश का बहुत बड़ा सामर्थ्य है।
0: 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं। भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री ने रसोई गैस की उपलब्धता संबंधित चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि गल्फ देशों से गैस की आपूर्ति नहीं हो रही थी, मगर हमने इन सब हालात का सामना किया। खासतौर पर राजस्थान की धरती ने इन चुनौतियों का मुकाबला करना सिखाया। सरकार ने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस करना शुरू किया।
0: राजस्थान की धरती ने हमें चुनौतियों को भी चैलेंज देना सिखाया है और इसलिए हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया। जिन रिफाइनरीज ने पहले कभी एलपीजी नहीं बनाया था उन्हें भी इसके लिए कन्फिगर किया गया।
1: यही नहीं, सरकार ने पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने पर जोर दिया लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं पड़ने दिया।
0: जो हालात थे उनमें घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 2,000 रुपये तक जा सकती थी। बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट यही आकलन कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर 950 रुपये से भी कम में दिया जा रहा है। गरीबों को तो उज्ज्वला सिलेंडर 650 के भी भीतर पड़ रहा है। सरकार ने कमर्शियल गैस की कीमतों में भी बहुत बड़ी कटौती कर दी। ये दिखाता है कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है।
1: श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि रखा और जहां दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल आया, लेकिन भारत पे पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बड़ा उछाल नहीं आया।
0: हमारे देश में तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं है। जब ये संकट बढ़ा तो क्रूड ऑयल की कीमतें $70 प्रति बैरल से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई। आयात के रास्ते भी बंद थे। दुनिया के कई देशों में डीजल पेट्रोल की कीमतों में 40-50% का इजाफा हो गया। कई देशों में तो डीजल पेट्रोल कोटे के आधार पर मिलने लगा था, लेकिन भारत में एक दिन भी ऐसे हालात नहीं आए।
1: प्रधानमंत्री ने खाड़ी देशों में युद्ध और उससे उपजी अशांति से किसानों के लिए उत्पन्न हुई चुनौतियों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार किसानों का हाथ थामे खड़ी रही।
0: हम अपने किसानों को जो दुनिया के बाजार में 3,000 की बोरी थी, हम मेरे देश के किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में देते रहे और इसके लिए खजाने से लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। सब्सिडी दी गई, आपूर्ति के लिए जो सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी भारत ने उसके लिए भी समाधान निकाले।

0: अपने वैकल्प की रास्ते तलाशे। हमने कई देशों में हमारे दूतावासों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी, दूसरे देशों से उर्वरक खरीदने की, खाद खरीदने की पहल की।
1: उन्होंने कहा कि सरकार ने एमएसएमई का भी ध्यान रखा और इसीलिए सरकार इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का एक नया चरण लेकर आई।
0: इस स्कीम के तहत बैंकों ने एमएसएमई को 20% तक का अतिरिक्त लोन दिया और सरकार ने एमएसएमई के इन सभी लोन के लिए 100% गारंटी, और ये मोदी की गारंटी है, इसका बहुत लाभ लघु उद्योगों को मिला, कुटीर उद्योगों को मिला। ऐसे ही अनेक फैसलों का नतीजा है कि आज हमारे छोटे बड़े उद्योग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने सभी से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने को कहा। उन्होंने इस अवसर पर एक पौधा लगाया और कहा,
0: आज विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के साथ ही मुझे यहाँ पौधा लगाने का सौभाग्य भी मिला। ये वृक्षारोपण हमारी कार्य संस्कृति का उदाहरण भी है। हमें प्रगति की नई ऊंचाइयों को भी छूना है और हमें पर्यावरण का संरक्षण भी करना है।
1: श्री मोदी ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में विश्व स्तरीय सोलर पार्क बनाने का काम चल रहा है।
0: हमारी सरकार ऊर्जा के दूसरे स्रोतों पर भी काम कर रही है, खासकर राजस्थान पर सूर्य देवता की कुछ ज्यादा ही कृपा है, इसलिए यहाँ विश्व स्तरीय सोलर पार्क बनाने का काम चल रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भी राजस्थान में 1.5 लाख से ज्यादा घरों को सोलर से जोड़ा जा चुका है। पीएम कुसुम योजना के तहत भी राजस्थान में किसानों को 65,000 से ज्यादा सोलर पंप भी दिए गए।
1: श्री मोदी ने राज्य में संचालित जल संचय जन भागीदारी अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये अभियान जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार को बधाई भी दी।
0: राजस्थान में जल संरक्षण के लिए जल संचय जन भागीदारी भी बड़ी भूमिका निभा रही है। देश में इस अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए करीब करीब 25 लाख सॉक पिट्स बने हैं। राजस्थान में भी 1.25 लाख से ज्यादा सॉक पिट्स बनाए गए। इससे पानी संरक्षित हो रहा है, ग्राउंड वॉटर का स्तर सुधर रहा है। मैं इन प्रयासों के लिए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों को और शेखावटी क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
2: अपने संबोधन के आखिर में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश जब भी कोई संकल्प लेता है और कोई लक्ष्य बनाता है तो राजस्थान उसके केंद्र में होता है। इसलिए आज राजस्थान में तेज गति से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमें विकास के नए आयाम छूने हैं।
0: साथियों, आने वाले समय में हमें विकास के और भी नए आयाम छूने हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप सब इसी तरह डबल इंजन सरकार को आशीर्वाद देते रहेंगे। हम साथ मिलकर राजस्थान के नए भविष्य का निर्माण करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर राजस्थान रिफाइनरी के लिए, अन्य विकास कार्यों के लिए देशवासियों को, राजस्थान वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
2: तो श्रोताओं, आज की कड़ी में इतना ही। समाचार तरंग के एक अन्य अंक में फिर से मुलाकात होगी। जाने से पहले आपको बता दें, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रामनाथ मीणा।
3: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश में राजमार्गों का गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध निर्माण और रखरखाव सरकार की प्राथमिकता। और प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ी, आज से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश के आसार।

समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। पहले चरण में वे 2 दिन की यात्रा पर आज शाम इंडोनेशिया पहुंचेंगे। श्री मोदी कल वहां के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्याकार्ता जाएंगे, जहां वे प्रम्बनन मंदिर में दर्शन करेंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। गौरतलब है कि इंडोनेशिया ने भारत के लिए महत्वपूर्ण मलक्का जल डमरू क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये क्षेत्र केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न पहुंचेंगे और यात्रा के आखिरी चरण में श्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सहकार से समृद्धि लक्ष्य के तहत ये समारोह रखा गया है। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन, सहकार वन तथा टिश्यू कल्चर केंद्र का भूमि पूजन और राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के तीसरे चरण की शुरुआत तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध आपूर्ति डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी इस समारोह में शिरकत करेंगे, जहां वे राजस्थान की सहकारिता मॉडल की सफलता को राष्ट्रीय पटल पर प्रस्तुत करेंगे। सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान में हुए नवाचार और विकास कार्यों ने देश भर में विशेष पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा है कि सहकारिता ग्रामीण समृद्धि और रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम है और राज्य सरकार सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने का लगातार प्रयास कर रही है। सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस समारोह के सिलसिले में कल विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सहकारिता क्षेत्र में प्रदेश में शानदार प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने इस अवसर पर कोलकाता में कार्यक्रम आयोजित किया है। ये कार्यक्रम डॉ. मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष घोषित 2 वर्ष के आधिकारिक समारोह के तहत होगा। गृहमंत्री अमित शाह और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। डॉ. मुखर्जी की जयंती के मौके पर राज्य में भी विभिन्न आयोजन रखे गए हैं। प्रदेश भाजपा की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ ही विचार गोष्ठियां और अन्य आयोजन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी डॉ. मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और सबके लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। अजमेर के पंचशील मल्टीपर्पज स्टेडियम का नाम अब डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम होगा। अजमेर विकास प्राधिकरण ने डॉ. मुखर्जी के नाम के प्रस्ताव पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के पत्र को मंजूर करते हुए निर्देश जारी किए हैं। 80,000 दर्शक क्षमता वाले इस स्टेडियम के निर्माण पर करीब 12 करोड़ रूपए खर्च होंगे। इसमें आधुनिक खेल संरचना विकसित की जा रही है, जिससे खिलाड़ियों को

0: बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे देश के विकास और आर्थिक प्रगति का आधार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजमार्गों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निर्माण और रखरखाव उनकी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री कल जयपुर में मुकंदरा टनल से संबंधित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने मुकंदरा टनल निर्माण के दौरान टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाले राजमार्ग पर वन्य जीवों के आवागमन के लिए एनिमल ओवरपास के निर्माण में पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण का ध्यान रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का गुणवत्ता के साथ समय पर मरम्मत कार्य पूरा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के अधूरे काम को जल्द पूरा करने और यात्री सुविधाओं को बेहतर तथा आधुनिक बनाने पर भी जोर दिया। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने व्हाट्सएप ग्रुप से 500 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में गिरोह के मुख्य सरगना को पुणे से गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी लोन देने के बहाने फर्जी कंपनियां बनाकर लोगों के दस्तावेज हड़पता था और फिर उनके नाम पर म्यूल बैंक खाते खुलवाकर ठगी की रकम को ठिकाने लगाता था। आरोपी अपने नेटवर्क के जरिए सोशल मीडिया ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ता था और सदस्यों को कमीशन का लालच देकर अन्य लोगों को फंसाता था। शिकायत मिलने पर स्टेट साइबर क्राइम जयपुर की एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसने इस मामले की तह में जाकर आरोपी को पकड़ा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की वर्ष 2027 की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। बोर्ड सचिव नीतू यादव ने बताया कि विद्यार्थी 6 अगस्त तक परीक्षा शुल्क के साथ चालान जनरेट कर सकेंगे। शुल्क 11 अगस्त तक निर्धारित बैंकों में जमा करना होगा। अंतिम तारीख के बाद लेट फीस के साथ 1 सितम्बर तक आवेदन का अवसर भी मिलेगा। प्रदेश में मॉनसून दक्षिण पूर्वी जिलों के साथ पश्चिमी जिलों में भी पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, वनस्थली, फलौदी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और जैसलमेर सहित कई क्षेत्रों में बारिश हुई। प्रतापगढ़ में 1 इंच से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। 12 जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई।
1: जिले में मानसून अब रफ्तार पकड़ने लगा है। भारी गर्मी और उमस के बीच रविवार को 12 शहर समेत जिले के कई क्षेत्रों में बारिश हुई। 12 शहर में 23 mm, अटरू में 2, शाहबाद में 30 mm और किशनगंज में 2 mm बारिश दर्ज की गई। जिले के गौघाट, हरनाउदा साजी, पलाइता समेत कुछ अन्य क्षेत्रों में भी बारिश हुई। जिले के केलवाड़ा और हरनाउदा साजी थाना क्षेत्र में शनिवार शाम और रविवार को बिजली गिरने से खेत पर काम कर रहे 3 किसानों की मौत हो गई। देवरी कस्बे में रविवार दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और करीब 40 मिनट तक जोरदार बारिश हुई, जिससे सुबह से पड़ रही तेज गर्मी और उमस से लोगों ने राहत की सांस ली। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12।
0: मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के पूर्वी हिस्सों में अगले 5-6 दिन तक मॉनसून सक्रिय रहेगा। अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। उन्होंने बताया कि आज से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश में राजमार्गों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निर्माण और रखरखाव सरकार की प्राथमिकता। और प्रदेश में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी, आज से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़से जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से क्लेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिवकुमारी और रामदुलारी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
3: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
2: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
3: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
3: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं।
2: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं, जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
3: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
2: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
3: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न, हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं।
2: 8800440559। और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
4: ये धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
3: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है, हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
4: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
3: जी।
4: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों

0: शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
1: जी,
0: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहले हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं।
1: जी,
0: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है इसका नंबर है 8448440632। 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे।
1: जी,
0: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है। इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
0: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है,
1: जी,
0: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
1: जी,
0: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग और बीच बीच में जिसको

0: डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के, इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
1: जी,
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
1: जी,
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है, उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी, और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा।
1: जी,
0: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी को
1: संकोच
0: किसी प्रकार का
1: चाहिए।
0: संकोच नहीं करना चाहिए।
1: जी जी, डॉक्टर साहब आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
0: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यानपूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
1: जी,
0: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात
1: बिल्कुल
0: है।
1: बहुत जरूरी
0: कई बार
1: है।
0: ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है।
1: जी,
0: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती, जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
0: जी, रिजल्ट से।
1: जी,
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है।
1: जी हाँ।
0: ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाएं, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है।
1: जी,
0: आज के समय में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं,
1: बिल्कुल
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
1: जी,
0: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है।
1: जी,
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए,
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन

0: यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहिए। क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या
1: जी
0: रहेगी।
1: हाँ जी
0: तो वो गेम जो भी रहे, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी जी
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ
1: जी
0: कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से, कुछ रचनात्मक गतिविधि
1: हाँ
0: जिसको हम
1: बिल्कुल
0: बोलते हैं,
1: जी हाँ
0: कि आप ऐसा करिए कि आप कोई चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें, तो क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता
1: जी
0: करना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया। जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो
1: क्योंकि
0: इससे भी
1: अक्सर
0: अच्छा कर
1: होता नहीं है।
0: सकते
1: जी
0: हो।
1: हाँ
0: तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी, एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है
1: हाँ
0: और
1: मनोबल
0: वो
1: बढ़ता है।
0: मनोबल बढ़ता
1: जी
0: है,
1: जी
0: और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए
1: जी
0: कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए,
1: जी
0: समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स, यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य में एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन
1: हाँ
0: रहे,
1: तालमेल रहे।
0: तालमेल जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहां भी हमने तुलना कर ली।
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर, या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, या ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं, अगर
1: जी
0: आपको जानकारी हो तो। जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं,
1: जी
0: उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
1: जी
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों
1: अकेलापन भी आ
0: से
1: जाता।
0: अकेलापन आ जाएगा,
1: जी
0: अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं,
1: ऐसा
0: जबकि
1: होता
0: वो
1: है।
0: बैठे एक ही घर में हैं,
1: जी हाँ
0: तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए।
1: जी
0: और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं,
1: जी
0: रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए,
1: बिल्कुल
0: अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे,
1: साथ में
0: अपने
1: खाना
0: विषयों की
1: चाहिए।
0: चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे। तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना इस पर भी नजर रखनी चाहिए।
1: जी
0: इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में,

0: कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार
1: जी,
0: सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है
1: जी,
0: हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, उसमें बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो डॉक्टर साहब एक और

0: परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है,
1: जी
0: हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, उसमें बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं।
1: जी
0: तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो अब डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते। तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
0: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
1: हाँ
0: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता
1: हो
0: है,
1: सकता है
0: वही
1: बिल्कुल
0: पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता
1: बिल्कुल
0: है।
1: जी
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है,
1: जी
0: उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है।
1: जी
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना
1: हाँ
0: है,
1: बिल्कुल
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है।
1: जी उसी को
0: इसके
1: आगे निखार
0: अलावा
1: बिल्कुल
0: हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य,
1: जी
0: बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं।
1: जी
0: जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
1: हाँ होती
0: तो
1: है
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया, वो
1: प्रयास तो
0: सफल
1: किया।
0: नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला।
1: जी
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए, गलती से भी कुछ सीखा ना,
1: हाँ होता है
0: तो इसका मतलब क्या हुआ,
1: जी
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है।
1: जी
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि है उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए, विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है, रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो
1: जी
0: क्रियाकलाप हैं वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें।
1: जी
0: अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है,
1: थोप
0: जैसे
1: देते हैं
0: थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
1: हाँ प्रोत्साहित करें
0: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें। और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है,
1: जी
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें। और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल,
1: जी
0: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो
1: जी
0: टाइम टेबल
1: बिल्कुल
0: के अनुसार उसका हम
1: जी।
0: काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे, और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं।
0: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूं,
1: जी
0: 8448440632, 8448440632। ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 1441

0: टेली हेल्प लाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
1: जी।
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं।
1: जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग NCERT।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजने को है प्रस्तुत कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है जब वी मेट, स्वर है मोहित चौहान का।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए।

0: अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
8: तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना।
7: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: होता है
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए।

माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।

0: फिल्म क्या सुपर कूल है हम का ये गीत अभी आपने सुना कैलाश खेर के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है संजू, स्वर हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान के।
1: प्राण प्रिय

0: समझ है? हाँ
1: बढ़िया।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

यारिया फिल्म से अभी आपने गीत सुना, स्वर था अरिजीत सिंह का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है बागी 2। आवाजें हैं अंकित तिवारी और श्रुति पाठक की।

फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का ये गीत अभी आपने सुना। मीत ब्रदर्स जोनीता गांधी और जुबिन नोटियाल की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है मर्डर 2, स्वर है सुनिधि चौहान का।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म तुम बिन टू से ये गीत अभी आपने सुना। बोल थे मनोज मुंतशिर के और संगीता अंकित तिवारी का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर सुबह के ठीक 11 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे वो गीत जिन्हें बहुत सारे लोग याद करते हैं मगर सुन नहीं पाते, और बहुत सारे लोग याद ही नहीं रख पाते हैं क्योंकि आज के ज़माने में कहीं ना कहीं वो गीत कहीं भूले बिसरे से हो गए हैं।

ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में, फिल्म का नाम था शहनाई। लीजिए फिल्म संगीत की श्रृंखला में हम अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है जाल गुमराह। बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और संगीत है रवि का।

ढोला ढोला जिंदगी की आग में काहे को जलाती हो कागजी शरीर का चोला ओ चोला भूख मिटाए दे।

फिल्म रुदाली से ये गीत अभी आप सुन रहे थे भूपेन हजारिका साहब की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे गुलजार साहब ने और संगीत था भूपेन हजारिका का। ये गीत अपने समय में तो बहुत ही शानदार लगता ही था, लेकिन आज भी इसकी प्रासंगिकता कहीं कम नहीं हुई है। आज भी हम हर किसी को यही सुनते हुए पाते हैं कि जिंदगी को अपनी चिंता की आग में मत जलाइए। और कितने खूबसूरत शब्दों में उस समय में गुलजार साहब ने इन एहसासों को बयां किया था। फिल्म संगीत की श्रृंखला में लीजिए अगला गीत, सुनिए किशोर दा की आवाज़ में। फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना फिल्म बरसात से। बोल थे हसरत जयपुरी के और संगीत था शंकर जयकिशन का। अगला गीत लीजिए, सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दूर गगन।

ये गीत आप सुन रहे थे लता और किशोर की आवाज़ में। फिल्म का नाम था घर। गीत के बोल लिखे थे गुलजार ने और संगीत था आरडी बर्मन का। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मासूम से। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, संगीत दिया है आरडी बर्मन ने और गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे द ग्रेट गैम्बलर से। बोल थे आनंद बख्शी साहब के और संगीत था आर डी बर्मन का। फिल्म संगीत में लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है अमर प्रेम। बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत है आर डी बर्मन का।

फिल्म अर्थ से ये गीत अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में। बोल थे कैफी आज़मी के और संगीत था जगजीत सिंह का। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में और उनका साथ दिया है तलत अजीज़ ने। फिल्म का नाम है बाजार। बोल है मखदूम मोइनुद्दीन के और संगीत है खयाम का।

0: ये गीत आपने सुना किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था रामपुर का लक्ष्मण। बोल थे मजरू सुल्तानपुरी साहब के और संगीत था आरडी बर्मन का।
1: प्यार हाँ प्यार

0: विश्वास? यकीन? नहीं।
1: इस गीत को गाया था तलत महमूद ने। फिल्म का नाम था 3 बत्ती 4 रास्ता। बोल थे राजकमल कला मंदिर के और संगीत था शिवराम कृष्णा का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अपराह्न के ठीक 12 बजने को हैं। अब सुनिएगा हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्याकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीवनोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगी। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे।

0: और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। बिहार में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव मौजूदा सांसद नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण हो रहा है। गुजरात में मंजलपुर विधानसभा सीट योगेश भाई नारंदास पटेल के निधन के कारण तथा मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण दतिया सीट खाली हुई थी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। रूस ने आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। श्रोताओं, दोपहर के ठीक 12:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका विवरण।

रात्रि 10 बजे सुनिएगा रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में कलाकार पंडित कैलाश चंद शर्मा को। यंत्र होगा बांसुरी। पुरानी फिल्मों से गीत आप सुन सकेंगे 9:30 पर, वहीं 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। लोक संगीत का समय रहेगा 8:30 से और फिल्म संगीत 8 बजे। सुगम संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 7:45 पर। ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत रात शाम 7 बजे। आज इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे इस सप्ताह के कृषि कार्य, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत, महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं, खराब मौसम में अपना व पशुओं का बचाव कैसे करें, इसी के साथ लोकगीत, मौसम की जानकारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कार्यक्रम का अंग रहेंगे। हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी शाम 6:40 पर, वहीं शाम को फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे 6:05 से। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी आज शाम 5:05 पर। आज की बात में चर्चा रहेगी खुद के लिए समय निकालें। लघु जानकारी में विषय रहेंगे युवाओं और नेतृत्व कौशल, घग्गर नदी, लोक कला पिछवाई और कुछ समय प्रकृति के साथ गुजारें। कार्यक्रम के रेगुलर सेगमेंट्स रोजगार समाचार और क्विज टाइम भी इसका अंग रहेंगे। फिल्म संगीत सुनना न भूलिएगा 2:30 पर।

दोपहर 1:05 पर हमारी बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे सोशल मीडिया के उपयोग में सावधानियां, मेनोपॉज के दौरान शारीरिक बदलाव, लक्षण और उपाय, विश्व जूनोसिस दिवस, बाबू जगजीवन राम पुण्यतिथि, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती। और वहीं कार्यक्रम में सुनना न भूलिएगा एक वार्ता जिसका विषय रहेगा महिलाएं और बाल संरक्षण। वार्ताकार होंगी श्रीमती अरुणा भार्गव। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत करेंगी नेहा गोस्वामी और माधुरी शर्मा। दोपहर 12:40 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत और अब से कुछ ही देर में यानी 12:10 पर सुनना न भूलिएगा नाटक मैनचेस्टर का अंत। लेखक होंगे श्री राजेश मोहता।

श्रोताओं, ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका विवरण। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12:10 होने को है, हमारे अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 12:10 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है नाटक। नाटक का शीर्षक है मैनचेस्टर का अंत। लेखक है श्री राजेश मोहता।

0: क्या बात है भाई, क्या बात है,
1: कमाल। काफी दिनों बाद मुलाकात हुई आज,
0: आज बड़े दिनों बाद मिले, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: चलो डॉक्टर साहब का सेवानिवृत्ति समारोह है ना।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी मौलिक खोजों से विज्ञान को अनंत ऊंचाइयों पर ले जाने वाले डॉक्टर दिवाकर आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपनी उपलब्धियों व जीवनानुभवों पर दो शब्द कहें। डॉक्टर दिवाकर,
3: धन्यवाद श्री रमेश जी। दोस्तों, सेवा काल के दौरान शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जब मैंने हमारे जीवन में विज्ञान के बढ़ते हस्तक्षेप के बारे में न सोचा हो। क्योंकि आज मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ, इसलिए अपने लंबे अनुभव के आधार पर ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमने विज्ञान से प्रभावित होकर जीने के जिस ढंग और जीवन को देखने समझने का जो नजरिया विकसित किया है, उसने हमारा इतना भारी नुकसान किया है कि आने वाली 10-15 पीढ़ियों तक इसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। रही बात जीने के ढंग को बदलने की, तो वो तो और भी आगे की बात है, जिसमें न कोई मूल्य है न कोई आस्था।
2: बात तो गले नहीं उतरती, फिर भी चलो मान लेते हैं।
3: मान नहीं लेते, मानना ही पड़ेगा। एक बात और मैं पूछता हूँ कि आज समाज, बल्कि समूचा राष्ट्र, यहाँ तक कि पूरा विश्व भौतिकवाद की दिशा में भाग

0: भाव से मुक्त हो?
1: शायद नहीं।
2: शायद क्या, ये तो बिल्कुल ही असंभव है। आज किसी को भी लो, चाहे वे राजनेता हो या साहित्यकार, संत हो या उद्योगपति, आम आदमी हो या खास आदमी, सभी भौतिकता की तरफ भागे जा रहे हैं। वैसे भी अपने अतीत में हम सब भौतिकवादी ही थे, तभी तो हमारा वर्तमान ऐसा है। स्वाभाविक है भविष्य भी भौतिकवादी ही होगा, इसीलिए भौतिक प्रभाव से मुक्त होने की बात महज एक साहित्यिक कल्पना है। कोई लाख चाहे वे इतिहास की बहती धारा से खुद को अलग नहीं कर पाएगा।
0: तो सुनिए मिस्टर पंकज जी, पहली बात तो ये है कि नजरिया भी आपको विज्ञान से मिला है, जो ये मानता है कि पदार्थ की पूर्व अवस्था के आधार पर ही उसका वर्तमान और भविष्य निश्चित होता है। तो दोस्तों, आज मैं सार्वजनिक रूप से घोषित करता हूँ कि अपनी चल अचल संपत्ति और समस्त भौतिक सुख सुविधाओं से अपना मालिकाना हक छोड़ता हूँ, तथा उसे ट्रस्ट का रूप देकर सिर्फ देखभाल का दायित्व स्वयं पर लेता हूँ। आज से मैं मालिक नहीं बल्कि संपत्ति की देखभाल करने वाला चौकीदार हूँ।
1: चौकीदार साहब, मेरा मतलब है डॉक्टर साहब। जन प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपके निर्णय का स्वागत करता हूँ।
0: भाटिया साहब, मैं तो कहूँगा कि आप भी राजनीतिक अधिकार लिप्सा को छोड़कर एक अनासक्त जन सेवा आरम्भ क्यों नहीं कर देते? मेरा मतलब, आपको भी राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि राजनीति की दुनिया में मैं अनासक्त योगी ही माना जाता हूँ। दूसरा ये कि हम आपकी तरह सरकारी सेवा में नहीं है कि निवृत्ति ले लें। अरे, हमें तो अंतिम सांस तक राजनीति ही करनी है।
3: और हम हैं अभिनेता, हम तो इतना मानते हैं भैया कि निवृत्ति एक सुंदर और अच्छी अभिनेत्री है, इसलिए उसका भविष्य उज्जवल है।
1: अरे यार, सुनो यार। अरे सुनो भाई, अरे यार, यार छोड़ो अभी इस निवृत्ति विवृत्ति को, सब इस चक्कर को छोड़ दो। और डॉक्टर साहब, जरा जाम टकराएं और इस माहौल को रंगीन बनाने के लिए इन उठपटांग बातों से भी निवृत्त हो जाएं।

0: चलो फंक्शन तो खत्म हुआ और साथ ही खत्म हुआ अब तक के जीवन का भव्य आयोजन। अब एक नई शुरुआत करूंगा जिंदगी की, केवल जरूरत भर के साधनों के साथ। घर में पड़ी इन भारी भरकम मशीनों ने जीवन को कितना बोझिल बना दिया। यंत्र मनुष्य को संवेदनहीन बनाता है। क्यों, सुन रही हो? क्या बात है, तबीयत तो ठीक है?
1: तबीयत? हाँ ठीक है, पर मेरी तबीयत से आपको क्या लेना देना है? आप तो अपना मुक्ति दिवस मनाइए डॉक्टर दिवाकर।
0: क्यों, क्या नाराज हो मुझसे?
1: ऐसा समझ सकती हो तुम। मेरे लिए विदेशी यात्राएं, लग्जरी गाड़ियां, गहने जेवरात, सौंदर्य प्रसाधन, किटी पार्टियां, एसी, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब सुविधाओं को छोड़ना नामुमकिन है।
0: और शायद तुम्हें मालूम भी नहीं है कि इन्हीं सुविधाओं ने तुम्हें बीमारी का घर बनाकर छोड़।
1: हाँ, मैं बीमार हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, और तुम इस बुढ़ापे में जवान हो गए। क्यों, कोई और क्यों नहीं ढूंढ लेते? तुम तो जाने माने वैज्ञानिक हो, तुम्हारे गले में तो कोई भी वरमाला डालने को तैयार हो जाएगी। जैसे वो तुम्हारे मंत्री साहब, क्या नाम है उनका? हाँ, मिस्टर भाटिया, जिन्होंने 70 साल की आयु में एक 35 साल की युवती को पति बना लिया। वैसे ही
0: देखो सुमित्रा, थोड़ा संभल कर बात करो। तुम तो जो जी में आए बके जा रही हो।
1: हाँ बके जा रही हूँ दिवाकर, बके जा रही हूँ। हाँ मैं बके ही जा रही हूँ। सच तो ये है दिवाकर कि मैं जान गई हूँ कि तुम्हारी नजर में मैं एक बीमार बूढ़ी औरत हूँ। क्यों, और इसलिए तुम मुझे अपनी दादी के समय की सुविधाहीन

0: करना चाहती हो क्यों?
1: ओहो सुमित्रा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कैसे समझाऊं कि विज्ञान और यंत्र ने मनुष्य से क्या छीन लिया। चलो अब सो जाओ, उम्मीद है सुबह तक तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा, तब बात करेंगे, शायद तुम्हारी समझ में कुछ आ जाए।
0: मुझे कोई बात नहीं,

0: सुमित्रा क्या हुआ तुम्हें? सांस लेने में तकलीफ हो रही है शायद। लगता है पार्टी के चक्कर में रात को बीपी की गोली तुम लेना भूल गई थी। खैर मैं कुछ करता हूँ, तुम घबराना नहीं। सुमित्रा मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं कुछ करता हूँ। उल्टी सुमित्रा, सुमित्रा मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। बस बस एक मिनट, मैं डॉक्टर डॉक्टर शर्मा को फोन लगाता हूँ। सुमित्रा हिम्मत रखो, मैं फोन लगाता हूँ, फोन लगाता हूँ। हेलो, कौन? डॉक्टर शर्मा बोल रहे हैं?
1: यस, शर्मा स्पीकिंग।
0: हाँ डॉक्टर शर्मा, मैं दिवाकर बोल रहा हूँ यार। एम्बुलेंस लेकर तुरंत चले आओ, सुमित्रा तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब हो गई है।
1: क्या हुआ दिवाकर, क्या हुआ भाभी जी को?
0: अरे यार पता नहीं, उल्टी होने के बाद एकदम से रुक रुक कर सांसें आ रही है। तुम तुरंत चले आओ।
1: बस बस मैं 5 मिनट के भीतर ही पहुंचता हूँ।
0: हाँ ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। सुमित्रा सुमित्रा घबराओ नहीं, सांस कुछ धीमे धीमे लेने की कोशिश करो। हाँ डॉक्टर शर्मा आ रहे हैं, हम तुम्हें अस्पताल ले चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास। लो लो तो थोड़ा पानी पी लो। मैं भी कैसा बेवकूफ हूँ, सांस की तकलीफ में भला पानी कैसे पिया जा सकता है। ओहो डॉक्टर शर्मा, 10 मिनट होने को आए हैं और अब तक तुम्हारा कुछ पता नहीं है। एम्बुलेंस की आवाज आ गई, डॉक्टर शर्मा आ गए। आइए आइए डॉक्टर, देखिए देखिए क्या हो गया सुमित्रा को।
1: हौसला रखिए डॉक्टर दिवाकर, मैं देखता हूं ना। दिवाकर बीपी खतरनाक स्थिति तक जा पहुंचा है, तुरंत आईसीयू में भर्ती करवाना होगा। फिलहाल मैं एक इंजेक्शन देता हूँ, उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। नर्स पेशेंट को अस्पताल ले चलने की तैयारी करो। दिवाकर तुम मेरे साथ आओ।
0: चलो डॉक्टर शर्मा चलते हैं।
1: जल्दी जल्दी, हरिया हरिया। ओहो अरे तुरंत आईसीयू में ले चलो। अरे कहाँ रहे आप? अरे मैं कह रहा हूँ हटिए सामने से, हटिए, हरिया हरिया, चलिए चलिए।
0: डॉक्टर साहब सब ठीक तो हो जाएगा ना?
1: दिवाकर हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। दिवाकर मैं पेशेंट के साथ अंदर हूँ, तुम बाहर मेरा इंतजार करो।
0: ठीक है डॉक्टर, मैं इंतजार करूंगा। सुमित्रा तबीयत सुधरने तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, फिर मैं तुम्हें बहुत डांटूंगा, कहूंगा कि बताओ क्या मैं गलत था। हाँ ये मानता हूं कि सहमति के बिना ट्रस्ट वाला निर्णय नहीं लेना था, पर क्या करता मैं? तुमसे पूछता भी तो क्या तुम मान जाती? नहीं सुमित्रा, ये एक बड़ा कदम था, जो हुआ सो हुआ। अब मुझे एक मौका दे दो सुमित्रा, मैं सब ठीक कर दूंगा।
1: सॉरी डॉक्टर दिवाकर, हम सुमित्रा को बचा नहीं सके। ड्यू टू ब्रेन हेमरेज शी इज नो मोर।

0: नो डॉक्टर, कह तो ये झूठ है। मेरी सुमित्रा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। डॉक्टर, डॉक्टर नहीं जा सकती, वो नहीं जा सकती।
1: दिवाकर, दिवाकर, अरे संभालो खुद को दिवाकर, अपने आप को संभालो दिवाकर, होनी को कौन टाल सकता है।
0: नहीं डॉक्टर, ये होनी नहीं थी, ये अस्वाभाविक मौत थी। एक ऐसी मौत जिसे सुमित्रा ने खुद चुना था। सुख सुविधाओं का ढेर, मशीनों का साथ, आधुनिकता का कपट चुनकर सुमित्रा ने खुद को लंबे समय तक बीमार बनाए रखा। देखना, देखना एक दिन ये विज्ञान सबके लिए आईसीयू बन जाएगा। डॉक्टर, आईसीयू बन।

0: यही है वो आश्रम जहां मैं बरसों पहले आया था। तब सुमित्रा भी साथ थी, पर आज केवल उसकी यादें हैं। कहीं गुरुदेव दिखाई नहीं दे रहे? अरे फिर भगवान बुद्ध के जीते जागते रूप, तो चलो उनसे मिलता हूं। गुरुदेव, चरणों में प्रणाम करता हूं।
1: हरिओम हरिओम। कौन? अरे दिवाकर, आओ यहां बैठो मेरे पास। कहो, घर में सब ठीक तो है? हरिओम।
0: कुछ भी ठीक नहीं है गुरुदेव, क्योंकि क्योंकि सुमित्रा नहीं रही।
1: ओम शांति शांति शांति। दिवाकर, सुमित्रा देह मुक्ति के बाद मन व प्राण के आवरण से मुक्ति की प्रतीक्षा में है। ईश्वर से प्रार्थना करो जिससे शीघ्रताशीघ्र उसे मुक्ति मिले।
0: पर कैसे गुरुदेव? मेरा हृदय तो दुख से फटा जा रहा है।
1: दिवाकर, तुम्हारा दुख ही उसकी आगे की यात्रा में बाधा डाल रहा है।
0: परंतु गुरुदेव, दुख पर तो मेरा वश नहीं है ना।
1: इसे वश में करना आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है दिवाकर।
0: तो है गुरुदेव, पर कैसे?
1: अपनी आत्मा के सूरज का ध्यान करो दिवाकर, दुखों के बादलों का नहीं।
0: गुरुदेव, पर मैं सुमित्रा के अलावा किसी का भी ध्यान नहीं कर पा रहा हूं।
2: उसकी मृत्यु से मैं टूट गया हूं गुरुदेव। मुझे लगता है उसकी मौत का कारण मैं ही हूं।
1: ऐसा लगने का कोई औचित्य?
0: अब कैसे बताऊं? दरअसल कल रात रिटायरमेंट की पार्टी में मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके ट्रस्ट के नाम देने की घोषणा कर दी। इसी बात को लेकर सुमित्रा नाराज हो गई। रात को उसने अपनी नाराजगी प्रकट भी की थी और सुबह उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे बचाया नहीं जा सका। मुझे लगता है कि मैं ऐसी बात न कहता तो ये घटना नहीं।
1: ना दिवाकर, तुम स्वयं को दोषी मत मानो। मृत्यु से पूर्व सब प्रकार के योग संयोग बनते हैं। तुम्हारा हृदय शुद्ध था, भावना बुरी न थी, तो फिर स्वयं को दोषी क्यों मानते हो? हरि
2: गुरुदेव, दोषी तो मैं हूं।
1: अभी तुम्हारा मन दुख से ग्रस्त है दिवाकर, जाओ हाथ मुंह धोकर आराम कर लो, बाकी बातें शाम को करेंगे।
0: ठीक है गुरुदेव, जाता हूं।
1: हरिओम।

0: आओ आओ दिवाकर, आओ यहां बैठो मेरे पास। कहो अब मन कैसा है?
1: मन कैसा? मन गुरुदेव, मन तो सूनेपन से घिरा एक ब्लैक होल बन चुका है। लगता है सब कुछ उसमें धंसता जा रहा है।
0: दिवाकर, ये ब्लैक होल नहीं, सिर्फ शून्य है।
1: पर कितना भयानक और डरावना है ये शून्य।
0: जानते हो, इसी शून्य के गर्भ में सृजन होता है दिवाकर।
1: होता होगा गुरुदेव, पर मुझे ये सब बातें किताबी लगती।
0: नहीं दिवाकर, नहीं। आज जिस शून्य भास में तुम आ गिरे हो, उसी में से तुम्हारे सेवा निवृत्ति के बाद वाले जीवन और सुमित्रा का जन्म होगा।
1: सुमित्रा का जन्म? क्या कहा आपने? सुमित्रा फिर से मेरे जीवन में आएगी?
0: हाँ दिवाकर, ईश्वर बड़ा दयालु है, बड़ा दयालु है। बस इसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी, केवल प्रतीक्षा।
1: मैं प्रतीक्षा करूंगा गुरुदेव। मैं अवश्य अवश्य प्रतीक्षा करूंगा, अवश्य अवश्य प्रतीक्षा करूंगा। ओह, ये फोन, एक मिनट। हेलो हेलो, कौन?
2: मैं आपका वकील समीर बोल रहा हूँ दिवाकर जी। आपने ट्रस्ट संबंधी कागजात तैयार करने के लिए कहा था ना, तो बताइए कब मिलने आऊँ?
1: अच्छा समीर जी,
2: हाँ
1: ऐसा कीजिए, आप कल सुबह 10 बजे तक घर आ जाइए। अभी मैं आश्रम में हूँ, कल तक पहुँच जाऊँगा।
2: ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कल मिलता हूँ आपसे।
1: ठीक है समीर साहब। गुरुदेव, मैं अपनी समस्त चल अचल संपत्ति आपके ट्रस्ट अर्श मेमोरियल ट्रस्ट को सौंपना चाहता हूँ, कृपया स्वीकृति दें।
0: नहीं दिवाकर, संपत्ति अर्श मेमोरियल ट्रस्ट को नहीं, बल्कि सुमित्रा मेमोरियल ट्रस्ट को समर्पित की जाएगी।
1: सुमित्रा मेमोरियल ट्रस्ट?
0: हाँ, यही नाम होगा नए ट्रस्ट का। उसी में से सुमित्रा की स्मृतियां नए रूप में जन्म लेगी।
1: गुरुदेव,
0: जाओ मेरे आशीर्वाद के साथ नए जीवन की शुरुआत करो।
1: चाहता हूँ गुरुदेव।

0: नमस्ते नमस्ते डॉक्टर दिवाकर।
1: ओ, समीर बाबू, आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आओ आओ, यहाँ बैठो।
0: कैसे हैं आप?
1: बस समझ लो पहले से ठीक हूँ।
0: कहिए, कागज किस ट्रस्ट के नाम से बनाने हैं?
1: कागज सुमित्रा के नाम से बनाने।
0: भाभी जी के नाम? ये अच्छा विचार है आपका।
1: समीर बाबू, मैं चाहता हूँ कि कागज आज शाम तक तैयार हो जाए, क्योंकि 7 बजे मेरा आश्रम की तरफ निकलने का इरादा है। कार से जाऊंगा तो 100 किलोमीटर का सफर 1.5 घंटे में तय कर ही लूंगा।
0: ठीक है डॉक्टर दिवाकर, मैं ठीक 5 बजे यहाँ पहुंच जाऊंगा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ।
1: नमस्ते।
2: याद है, तुम्हें याद है सुमित्रा, शादी हुई थी उन दिनों तुम्हें ये गीत कितना पसंद था। कोई आएगा, कितना पसंद था ये गीत। वही गीत फिर से सुनो सुमित्रा, फिर से सुनो इस 100 किलोमीटर के तनाव सफर में, फिर से सुनो अपने दिवाकर के कानों से सुमित्रा।

0: अरे अरे क्या हुआ भाई लोगों, अरे क्यों भाग रहे हो आप लोग?
1: गाड़ी में आग लग गई है, जान की सलामती चाहते तो भागो यहाँ से।
0: अरे फल, ए भाई तेरा बात सुनो मेरी। अरे रुको, ये ठहरो तुम।
1: छोड़ दो, छोड़ो मुझे भाई।
0: नहीं छोड़ूंगा, चलो मेरे साथ उस बस्ती में।
1: देखो मेरे पास कुछ गहने हैं, उनमें से मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा। मुझे अपनी कार में बैठा कर ले चलो, यहाँ से अगले गांव में उतर जाऊंगा, समझ गए ना? देखो देखो तुम शहरी भाई हो, हैं? मेरी बात को समझो, हैं? समझ सकते हो ना? देखो मेरा नाम रामलाल है, रामलाल। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गांव है, जिसमें मेरी प्रेमिका खुलसी रहती है, वो बहुत अच्छी है। पर मेरी पत्नी तुल्हारी हमेशा मेरे साथ झगड़ा करती है, वो शराब भी पीती है और उसके कई यार भी है, पता नहीं किसका गर्भ लिए घूम रही है। आज उसे अपने पापों की सजा जरूर मिल जाएगी, जल मरेगी इसी आग में। बाबूजी मुझे अगले गांव उतार देना, बड़ा उपकार होगा, मुझे अपने साथ ले चलोगे?
2: प्यारे कायर, पत्नी तो पत्नी, उस मासूम के लिए भी तेरे दिल में जगह नहीं है जिसका जन्म तक नहीं हुआ, और अभी तू उसे छोड़कर अपनी प्रेमिका के साथ रंगरेलियां मनाने की सोच रहा है। मैं बताता हूँ,
1: छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। अरे मत मारो,
2: नहीं छोड़ूंगा। अरे तो भाग गया, ये नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मुझे कुछ करना होगा। मैं उस औरत को जलते हुए नहीं देख सकता। मैं आ रहा हूँ
0: तुलारी, मैं आ रहा हूँ, तुम घबराना मत। आ रहा हूँ।
2: यहाँ तो बहुत भयानक आग लगी है, पर इस झोपड़ी के सामने ये कौन खड़ा है?
0: अरे कौन हो भाई, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं?
3: अरे जान तो प्यारी है, वो झोपड़ी देख रहे हो बाबूजी? उसमें रामलाल की गर्भवती औरत फंसी हुई है, सोचता हूँ उसे निकाल लूं, पर क्या करूँ, आग बहुत ज्यादा है।
2: आग से मैं लड़ूंगा, तो मैं बचाऊंगा उसे।
3: अरे बाबूजी आग बहुत तेज है।
2: कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ दुलारी, मैं आ रहा हूँ।
3: अरे बाबूजी सुनो,
2: मैं आ रहा हूँ दुलारी, मैं आ रहा हूँ।
4: बचा लो, अरे बचा लो रे, कोई इस मासूम को बचा लो।
2: घबराओ मत,
4: बचा लो,
2: घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। ये औरत तो बहुत जल रही
4: है, मुझे बचा लो।
2: जल्दी से मेरा सहारा, और निकलो यहाँ से। ठीक है, पकड़े रहना मुझे, जल्दी। बस बाहर आ गए, बस थोड़ी दूर और।
4: मैं नहीं बचूंगी बाबूजी, मैं नहीं बचूंगी। वैसे भी जिंदा रहकर क्या करूंगी? रामलाल तो मुझे छोड़कर भाग गया है।
2: उस अत्याचारी का नाम मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा।
4: मेरी चिंता छोड़ो, हो सके तो इस मासूम की जान बचा लो बाबूजी, इसकी जान बचा लो।
2: चुप क्यों नहीं? हो गया, बस थोड़ा सब ठीक हो गया। है ये क्या? दुलारी, ओह दुलारी नहीं रही। हे मेरे राम, दुलारी

पर अपनी कोख को जन्म तो दे ही गई। देखूं तो लड़की है या लड़का, कन्या है लड़की है, मतलब सुमित्रा तुम लौट आई हो, तुम आ गई हो सुमित्रा अग्निशिखा बनकर। हाँ, अग्निशिखा नाम होगा तुम्हारा। तुम ही मेरे अंधेरे जीवन में उजाला लाओगी। देखना देखना, अब मैं सब ठीक कर दूंगा, अब मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। एक नया जीवन आरंभ होगा, एक नया युग आरंभ होगा। धरती पर फिर से मानव फूल खिलेंगे, फिर से मानव का सौंदर्य जाग उठेगा। मशीनें रक्त पीना बंद कर देगी। सुन रहे हो मैनचेस्टर, अंत होगा तुम्हारा, तुम्हारी मशीनी सभ्यता का, क्योंकि अग्निशिखा तुम्हारी गोद में नहीं, प्रकृति की गोद में पलेगी, भगवान की गोद में पलेगी। हाँ हाँ मैनचेस्टर, तुम्हारा अंत होगा। मैं माली बनकर इस फूल को सींचूंगा। सुन रहे हो ना मैनचेस्टर, तुम मेरी दार, सुन रहे हो ना, अपनी शिखा को प्रकृति।

अभी आप सुन रहे थे नाटक, शीर्षक था मैनचेस्टर का अंत, लेखक थे श्री राजेश मोहता। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। श्रोताओं, दोपहर के 12:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अंजाम से। गीत को गाया है अभिजीत ने, बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत है आनंद मिलिन का।

फिल्म पद्मावत से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीत को गाया था नीति मोहन ने, बोल थे सिद्धार्थ गरिमा के और संगीत था संजय लीला भंसाली का। फिल्म संगीत में लीजिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है आदमी और इंसान, बोल है साहिर लुधियानवी के और संगीत है रवि का।

फिल्म सावरिया से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को गाया था शैल हाडा ने। फिल्म संगीत में लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में। फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र। बोल लिखे हैं इंदीवर ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था तेरे घर के सामने, बोलते हसरत जयपुरी के और संगीत था एस टी बर्मन का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। श्रोताओं, दोपहर के ठीक 1 बजने को है, अब सुनिएगा हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सहकार से समृद्धि लक्ष्य के तहत ये समारोह रखा गया है। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन, सहकार वन और टिश्यू कल्चर केंद्र का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के 3रे चरण की शुरूआत और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध पूर्ति डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शी और आधुनिक व्यवस्थाएं की गई है। सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 साल से सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चलकर करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में इस क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए हैं। देश को सहकार से समृद्धि का मंत्र मिला, जिसने गांवों, गरीबों, किसानों और मजदूरों को उन्नत बनाया।
2: सहकारिता से जुड़ी जानकारियों को राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाया। आपने देश को सहकार से समृद्धि का एक ऐसा मंत्र दिया जिसने देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर की तकदीर बदलने का काम किया है। इसी वजह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत में सहकारिता और डेयरी सेक्टर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई शक्ति दे रहा है।
1: गौरतलब है कि सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान में हुए नवाचार और विकास कार्यों ने देश भर में विशेष पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। रवाना होने से पहले श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और इन देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी इंडोनेशिया पहुंचेंगे। श्री मोदी वहां के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न पहुंचेंगे और 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने इस अवसर पर कोलकाता में कार्यक्रम आयोजित किया है। ये कार्यक्रम डॉ. मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष घोषित 2 वर्ष के आधिकारिक समारोह के तहत हो रहा है। गृहमंत्री अमित शाह और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत

0: भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। डॉ मुखर्जी की जयंती के मौके पर राज्य में भी विभिन्न आयोजन रखे गए हैं। प्रदेश भाजपा की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ विचार गोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं। देश में 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान है, जो व्यक्तियों को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली रोगियों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इसके माध्यम से रोगी अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नेटवर्क का विस्तार करके देश के रोगियों और स्वास्थ्य सुविधाओं को शामिल करना है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूरी तरह से डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा एनईटी यूजी 2026 की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा कल तक के लिए बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपना बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गौरतलब है कि प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद इस साल 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द होने के बाद एनटीए द्वारा रिफंड प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 1:05 हुए हैं। लीजिए अब बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आई हैं नेहा गोस्वामी और माधुरी शर्मा।

0: नमस्कार सखियों, हर मौसम कुछ यादें देकर चला जाता है और कुछ सीखें जीवन की राहों में छोड़ जाता है। मैं हूं आपकी अपनी सखी नेहा गोस्वामी
1: और सभी सखियों को मेरा भी स्नेह भरा नमस्कार। वो कहते हैं ना कि समय कभी ठहरता नहीं, लेकिन उससे मिली मुस्कान और सीखें हमेशा हमारे साथ चलती है। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो सखी माधुरी शर्मा।
0: बिल्कुल सही कहा माधुरी कि समय कभी नहीं ठहरता। तभी तो देखते ही देखते गर्मियों की छुट्टियां भी बीत गई है ना, बच्चों के स्कूल फिर से खुल गए। और सच कहूं माधुरी, ऐसा लगता है जैसे छुट्टियां पलक झपकते ही बीत गई हैं।
1: बिल्कुल बीत गई नेहा, लेकिन नेहा मुझे हमेशा लगता है कि छुट्टियां खत्म होती है, खुशियां नहीं। अगर इन दिनों हमने कुछ अच्छा सीखा है, कुछ नया महसूस किया था, तो मन को थोड़ा सुकून दिया, तो वो बातें हमेशा बेहद खुशी देंगी।
0: बिल्कुल सही कहा माधुरी तुमने। इस बार मेरी बेटी ने छुट्टियों का खूब आनंद लिया। स्कूल का होमवर्क किया, प्रोजेक्ट बनाए, अपनी नानी से क्रोशिया सीखा।
1: अच्छा।
0: और अपना सबसे प्रिय शौक ड्राइंग के लिए भी खूब समय निकाला और उसे रंगों के बीच मुस्कुराते देख मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
1: और बच्चों की यही बात तो सबसे प्यारी होती है कि वे पूरे मन से सीखते हैं और खुश भी होते हैं। लेकिन एक बात पूछूं नेहा, क्या सिर्फ बच्चों की छुट्टियों का आनंद लेते हैं, बच्चे ही छुट्टियों का आनंद लेते हैं, तुमने नहीं लिया?
0: बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल तो मैंने भी खुद से पूछा माधुरी। मैं अपनी बेटी को उसके शौक पूरे करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती। लेकिन अचानक लगा, क्या मैंने अपने शौक को भी उतनी ही अहमियत दी है?
1: अच्छा।
0: शादी से पहले मुझे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद था, लेकिन फिर घर गृहस्थी, जिम्मेदारियां, समय की कमी और धीरे धीरे मेरे शौक कहीं पीछे छूट गए, पता ही नहीं चला।
1: और शायद नेहा यही कहानी बहुत सी सखियों की भी है। पहले पूरे परिवार

0: फिर बच्चे, फिर घर, इन सब के बीच हम खुद को सबसे आखिर में रख देती हैं, है ना। धीरे धीरे हमें लगता है कि हमारी पसंद और नापसंद की कोई जरूरत ही नहीं है, यानी कि स्वयं ही अपने आप को गौण कर लेती हैं।
1: बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, मेरे मन में भी यही आता था कि अब क्या करूंगी ड्राइंग बनाकर, अच्छा। अब क्या जरूरत है इन सब की। लेकिन इस बार जब मैंने अपनी बेटी को पूरे मन से रंगों में खोए देखा ना, तो लगा अगर मैं भी उसे उसके सपनों के लिए समय दे सकती हूँ तो खुद को क्यों नहीं दे सकती। मैंने भी कई सालों बाद फिर से पेंसिल उठाई, रंगों को हाथ लगाया, कागज पर चित्र बनाए, और सच मानो माधुरी, ऐसा लगा जैसे मैं खुद से फिर से मिल रही हूँ।
0: हाँ, यही तो बात बहुत सुंदर है कि नेहा, खुद से फिर से मिलना। सच तो ये है कि शौक केवल समय बिताने का ही माध्यम नहीं होते, वे मन को थामने का सहारा भी होते हैं, और हमारे मन के किसी पहलू को छूते भी
1: हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और माधुरी, सबसे प्यारी बात ये भी हुई कि जब मेरी बेटी ने मुझे ड्रॉइंग बनाते देखा ना, तो उसकी आंखों में जो खुशी थी ना, वो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। उसे ये भी एहसास हुआ कि सीखना कभी नहीं रुकता, अपने शौक को पूरा करने के लिए कभी भी किसी भी उम्र में समय निकाला जा सकता है।
0: बिल्कुल नेहा, तुमने बहुत सही बात कही है। मैंने भी मेरी बेटी को ऐसे ही रंगों में खोता हुआ देखा,
1: अच्छा।
0: तो मैंने भी अपने लिए समय निकालना शुरू किया और मैंने भी पेंटिंग शुरू की, और मुझे सच में इतना अच्छा लगा उस समय कि मैं अपने शौक से मिल रही हूँ, अपने आप से मिल रही हूँ। बच्चे हमारी बातें कम और हमारे व्यवहार को ज़्यादा सीखते हैं अगर वे अपनी माँ को मुस्कुराते हुए देखते हैं, कुछ नया सीखते हुए देखते हैं, अपने शौक को जीता हुआ देखते हैं, तो वो भी समझते हैं कि जीवन केवल जिम्मेदारी निभाने का नाम नहीं, खुद को संवारने का नाम भी है।
1: सखियों, छुट्टियां तो खत्म हो गई, लेकिन हमारा उत्साह क्यों खत्म हो, हमारी सकारात्मक सोच क्यों रुक जाए। हमारी मुस्कान, हमारी रुचियां और हमारे शौक तो हर मौसम में हमारे साथ रह सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम रोज घंटों निकालें, दिन में 24 घंटों में से अगर हम सिर्फ 15 से 20 मिनट भी अपने मनपसंद काम के लिए निकाल सकते हैं, तो यकीन मानिए फिर से आप खिल उठेंगी।
0: हाँ, जब आप खिल उठती है ना, तो आप प्रकृति से जुड़ जाती है। आइए सखियों, आज हम खुद से एक छोटा सा वादा करें, हम अपने परिवार की खुशियों का ध्यान रखेंगे, लेकिन अपनी मुस्कान का भी हमें ख्याल रखना है, अपने शौक को भी फिर से जीवन में जगह देना है, क्योंकि ये कोई स्वार्थ नहीं है बल्कि आत्म देखभाल का एक तरीका है। फिलहाल हम एक सुंदर गीत सुनकर अपनी आत्म देखभाल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हम खुद से मिलती हैं गीतों के जरिए, और सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: ആകാശവാണി അറ്റ് 90. एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग.
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान.
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से.
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक.
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का.
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान.
3: आकाशवाणी.

0: आपकी तारीफ, आपकी आवाज, जन जन तक।
1: माधुरी, हम सभी जानते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य ही खुशहाल जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।
2: बिल्कुल नेहा।
1: लेकिन कई बार कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो जानवरों से इंसानों तक पहुंच जाती हैं। इन्हें समय रहते समझना और इनसे बचाव करना बहुत जरूरी है।
2: बहुत जरूरी है नेहा। हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोजिस दिवस मनाया जाता है और उस दिन का उद्देश्य लोगों को उन बीमारियों के बारे में जागरूक करना है जो पशुओं से मनुष्यों में फैल जाती है। सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी हमें हमारे परिवार को सुरक्षित रख सकती है ना नेहा। लेकिन हम कुछ गड़बड़ियां कर जाते हैं, ख्याल नहीं रख पाते हैं। लेकिन एक समय है आजकल कि आजकल लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए या खुश रखने के लिए या फिर व्यवसाय के लिए या कहीं घर की रखवाली के लिए या मनोरंजन के लिए कुछ पालतू जानवरों को रखते हैं या पालते हैं, जिनमें पक्षी भी आते हैं और कुछ मछलियां भी पालते हैं, तो व्यवसाय भी करते हैं इससे और मनोरंजन का साधन भी है ये पालतू पशु।
1: बिल्कुल माधुरी, रेबीज, बर्ड फ्लू जैसी कई बीमारियां जूनोजिस के उदाहरण है, है ना। ये संक्रमित पशु उनके काटने, उनके संपर्क में आने या दूषित भोजन या पानी के कारण फैल सकती है। इसलिए साफ सफाई और सावधानी बहुत आवश्यक,
2: बहुत जरूरी है ये बातें। यदि घर में पालतू पशु है तो उसका समय समय पर टीकाकरण जरूर करवाइए। पशु की देखभाल के बाद हाथ अच्छी तरह साबुन से धोएं। हमेशा ताजा और अच्छी तरह पका हुआ भोजन ही खाएं। साफ पानी का उपयोग करें और एक खास बात कि पशु को भी साफ सुथरा बिल्कुल रखें।
1: और अगर किसी जानवर के काटने या खरोचने की घटना हो जाए तो उसे हल्के में ना ले सकें। घाव को तुरंत साबुन या बहते पानी से धोएं और बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि समय पर उपचार कई गंभीर समस्याओं की बचा सकता है।
2: हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा नेहा कि अक्सर ये छोटी छोटी बीमारियां लगती हैं हमें, लेकिन ये बहुत गंभीर रूप धारण कर सकती हैं। आइए विश्व जूनोजिस दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि अपने स्वास्थ्य के साथ साथ पशुओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, जागरूक रहेंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे और मिलकर एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज बनाने में अपना मुख्य योगदान देंगे।
1: फिलहाल हम हमारे कार्यक्रम की खूबसूरती को बरकरार रखने में भी योगदान देंगे और एक खूबसूरत गीत आपको सुनवाएंगे।

0: हमारे देश की सबसे
1: मैं एकदम रिलैक्स में। माधुरी, हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या है? यही कि यहाँ ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने विचार, संघर्ष और कर्मों से समाज और राष्ट्र को नई दिशा दी है। उनकी यादें केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
0: बिल्कुल नेहा, ऐसे महापुरुषों को याद करना केवल उन्हें श्रद्धांजलि देना नहीं, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का अवसर भी है। आज का दिन भी हमें ऐसे ही दो महान विभूतियों का स्मरण कराने आया है। जी हाँ,
1: आज हम सामाजिक न्याय के अग्रदूत बाबू जगजीवन राम जी की पुण्यतिथि और प्रखर राष्ट्रभक्त, शिक्षाविद और दूरदर्शी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। आइए उनके जीवन और विचारों से प्रेरणा लेने का प्रयास करें।
0: बिल्कुल नेहा, बाबू जगजीवन राम जी ने अपने पूरे जीवन को में समानता, सामाजिक न्याय और मानव सम्मान के लिए कार्य किया और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने ये सिद्ध किया कि शिक्षा, मेहनत और आत्मविश्वास से हर मंजिल प्राप्त की जा सकती है। उनका जीवन हमें बिना भेदभाव के सभी को साथ लेकर चलने की प्रेरणा देता है।
1: वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक विद्वान, शिक्षाविद, दूरदर्शी नेता और सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता और शिक्षा के महत्व पर हमेशा बल दिया। उनका जीवन हमें अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने और देश हित को सर्वोपरि मनाने का संदेश देता है।
0: हाँ नेहा, यदि हम इन दोनों महान विभूतियों के जीवन को देखें तो पाएंगे कि उनके कार्यों के क्षेत्र भले ही अलग अलग रहे हो, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था, समाज का उत्थान, राष्ट्र की प्रगति और हर व्यक्ति के सम्मानपूर्ण जीवन का सपना। यही विचार आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक है।
1: सच कहा माधुरी, आज के समय में जब हम अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य की बात करते हैं तो इन महापुरुषों के आदर्श हमें ईमानदारी, सेवा, समानता, शिक्षा और राष्ट्रप्रेम का मार्ग दिखाते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो आइए आज हम सभी ये संकल्प लें कि अपने जीवन में अच्छे संस्कार, परिश्रम, आपसी सम्मान और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत करेंगे। यही इन महान विभूतियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, है ना?
1: इन्हीं प्रेरणादायी विचारों के साथ बाबू जगजीवन राम जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। और अब कैलाश खेर की आवाज में सुनते हैं भारतीय सेना के नाम ये संदेश।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुत

0: सखियों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और उनके अधिकार किसी भी सशक्त समाज की पहचान होते हैं। जब परिवार और समाज मिलकर उनके संरक्षण का संकल्प लेते हैं, तभी एक सुरक्षित और संवेदनशील भविष्य का निर्माण होता है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए महिलाएं और बाल संरक्षण विषय पर सुनते हैं वार्ता, और वार्ताकार हैं श्रीमती अरुणा भार्गव।
1: बच्चे देश का भविष्य, भावी समाज के निर्माता व परिवार की आशा किरण होते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया में बचपन का स्थान महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्र का भावी विकास उनके समुचित विकास पर निर्भर करता है। हमारे देश में अधिकांश बच्चों की स्थिति सामान्य विकास की दृष्टि से अच्छी नहीं है। वे अनेक समस्याओं से घिरे होते हैं, यथा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, शैक्षिक इत्यादि। इसके साथ ही बाल संरक्षण भी एक जटिल समस्या है। आज बच्चों पर हिंसा हावी हो रही है। बड़े और जघन्य अपराधों में नाबालिगों की संलिप्तता से सभी हतप्रभ हैं। 14 से 17 आयु के किशोर चोरी, लूट, अपहरण, डकैती, हत्या, बलात्कार, नकबजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। स्कूल व कॉलेज के अध्ययनरत किशोर संगीन घटनाओं के दलदल में धंस रहे हैं। बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में उनके यौन शोषण के मामलों की हिस्सेदारी करीब 40% दिखाई दे रही है। वर्तमान में भ्रूण हत्या, बाल विवाह, शोषण, उत्पीड़न, दुराचार, कुपोषण, छेड़छाड़, वेश्यावृत्ति, बाल श्रम, अवहेलना, क्रूरता, बंधन, परित्यक्त, भेदभाव, यौन हिंसा, साइबर अपराध, ऑनलाइन बुलिंग, तस्करी, पलायन, अक्षमता, व्यसन से बच्चे पीड़ित हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है। बच्चे घर और बाहर सुरक्षित नहीं हैं। देश में बाल संरक्षण हेतु प्रभावी कानून होने के बावजूद उनका खौफ नहीं है। चूक आखिर कहाँ हो रही है? वैसे अपराधी बनने के पीछे हर वर्ग के भिन्न भिन्न कारण हैं। कमजोर और मध्यम वर्ग के तबके के किशोर घर की सामाजिक आर्थिक स्थिति, समाज व परिवार व विद्यालय में दुर्व्यवहार, भेदभाव, परिवार का कलहपूर्ण वातावरण, इच्छित अवसरों का अभाव, अनुशासन का अभाव। उच्च वर्ग के किशोर आधुनिक जीवन शैली, ऊंची आकांक्षाओं, अतृप्त महत्वाकांक्षाओं, भावनात्मक संबल का अभाव, व्यस्त माता पिता की उदासीनता, संवाद का अभाव,

समाज में बढ़ते खुलेपन, मूल्य, नैतिकताओं और वर्जनाओं के प्रति बढ़ रहा लापरवाही का भाव आदि उनके मुद्दे उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। इस समय सबसे बड़ा कारण टीवी, मोबाइल, फोन, इंटरनेट व सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्रियों से न केवल अपराध बढ़ रहे हैं, अपितु अपराध की पूरी घटना वायरल हो रही है। अनुचित वेबसाइट पर पोर्न देखने की लत पड़ गई है, जबकि आईपीसी, आईटी एक्ट और अन्य कानूनों के तहत पोर्नोग्राफिक साहित्य व वीडियो निर्माण, प्रकाशन व प्रसारण गैरकानूनी है। ऑनलाइन कक्षा के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन की पिता द्वारा व्यवस्था न करवाए जाने से हत्याओं के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इंटरनेट व मोबाइल हमें आधुनिक तो बना रहे हैं, पर संस्कारों व घर परिवार से दूर कर रहे हैं। ये नए युग के बच्चे वीडियो गेम्स, हिंसक किरदारों से प्रभावित हो उसी तरह की हिंसा अपने आसपास करने की गुरेज नहीं करते। बाजार, तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे प्रयोग ने बच्चों की दुनिया बहुत कुछ बदल दी। उनकी गतिविधियों और रुचियां भी बदल गईं। अभिभावकों के दिशा निर्देश या अनुशासन के अभाव से किशोर पेचीदा जीवन जीने लगे हैं। माता पिता के पास बैठने की अपेक्षा साइबर कैफे में जाना अच्छा लग रहा है। नशाखोरी से किशोरों की असामाजिक कार्यों की ओर उन्मुखता मानसिक समस्याओं से ग्रस्त होने से भविष्य अंधकारमय होता नजर आ रहा है। भटकाव के कारण घर की मर्यादा बची नहीं। बिगड़ैल बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी पैदा हो गई है कि उन्हें माता पिता का साथ नहीं, इंटरनेट चाहिए। शहरों में माँ बाप के पास समय नहीं, बच्चे के साथ बैठकर जीवन, जीवन संघर्ष, जीवन मूल्यों पर चर्चा करने की। अभिभावक भी तो नए मूल्य तलाशने लगे हैं, तो बच्चे कहाँ बच पाएंगे? बच्चियाँ परिचितों व परिजनों से भी सुरक्षित नहीं हैं, तथा नाबालिगों द्वारा नाबालिग के साथ दुराचार, वीडियो बनाना, ब्लैकमेल करते हैं। दूसरी ओर किशोर न्यायालय में आरोपी किशोरों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। भ्रूण हत्याएं निरंतर हो रही हैं। घर से भागने वाले बच्चे, बाल तस्करी के आंकड़ों में वृद्धि आश्चर्यजनक है। देखते हैं कि बाल मजदूर आज भी मजदूरी कर रहे हैं। वस्तुतः अमानवीय घटनाओं के आंकड़े पूरी सामाजिक व्यवस्था पर सवाल है। अभिभावकों की नैतिक सत्ता बुरी तरह डोल गई है। नैतिकता और मूल्यों के मायने वो नहीं रह गए जो उनके माता पिता उनमें देखना चाहते हैं। पारिवारिक मूल्यों को जबरदस्त चुनौती है। परिवार एक प्रयोगशाला होती है और माता उनकी प्रमुख वैज्ञानिक। यदि इस प्रयोगशाला में सुसंस्कृत, आत्मसम्मान व निर्भय बालकों का निर्माण करना है, तो उसी के अनुरूप प्रयत्न और प्रयोग किए जाने चाहिए। परिवर्तनशील समाज के नौनिहालों के अभिभावकों, विशेषकर महिलाओं का उत्तरदायित्व बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। वह सृष्टि की रचयिता है। आज शिक्षा व आर्थिक स्वतंत्रता ने उसे नवजीवन चेतना दी है, आत्मविश्वास बढ़ा है, उसकी गतिविधि अधिक दिखाई दे रही है, अपनी सामाजिक सत्ता का भान होने लगा है, सामाजिक संदर्भ में उसका अबला रूप बदल रहा है, सबल हो रही है, मन के धरातल पर जीती है, उसके मन में ममत्व भाव, स्नेह वात्सल्य है, जीवन की समुचित रसधारा उसी पर आधारित है। मधुरता के सहारे परिवारजन को मधुरता दे ताकि वो मधुरता को अपने आसपास भी बांट सके। वह जानती है कि हिंसाचार, दुराचार, चोरी, लूट करने वाले किसी न किसी परिवार के सदस्य होते हैं। वे मनोरुग्णता के शिकार होते हैं, हताश या हीन ग्रंथि के शिकार हैं। इनका उपचार परिवारों में प्रेम और विश्वासपूर्ण वातावरण में ही है। स्नेह, प्रेम, सद्भाव, संस्कार को ही संपत्ति मान ले तो सामाजिक स्तर पर हिंसा कम हो जाएगी। परिवार रचना को सुदृढ़ एवं सार्थक बनाने के लिए परिवार सुसंस्कृत हो। संस्कार शिशु अवस्था से ही दिए जाने चाहिए। हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की जानकारी बच्चों के साथ बड़ों को भी प्राप्त होनी चाहिए। परिवार में बाल सुरक्षा एवं महिला सम्मान पर चर्चा या खुलकर बात होनी चाहिए। परिवारों के बीच मधुर संबंध और वातावरण खुशनुमा हो ताकि प्रेम पूर्वक रहते हुए परस्पर सामंजस्य बना रहेगा। इससे रिश्तों की पावनता को

0: बचाने के संस्कार मिलेंगे। महिलाएं प्रयास करें कि बच्चे स्वयं अपनी समस्याएं सुलझाएं। यही नहीं, वे बच्चों से संबंधित कानूनों, पोक्सो कानूनों, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों, अधिकारों के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था व हेल्पलाइन से अवगत कराएं, ताकि बच्चे अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। महिलाएं व शिक्षक गुड टच, बैड टच की जानकारी देने लगी हैं और गैर सरकारी संस्थाएं भी प्रचार में कार्यरत हैं। बच्चों को चरित्रवान, सद्गुणी, निर्भीक व साहसी, आत्मनिर्भर बनाने के लिए तत्पर रहें, ताकि संभावित संकट का सामना किया जा सके। वैसे आजकल विद्यालयों में जूडो कराटे सिखाने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। स्कूल जाते समय बस, ऑटो, वैन, रिक्शे आदि के स्टाफ के व्यवहार तथा ट्यूटर, कोचिंग व कंप्यूटर एजुकेशन देने वालों पर नज़र रख सकती हैं। स्वावलंबन की भावना का विकास किया जाना आवश्यक है। आजकल ऑनलाइन शिक्षा के समय मोबाइल व लैपटॉप पर भी नज़र रखनी आवश्यक है, अन्यथा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। उन्हें चिंतित नहीं, चौकन्ना रहने के परामर्श देते रहना चाहिए। हर समय उनकी बात या समस्या सुनने के लिए तत्पर रहें। झिड़के नहीं, उपेक्षा न दर्शाएं। उनके विद्यालयों की घटना, मित्रों, उनकी असहजताओं, असामान्य गतिविधियों का टोह दोस्ताना लहजे में लिया जाए। अंत में सतर्क सहज रहने की आवश्यकता है। महिला मनोवैज्ञानिक होती है। बच्चों को शरीर के साथ साथ मन से भी मजबूत बनाएं, ताकि उनके जीवन में जो भी हो, वे भावनात्मक रूप से मजबूत रहें।
1: सखियों, अभी सुन रहे थे आप वार्ता, वार्ताकार थी अरुणा भार्गव और वार्ता का विषय था बाल संरक्षण। तो बहनों, आशा है इस वार्ता को आपने जागरूकता और संवेदनशीलता से सुना होगा और सामाजिक जिम्मेदारी का भी संदेश इस वार्ता ने दिया होगा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: नेहा, आज का युग डिजिटल युग है और हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से समय समय पर ये जानकारी देते हैं कि इस समय इन माध्यमों का उपयोग करते समय आप कैसे सतर्क रहें, है ना नेहा? क्योंकि आज की अधिकांश महिलाएं मोबाइल में ऐसे माध्यमों से जुड़ रही हैं जहां उन्हें खरीदारी करने में आसानी रहती है, घर बैठे ई शॉपिंग, घर बैठे ही वो बैंकिंग सुविधा भी ले रही हैं, रेलवे टिकट बुकिंग करवा सकती हैं और बिजली पानी के बिलिंग की भी सुविधा वो घर बैठे ही ले सकती हैं। ऑनलाइन मनी ट्रांजेक्शन यानी कि पैसे का लेन देन घर बैठे ही वो कर सकती हैं और घर बैठे ही अनेक सूचनाओं का आदान प्रदान जैसी सुविधाएं भी वो आज ले रही हैं, आज की महिलाएं कर रही हैं ऐसा। लेकिन कई बार वो जल्दी जल्दी में या बिना जानकारी के इन सुविधाओं के गलत उपयोग या साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो जाती है, है ना नेहा?
1: बिल्कुल, इसलिए मोबाइल में कभी कभी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, सकें अपनी निजी जानकारी साझा ना करें, बैंक का अकाउंट नंबर भूल कर भी किसी को भी ना बताएं, अपना ओटीपी भी चेक कर लें, ऑनलाइन पार्सल रिसीव कर रही हैं तो भी ओटीपी का सत्यापन कर लें। कई बार आप खरीदारी के चक्कर में गलत फंस जाती हैं, इससे आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कई बार आप ऑनलाइन फ्रॉड का भी शिकार हो सकती हैं, इसलिए सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। कई बार आपको इन बातों की जानकारी होती है लेकिन आपसे फिर भी गलती हो जाती है, तो इसके लिए डिजिटल रूप से साक्षर होने की आवश्यकता है। और माधुरी, हम महिलाएं पुरुषों से या अपने बड़े जो समझदार बच्चे होते हैं उनसे भी इस बारे में जानकारी ले सकती हैं। कोई गलती हो आपसे तो भी आपके पति बच्चे से आप पूछ कर उसका निवारण कर सकती हैं।
0: या इसमें कोई आपका साथी भी हो सकता है जो आपकी इस समस्या का हल निकाल सकता है। वैसे नेहा, अपने सोशल मीडिया ऐप को हमेशा अपडेट रखना चाहिए, गोपनीय सेटिंग्स को नियमित रूप से जांच करते रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अनुचित सामग्री से कैसे बचाव के लिए गोपनीय सेटिंग्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और नेहा, यदि किसी प्रकार की कोई सामग्री अनुचित लगे या संदेहास्पद लगे तो उसे पोस्ट भी नहीं करना चाहिए। अपने पासवर्ड या ऐसी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए जिससे आपके पासवर्ड का पता चल सके। जिन लोगों को आपने पासवर्ड की जानकारी दी है या जिन लोगों ने आपको कोई अपने पासवर्ड की जानकारी दी है, साझा की है, तो उनकी गोपनीयता का भी ख्याल रखना चाहिए, है ना?
1: हाँ माधुरी, बिल्कुल सही कहा। अपनी पहचान गुप्त रखें, जब आप या आपके माता पिता घर पर ना हो तब की जानकारी भी सार्वजनिक तौर पर आप अनजान लोगों को नहीं बताएं, है ना? और फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं करें
0: अनजान लोगों की,
1: बिल्कुल, है ना? गोपनीय सेटिंग्स को भी अनदेखा ना करें, है ना? इनसे
0: अनभिज्ञ भी ना रहे, पूरा ध्यान भी रखें कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। और सोशल मीडिया के लिए 30-30-30 का नियम बताता है कि प्रभावी सामग्री के लिए 30% प्रचार सामग्री होनी चाहिए, 30

0: प्रतिशत क्यूरेट्स या साझा की जाने वाली सामग्री होनी चाहिए और 30% आकर्षक या संवादात्मक पोस्ट होना चाहिए, है ना। और इसके अलावा नेहा, अपनी तस्वीर पोस्ट करने के लिए भी सावधानी रखनी चाहिए। अक्सर हम महिलाएं ऐसा करती है, अपनी तस्वीर तुरंत पोस्ट कर देती हैं, तो इसके लिए शालीनता बनाए रखना चाहिए। कोई भी यूजर्स कैसे भी इसका उपयोग कर सकता है।
1: बिल्कुल माधुरी, पासवर्ड मजबूत और अद्वितीय होना चाहिए जो आसानी से सब लोगों तक ना पहुंच सके, है ना। जानकार बने, सतर्क बने, सजग बने, यही डिजिटल युग की आवश्यकता है। और अब आवश्यकता है एक और खूबसूरत गीत की।
2: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

0: कैटेगरी पासवर्ड मजबूत और अद्वितीय होना चाहिए जो आसानी से सब लोगों तक ना पहुंच सके, है ना। जानकार बने, सतर्क बने, सजग बने, यही डिजिटल युग की आवश्यकता है। और अब आवश्यकता है एक और खूबसूरत गीत की।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तो? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

0: क्या सखियों आपको भी अचानक बहुत गर्मी लगती है या रात में अचानक बहुत अधिक पसीना आने लगता
1: आता है
0: या नींद पूरी नहीं हो पाती,
1: कई बार नहीं हो पाती,
0: बार बार मूड स्विंग भी होता है,
1: होता है,
0: या बिना वजह थकान महसूस होती है? अगर हाँ, जैसे कि माधुरी भी हाँ कह रही है, तो घबराइए मत, ये मेनोपॉज के लक्षण हो सकते हैं।
1: बिल्कुल, मेनोपॉज सखियों कोई बीमारी नहीं है, ये महिलाओं के जीवन का एक स्वाभाविक चरण है, एक प्राकृतिक चरण है। इस समय शरीर में हार्मोनल बदलाव होने के कारण ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं जो आपको लगे कि ये ऐसे कैसे है। इसके लिए आपको सही जानकारी होना, सही और संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम, पर्याप्त आराम और सकारात्मक सोच अपनाकर और इस दौर को सहज बनाया जा सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर आप चिकित्सक की सलाह भी तो ले सकती हैं।
0: तो आइए इस उपयोगी संदेश के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

0: सपनों और भविष्य के लिए एक नई प्रेरणा भी मिली।
1: जी हाँ, याद रखिए, एक जागरूक और आत्मनिर्भर महिला सिर्फ अपना ही नहीं अपने पूरे परिवारों का भविष्य संवारती है, इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।
0: अब हमें दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे महिला जगत के एक नए और प्रेरणादायक अंक में कुछ नई बातें और नए एहसासों के साथ।
1: तो दीजिए आगे अपनी बहन माधुरी शर्मा को
0: और नेहा गोस्वामी को
1: नमस्कार।

0: The encounter now, Mia Sakha produced one of the biggest upsets of Wimbledon 2026, defeating world number one Aryna Sabalenka 6-2, 7-6 to reach her first quarter-final. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi embarks on six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand, says it will strengthen India's Act East policy as well as outlook towards free and open Indo-Pacific. Minister for Cooperation Amit Shah says cooperative movement is entering a new phase of expansion through reforms, digitization and professional management. Heavy rain affects normal life in Mumbai metropolitan region. Traffic disrupted on Mumbai-Pune expressway due to landslides. At least 10 people killed and over 46 injured in Kiev after Russia launches ballistic missile attack. England storm into FIFA World Cup quarterfinals with dramatic 3-2 victory over Mexico. And in Wimbledon tennis, Novak Djokovic beats Roman Safiulin of Russia to reach men's singles quarterfinals. Now Mia Sakha also reaches women's singles quarterfinals by defeating world number one Aryna Sabalenka. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीवनोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
3: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक

0: का काम हमने किया है।
1: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
0: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन,

0: ये 5 साल में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
3: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय

0: समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: जगन्नाथ
2: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
3: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
2: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
4: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
2: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलिजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

0: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के ठीक 2:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म साजन से। इस गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत था नदीम श्रवण का। फिल्म संगीत में लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नील कमल से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी साहब ने, बोल हैं साहिर लुधियानवी के और संगीत है रवि का।

ये गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था सलामी। इस गीत के बोल लिखे थे मदन पाल ने, संगीत था नदीम श्रवण का। लीजिए फिल्म संगीत में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गीता दत्त की आवाज़ में। फिल्म का नाम है जागीर। संगीत है आरडी बर्मन साहब का।

सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था आशिकी। इस गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत था नदीम श्रवण का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल था। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दोपहर के 3 बजे हैं। हमारी आज की पहली और सभा यहीं समाप्त होती है। हमारी सायंकालीन एवं दूसरी सभा शुरू होगी ठीक 4:58 पर संकेत ध्वनि के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय हिंद।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ज पर। संध्या के 5 बजने को है, आज की हमारी दूसरी सभा प्रारंभ होती है। सभा के प्रारंभ में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशिया

0: प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीन देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन को एक नए चरण में प्रवेश मिला है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के लिए राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य आपदा मोचन बल के साथ स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मेक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 5:05 हुए हैं और ये समय है हमारे युवा श्रोताओं के लिए उनके कार्यक्रम युवावाणी का। आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रही हैं दिव्या सारस्वत और अक्षय आचार्य।

0: नमस्कार, आकाशवाणी बीकानेर के युववाणी कार्यक्रम में आप सभी प्यारे श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूँ मैं आपकी युवा साथी दिव्या सारस्वत। उम्मीद है साथियों आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस सुहाने सोमवार की शाम का आनंद ले रहे होंगे।
1: और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना मित्र अक्षय आचार्य। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिव्या, आज का जो हमारा एक बात करने का विषय होगा ना, वह सीधा हमारे दिल को और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल अक्षय, और हम जैसे बात करने वाले हैं खुद के लिए समय निकालें, यानी कि मी टाइम के बारे में। आज की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें अक्सर हम भूल जाते हैं कि हम इतने व्यस्त हैं कि सबके लिए टाइम तो निकाल लेते हैं, लेकिन खुद के लिए टाइम निकालना किसी एक बहुत बड़ी समस्या सा दिखता है।
1: सही कहा तुमने एकदम। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक ऑफिस की थकान, काम, घर की जिम्मेदारियां, पढ़ाई और फिर जो बचा हुआ समय है हमारे पास, वो हम स्वाहा कर देते हैं सोशल मीडिया पर।
0: बिल्कुल,
1: बस सब इन जो इंसान है जो पीछे छूटता जा रहा है इन बातों के अंदर, वो बहुत ही अंधेरे में जाते ही जा रहा है और हम खुद से ही दूर होते जा रहे हैं।
0: और वैसे अक्षय, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि हम बहुत थक गए हैं, बहुत ही टायर्ड फील कर रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, चिड़चिड़ापन लग रहा है, लेकिन हमें समझ कभी नहीं आता है कि ऐसा हमारे साथ आखिर क्यों हो रहा है?
1: सच्ची में
0: तो इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है साथियों कि हमारा खुद से संपर्क टूट रहा है।
1: 100% सही दिव्या। लोग अक्सर सोचते हैं कि खुद के लिए समय निकालने का मतलब होगा कि हम स्वार्थी हो गए हैं या फिर हम चीज़ों से काम चुराने लग गए, मतलब जी चुरा रहे हैं हम काम से, ऐसा कुछ, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। खुद को वक्त देना एक मानसिक जरूरत है आज की।
0: ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार होता है, जैसे अच्छा? मैं कभी अकेले में बैठी रहती हूँ तो मुझे क्या बोलते हैं, सेल्फिश है यानी स्वार्थी होना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने पर उसे रिफिल करवाते हैं, मोबाइल की बैटरी डाउन होने पर उसे चार्ज करते हैं
1: बिल्कुल,
0: और जैसा डेटा पैक खत्म हो गया तो उसे भी रिचार्ज करते हैं, तो फिर हमारा जो इंसानी दिमाग है, हमारे शरीर है, इसको चार्जिंग की जरूरत नहीं होगी। खुद के लिए समय निकालना भी हमारी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को रिचार्ज करने जैसा ही तो है।
1: रिचार्ज तो हमें समय समय पर करता रहना चाहिए, वरना हमारा जैसे कांटेक्ट टूट जाता है वैसे ही हमारा खुद से भी कांटेक्ट टूट जाएगा। दिव्या, हमारे युवाओं को यह कैसे समझाए अब कि खुद के लिए समय निकालने की शुरुआत कैसे करें? मैं तो खुद भी कंफ्यूज्ड हूँ इनको समझाने के लिए, क्योंकि अक्सर शिकायत ये होती है कि टाइम ही नहीं मिलता हमें। अब बताओ,
0: टाइम ही नहीं मिलता? हाँ। तो वैसे बाकी दिनचर्या करने में हम टाइम मिलता थोड़ी हमें कि ये अलग से मिला है, टाइम निकालना पड़ता है दोस्तों।
1: हाँ।
0: और इसके लिए बहुत कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दिन भर में अगर 15 से 20 मिनट भी अगर हम खुद के लिए निकालें, खुद से मिलें, तो ये काफ़ी होगा, क्योंकि 24 घंटे के दिन में अगर 20 मिनट भी आपने निकाल लिए तो 24 घंटा एकदम मज़ेदार से जाएगा, मतलब एकदम हैप्पी हैप्पी आप निकाल पाएंगे। इसकी शुरुआत कर सकते हैं आप सुबह की चाय बिना फ़ोन देखे, एकदम शांत बैठकर, किताबों के साथ बैठकर, प्रकृति के नज़दीक बैठकर या खुद के बारे में सोचकर।
1: देखो, हमारे जेन ज़ी के लिए ऐसा सोचना बहुत मुश्किल होगा, मैं मानता हूँ कि सुबह सुबह बिना मोबाइल के या बिना स्क्रीन टाइम के कुछ चाय पीना या खुद का समय निकालना, शुरुआत सुबह सुबह के एक घंटे तो हमारे जो आज के युवा है वो एकदम फुल्ली एक्टिव होता है कि क्या हो गया रात भर में दुनिया में,
0: क्यों हमने देखा नहीं फोन,
1: कि पृथ्वी की उल्टी तो नहीं घूम गई, बस बस। तो वह बहुत ही सुंदर होगा जब हम ऐसा कर पाएंगे। इसके अलावा हम जो काम आपको खुशी देता हो वो कर सकते हो, जैसे कि कोई अधूरी छूटी हुई आपकी हॉबी है, आपकी डायरी लिखने की अगर इच्छा हो तो आप डायरी लिखिए, अपनी पसंद का जो संगीत है सुबह सुबह बस उसको महसूस कीजिए, बस प्रकृति के बीच थोड़ा देर और बैठिए, यह सब मी टाइम में आएगा। कहते हैं ना, खुद के लिए समय निकालो, यदि आप समय खुद के लिए निकालोगे तो समय खुद आपके लिए निकल के आएगा।
0: बिल्कुल, और एक बात और है अक्षय, जो हम लोगों को यूथ को सोचना चाहिए कि हर चीज़ में हम डिटॉक्स देखते हैं कि ये डिटॉक्स करना चाहिए, ये वो हाइजीन के लिए करते हैं, हेल्थ के लिए करते हैं, लेकिन हमारे खुद के लिए जो डिटॉक्स ज़रूरी है वो है डिजिटल डिटॉक्स, यानी खुद के लिए समय निकालो, अकेले बैठ कर निकालो, चाहे पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबों में निकालें, कहीं भी जाकर जहां आपने बताया कि कोई हॉबी बीच में रह गई वो पूरी करें, या दादा दादी के साथ बैठें, आस पड़ोस में कोई हो, मैं जैसे पर्सनली मेरा बता रही हूँ, गौशाला में जाती हूँ, गायों के साथ, जानवरों के साथ, जो भी आपको
1: बहुत खूब
0: प्रेम हो इन लोगों से।

0: लोगों के साथ टाइम बिताएं,
1: जरूर आप ट्रू लव भी देख पाते हैं गौशाला, और मैं भी अक्सर जाते हैं देखते हैं किस प्रकार से आप उनको जब समय देते हैं तो वापस आपको किस प्रकार से रिस्पॉन्स करते हैं, उनकी मेमोरी भी आपने महसूस किया होगा बहुत ही गहरी होती है,
0: जल्दी पहचान
1: लेते हैं, सूंघ लेते हैं, उनको शक्ल देखने की जरूरत नहीं है। बहुत ही खूब, बहुत ही गहरे विचार दिव्या सच में। बस हम खुद के साथ वक्त बिताते हैं तो हमारी जो रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी वो भी बढ़ जाती है। आप देखो ना, एक आप जो प्रजाति है उसकी तो भाषा जानते हैं, साथ ही साथ दूसरी प्रजाति की भाषा समझ पा रहे हैं, उनको अपनी बातें अपनी भावनाओं के रूप में समझा पा रहे हैं, सांसों से समझा पा रहे हैं। हम फैसलों को लेकर हम ज़्यादा स्पष्ट हो पाते हैं जब हम खुद के लिए समय निकालते हैं।
0: और सबसे ज़रूरी चीज़ है साथियों, हमने बताया था मी टाइम। अब ऐसा ना हो कि मी टाइम में आप घंटों बैठ के अकेले सोशल मीडिया पे मतलब बाहर की वीडियोज़ देख रहे हैं, खुद के विचारों को बिताने का जो समय है उसे लोगों की लाइफ को देख कर उनके विचारों के बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कर लिया, मैंने ऐसा नहीं किया। मी टाइम का ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं है। मी टाइम यानी जैसे मैंने पहले बताया, डिजिटल डिटॉक्स के थ्रू ही हम अपना समय खुद के लिए उपयोग कर पाएंगे।
1: मानता हूँ ये डिटॉक्स बहुत ही मुश्किल होगा, पर करना भी जरूरी हो जाएगा हमारे लिए। जब हम ऐसा डिटॉक्स करेंगे ना तो बहुत ही कठिन आएगी, पर हमें याद रखना है कि यदि हम जोर लगाते, कहते हैं ना मानव जब है जोर लगाता पत्थर पानी बन जाता, तो उसी प्रकार जिस प्रकार से गीत आपको प्रोत्साहित कर रहा है खुद को डिटॉक्स करने का, वो सुनिए आप।

0: शहर एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: तो साथियों, अभी हमने बात की थी मी टाइम की, अब हम ये भी देखना चाहते हैं कि मी टाइम कौन किसको कितना देता है, ये जांच करने का एक ऑप्शन है अपने पास दिव्या
1: जी जी
0: और वो ऑप्शन है हमारा क्विज टाइम का। तो हम क्विज टाइम में लाए हैं आपके लिए दो प्रश्न और उसके आंसर आप किस प्रकार से दे पाते हैं उससे हमें मालूम चल जाएगा। तो आपका आज का जो पहला प्रश्न है वो है,
1: हाल ही में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस शहर ने की थी। मैं अपने सवाल को दोहराती हूँ कि हाल ही में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस शहर ने की थी। और हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है
0: कि हाल ही में लॉन्च हुई इंडियन स्किल्स कॉम्पिटिशन 2026-27 किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है। मैं प्रश्न को दोबारा दोहराता हूं आपके गौर के लिए कि हाल ही में लॉन्च हुई इंडियन स्किल्स कॉम्पिटिशन 2026-27 किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है। साथियों, देखते हैं आप अपना मी टाइम देते हैं या नहीं, ये हम मिलान करेंगे कार्यक्रम के अंत में। तब तक हम चलते हैं अपने कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर।
2: आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी।

0: 90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: साथियों, गीत से पहले हमने बात की थी मी टाइम, यानी खुद के लिए समय निकालना, पढ़ना, लिखना, प्रकृति के नज़दीक जाना या किताबें पढ़ना। अब किताबें पढ़ने, रीडिंग के टाइम में हम खुद में इतना व्यस्त हो जाते हैं या खुद को बहुत ही करीबी से देखते हैं, और खुद को हम जब करीबी से देखते हैं तो हमारे अंदर एक नया गुण उत्पन्न होता है जिसे हम आम बोलचाल में आत्मविश्वास कहते हैं, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। यही सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें आज के टाइम में दूसरे महत्वपूर्ण विषय से जोड़ने जा रहा है, यानी कि अब हम जब युवा हैं, युवाने का कार्यक्रम चल रहा है, आत्मविश्वास की बात आ रही है, तो आत्मविश्वास से सीधा सीधा हम जाते हैं लीडरशिप की ओर।
1: वाह, लीडरशिप बहुत ही कहते हैं ना, एक सक्षम पॉइंट है इंसान के लाइफ में। यदि कोई आदमी अपने अंदर लीडरशिप का गुण विकसित कर ले, तो एक कॉट भी है कि दुनिया में आज तक उन्होंने ही राज किया है जिनको खुद पे विश्वास हुआ है। और खुद पे जब विश्वास होता है तो आदमी में अपने आप लीडरशिप का गुण जाग जाता है,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि दिव्या उसको लगता है कि मेरे द्वारा लिया गया हर निर्णय सही होगा,
0: सही होगा।
1: चाहे वो हो सकता है बाकियों के लिए अपनाने पर गलत हो, पर अगर आपने खुद पे विश्वास करते हुए निर्णय ले लिया है तो वो सही होगा भी अंत तक, क्योंकि आप उसको करके ही दम लेंगे। और ये एक बेहतरीन विषय भी मानता हूँ मैं, कि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ राजनीति में जाना हो गया या किसी बड़ी कंपनी का बॉस बनना हो गया, लेकिन सच बात यह है कि ऐसा नहीं है।
0: तुमने जैसा बताया कि मन के हारे
1: हार है
0: हार है और मन के जीते जीत,
1: जीत।
0: तो लीडरशिप कोई कुर्सी या पद नहीं है साथियों, कि हम सीधा राजनीति में एंटर करेंगे, वो कुर्सी मिलेगी तभी हम लीडरशिप के मतलब लीडरशिप कर पाएंगे। ये तो एक माइंडसेट है, एक जिम्मेदारी है खुद के प्रति। जैसे मी टाइम में खुद की जिम्मेदारी लेते हैं हम, कि हम 15 से 20 मिनट खुद के लिए नहीं।

0: निकालेंगे, वैसे ही ये जो लीडरशिप है 15-20 मिनट खुद के लिए निकालने जैसा ही है कि अपना निर्णय मैं खुद लेने में सक्षम
1: सक्षम
0: हूँ।
1: हूँ।
0: और इसकी शुरुआत हम खुद से ही करते हैं। अब जो हम युवा हैं, अपना समय, अपनी आदतें, अपने विचारों को अगर अपने ही द्वारा सही दिशा दें, सही रास्ता दें, तो हम खुद के लीडर खुद हो सकते हैं, जो कि एक बेहद ज़रूरी है। अगर हम हमारे जीवन के निर्णय हैं जो दूसरों पे आश्रित छोड़ देंगे, तो फिर हमारा हम में खुद में कुछ भी नहीं बचेगा।
1: इसी बात से मुझे एक बात भी याद आती है कि स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि सबसे पहले खुद पर भरोसा करो। आज जो युवा है वो सिर्फ कल का भविष्य नहीं है, वह आने वाले समय का बीज भी है, वह आज का लीडर भी है। इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं वो युवाओं ने ही किए हैं, क्योंकि युवा एक बेहतरीन सोच के साथ आगे बढ़ता है।
0: तो देखो अक्षय, जैसे एक सवाल मेरे दिमाग से झट से आया है,
1: कौन सा?
0: जैसे अगर मेरा ही कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन हो, मैं दूसरों की बात नहीं कर रही, खुद
1: ठीक
0: पे ले
1: है,
0: रही हूँ,
1: हाँ
0: मी टाइम है, तो मैं खुद के लिए सोच रही हूँ,
1: सही है।
0: तो जब मैं हूँ मेरे अंदर, इस जो ये क्वालिटी तुम बता रहे हो कि लीडरशिप है, ये लीडरशिप कहाँ से जागृत करूँ मैं, कि कोई एक बटन हो मैं जाके एकदम लीडरशिप को ऑन कर दूँ कि झट से ऑन हो गया, या जैसे जन्मजात में मुझे मिला
1: देखो
0: होगा।
1: कॉमन सी बात है, स्विच होता तो हर कोई ऑन करता,
0: बिल्कुल।
1: और बात रही जन्मजात की तो फिर तो एक फैमिली ही लीडर होती। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जन्मजात गुण नहीं है, इसमें कोई भी अपने आप पर विश्वास करते हुए आगे आ सकता है। एक अच्छे लीडर का सबसे पहला गुण होता है कि वह आत्म जागरूक होता है, यानी कि खुद को जानता है पहले कि मेरी क्षमताएं क्या क्या है, मैं कहाँ सहन कर सकता हूँ और कहाँ अग्रेसिव हो जाता हूँ, और कहाँ होता हूँ तो कैसे मैं खुद को रोक सकता हूँ। अपनी कमियों को पहचानना सबसे बड़ी लीडरशिप हो जाती है। देखो दूसरों की कमियां तो हम, अगर मैं आपको पेपर दूं ना अभी कि आप बैठ करके मेरी सारी कमियां लिखिए, तो आप
0: एग्जैक्टली
1: 2 मिनट में 200 लिख देंगे,
0: पूरा
1: पर
0: पन्ना
1: मैं
0: भर
1: कहूंगा
0: दूंगी
1: मेरे
0: मैं
1: गुण
0: तो।
1: लिखिए, हाँ तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो बस जब ये आप अपने आप पे स्विच कर लेंगे ना कि खुद के गुण नहीं कमियां पहचान पाओ और उसको सुधार पाओ, वो सबसे बड़ी लीडरशिप का सबसे बड़ी और सबसे पहली सीढ़ी हो जाएगी आपकी।
0: अब तुम्हारे साथ बात करके मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ आई है कि इसका सबसे बड़ा गुण है, या ऑब्जेक्शन ऑब्जर्वेशन करने की कोई जो बात है बढ़िया सी, यानी कि तुम्हें गौर से सुनो, यानी कि दूसरों को गौर से सुनो। वाकई में तुमने बहुत अच्छे से समझाया। तो साथियों, लीडरशिप करना एक कोई हुक्म नहीं होता है कि जैसे मैंने अक्षय को बोल दिया, अक्षय फलां फलां काम करो, ये लीडरशिप नहीं होती है।
1: बिल्कुल नहीं होती।
0: लीडरशिप वो होती है कि हम अपनी टीम के हर सदस्य को, हर मेंबर की बात कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम ज़रूर आएगी, तो उस बात को आराम से सुने, अपने व्यवहार में उतारे, और सबको साथ लेकर चलना जो होता है वो होता है असली लीडरशिप। वो हमारा डर नहीं होता है, बल्कि ऐसा करने से हमारे बीच में कम्युनिकेशन लेवल हाई बनता है, भरोसा बनता है कि अभी जैसे अपनी बात हुई, तुमने मुझे बहुत ढंग से समझाया, इन फ्यूचर भगवान ना करे पर अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो सबसे पहले जैसे मुझे याद आएगा कि अरे इसका निवारण तो अक्षय के पास निसंदेह मिलेगा।
1: अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो बहुत ही कॉमन बात है कि आप अगर लीडरशिप चाहते हैं तो, जैसा मैंने एक बात वापस दोहराने का मतलब ही नहीं कि विश्वास आपको बनाना ही पड़ेगा खुद पे।
0: बिल्कुल
1: जब आप
0: बिल्कुल
1: खुद पे खुद के निर्णय पे डाउट करेंगे कि मैं इस, मान लो आप पढ़ाई शुरू करें तो मैं इस स्ट्रेटेजी से पढ़ने वाला हूँ, तो उसमें आप डाउट करें कि मैंने पहला विषय जो है ये चुना है लेकिन मेरा दोस्त वो ये कर रहा है, तो क्या मेरा सही है या उसका सही है, आपने यहाँ पर एक कदम अपना खो दिया है। तो बड़े मंच की भी आपको ज़रूरत नहीं है, बस खुद के मन से सोचें और निर्णय लें। अपने कॉलेज में कोई प्रोग्राम है आपका, आप उसे संभालने की कोशिश कीजिए, हो सकता है आप वो ख़राब कर दे पर वो आपका पहला कदम हो जाएगा। अपने गांव मोहल्ले में स्वच्छता की जिम्मेवारी उठा सकते हैं आप, कोई भी एक नया सेक्टर पकड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं शहर में ये हो रहा है, हमारे गांव में कब होगा, कब क्या होगा, मैं शुरू करता
0: हमें
1: हूं ना,
0: खुद ही करना रहेगा,
1: बस वही
0: मैं
1: वो
0: करूंगा
1: हो गया
0: पीछे
1: लीडरशिप।
0: पीछे।
1: यहां से आप लीडर बन गए, और आप जब लीडर बनेंगे, जैसे आपने कहा कि ऑर्डर देना नहीं है फॉलो करना है, जैसे हम
0: फॉलो करना।
1: आर्मी में भी देखते हैं, एक जब आर्मी के ट्रेनर होता है वो अपने नए कमांडोज को जब ट्रेन करता है तो
0: जी
1: एक
0: जी
1: नियम होता है कमांडोज की सुनेंगे, वो चाहता तो कह सकता है कमांडोज ठंडे पानी में कूद जाओ, कह सकता है, पर वो सबसे
0: जी
1: पहले खुद उतरता है उसमें, अब आओ
0: हाँ,
1: अंदर आओ, ये होता है सबसे पहले खुद करें फिर
0: और
1: दूसरों से
0: साथ
1: इच्छा
0: में लेके
1: रखें।
0: चलें। जी, तो एक मेन बात ये समझ आती है कि टीम वर्क करने को कभी भूलना नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए।
0: आप अकेले रहकर कोई एक मंच जीत सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरी की पूरी सीरीज जीतनी है, तो एक मजबूत टीम, बहुत ही बढ़िया सा सामंजस्य बना के रखना होगा, क्योंकि लीडर कभी अकेले क्रेडिट नहीं लेता है,
1: नहीं
0: वो
1: लेता।
0: अपनी टीम की सफलता में अपना योगदान देखता है। टीम कैसे काम करेगी, कैसे काम नहीं करेगी, ये सब एक लीडर ही देखता है।
1: तो बात हमने बहुत की है दिव्या, अब हमारे साथियों को भी थोड़ा दिमाग को रिलैक्स चाहिए, तो वो

0: कैसे भी दे सकते हैं अब हम?
1: रिलैक्स ऑब्वियसली अगर कार्यक्रम चल रहा है तो देखो ज्ञान की बातें तो होती रहेगी, और ज्ञान और मनोरंजन का जो ताल है अगर बराबर चलता रहे तो कार्यक्रम का तो मजा दोगुना होएगा ही।
0: तो गाड़ी का गियर ले लूं गानों की तरफ?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: चलिए साथियों।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: देखो दिव्या, गानों की सफर में जब हम सुनते हैं और सफर में जब भी हम गाने सुनते हैं मतलब कि, तो अक्सर हमारा कहता है दिल अरिजीत की आवाज के साथ, तो दिल कहता है गार्डन गार्डन सा हो जाता है, चाहे उस वक्त रेगिस्तान में क्यों ना घूम रहे हो।
2: सही बात है, सही बात।
1: पर कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है क्या कि तुम रेगिस्तान में घूम रही हो और तुम एकदम सूखी सूखी जगह देख कर भी सोचती हो कि अचानक से सवाल आता हो मन में कि क्या कभी यहाँ पर भी पानी बहता था क्या, या ऐसी सूखा ही था शुरुआत से?
2: ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है।
1: अच्छा,
2: और मजेदार बात ये है कि कई बार जैसे क्यूरियोसिटी मेरे अंदर बहुत है, तुम देखते
1: हो,
2: हर
1: देख
2: बात पे छोटी छोटी बातों पे सवाल पूछने लगती हूँ। तो कई बार जैसे वहाँ के लोकल लोगों से पूछ लेते हैं, किसी बुजुर्ग से पूछ लेती हूँ कि यहाँ कभी पानी बहता भी था क्या, तो वो सीधा यही जवाब देते हैं, अरे बेटा तुमने इसका असली रूप अभी तक देखा ही नहीं।
1: सच में हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो किसी पुराने नक्शे से कम नहीं होता है, मतलब उनका जो माइंड भी, जो मेमोरी होती है वो भी हमारी तुलना में उनकी बहुत ज्यादा होती है। हमने तो ये स्क्रीन टाइम के चक्कर में बहुत कम कर दिए, 30 सेकंड से 15 सेकंड भी आ गए हम। पर वहीं जहाँ हमें रेते रेते दिखाई देती है, वहाँ उन्हें बहती हुई लहरें दिखाई देती है, मतलब ऐसा महसूस कर पाते हैं, वो देख पाते हैं उस समय की बातों को।
2: वो ऐसा इसलिए देख पाते हैं एक्चुअली, क्योंकि उनकी आंखें जो हैं वो कैमरा के जैसे होती है, लॉक कर लेती है, क्योंकि उन्होंने कभी देखी होंगी वहाँ पे लहरें। और जब ऐसी बात होते हैं तो मैं सबसे पहले मेरे ही राजस्थान की बात करती हूँ कि राजस्थान,
1: हमारे राजस्थान,
2: मैं मेरा सोचती हूँ, सेल्फिश हूँ ना, मी टाइम, यानी मेरे लिए
1: से। तुम गलत जा रही हो।
2: तो एक ऐसी नदी आती है दोस्तों हमारे राजस्थान की, जो आज भी लोगों की याद में बहती है, यानी कि अब वो असल में तो नहीं बह रही, लेकिन उन किसी की आंखों के कैमरे में, किसी के दिमाग के कंप्यूटर में एक स्मृति के रूप में बह रही है।
1: तुम गगन नदी की बात कर रही हो?
2: बिल्कुल।
1: अरे मैंने पहचान लिया, वास्तव में नाम लेते ही लगता है जैसे कोई पुरानी कहानी खुल रही हो,
2: पुरानी किताब खुल गई हो,
1: बिल्कुल हो रही हो। और यही नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं है, बल्कि सभ्यता है, खेती है, संस्कृति है, और इसके साथ साथ हमारी जो संस्कृति का विकास का क्रम है वो भी ये समेटी हुई है।
2: और कहते हैं ना अक्षय कि हम कोई फेवरेट काम करते हैं, फेवरेट पर्सन से मिलते हैं, तो हमारी जिंदगी में क्या आती है, बाहर। ठीक वैसे ही जब मानसून आता है तो गग्गर नदी में फिर से बाहर आ जाती है, यानी कि वो फिर से जीवंत दिखाई देने लगती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसका पानी नहीं है, इसके किनारों पर कई सभ्यताओं के

0: कहानियां भी अपने आप में ये समेटे हुए हैं।
1: देखो मैं तो ये भी कहूँगा कि इतिहासकारों पुरातत्वविदों उनकी मतलब क्या ना जननी है, जननी यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ उनके जो पहचान है उसकी जननी है, क्योंकि उनसे उनको अनुभव मिला है, ज्ञान मिला है, उसी के दम पे आज उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो उनको पहचान के जन्म देने वाले भी होगी एक प्रकार से, और प्राचीन बस्तियों के अवशेष वो यहाँ से खोज पाए हैं। इसीलिए तो जब हम गग्गर नदी का नाम लेते हैं तो सिर्फ एक नदी नहीं रह जाती बल्कि हजारों वर्षों की विरासत होती है, यादें होती है, तरीके होते हैं, कल्चर होते हैं, पैटर्न होता है और लाखों चीज़ें, क्या बोले हम अब
0: उन सभी को हम बस एक ही टॉपिक के अंदर समाहित करके याद कर लेते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि किसी भी नदी की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है पता है? वो होता है आसपास की सभ्यता, संस्कृति, आम लोगों को जोड़ना, गांवों को, खेतों को, संस्कृतियों को और कभी कभी पीढ़ियों को भी जोड़ देती है ये सिर्फ और सिर्फ नदियाँ।
1: इसमें पीढ़ियों का जुड़ाव बहुत ही गहरा। सोचो कितने बच्चे इसके किनारे खेलते होंगे, कितने किसान इसकी ओर देख के बारिश की उम्मीद करते होंगे, और कितनी लोक गाथाएं जो हैं इसके किनारे गाई गई होगी, इसके ऊपर गाई गई होगी। मतलब कहते हैं ना कल्चर का विकास में ये एक आधार है।
0: वही है, देखो गग्गर चाहे साथियों पूरे साल में न बहती हूँ, लेकिन लोगों के मन में जो वहाँ के आम लोग हैं, जिन लोगों ने उस नदी के किनारे अपना बचपन बिताया है, जिन लोगों ने अपना मतलब किशोर अवस्था वहाँ देखी है, तो उनका प्रवाह आज भी उनके लिए वैसा बना। जब भी वो अपने बच्चों के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ में निकलते हैं तो बताते होंगे कि हम यहाँ नदी किनारे ये करते थे, वो करते थे, और यहाँ तक कि वहाँ के जो लोकगीत है उसमें भी काफ़ी हद तक गग्गर नदी का जिक्र आज तक होता आ रहा है।
1: बिल्कुल, ये वही बात है जैसा हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़के हो जाती है। बस वही यहाँ लागू हो रहा है। वैसे मुझे हमेशा लगता है कि किसी जगह की पहचान सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं होती है, उसकी नदियों से, उसके पेड़ों से, उसकी मिट्टी से, उसकी लोक गाथाओं से, उसके लोगों से, उसके अपनत्व से और वहाँ के कल्चर से हो जाती है। किस प्रकार हम अपनत्व दिखाते हैं, किस प्रकार हम राजगी नाराजगी, किस प्रकार हम खेलते कूदते, ये सब वो मिट्टी वहाँ खुशबू में समाहित कर लेती है।
0: और वैसे कहते हैं ना कि धीरे धीरे नाम तो रह जाते हैं लेकिन उनके पीछे की कहानी खो जाती है। कुछ ऐसा ही है, क्योंकि गग्गर नदी नाम से तो नदी है लेकिन उसका पानी कहीं ना कहीं खो गया है। अब गग्गर की बात करें तो हमें यही सिखाती है साथियों कि हर धारा का प्रवाह, हर धारा का महत्व तभी होता है जब मौसम में कुछ दिखाई ना दे। कुछ चीज़ें अपनी उपस्थिति से नहीं, अपने प्रभाव से याद रखी जाती है।
1: तो हमारा भी प्रवाह है कि बात के बाद गीत संगीत भी चलना चाहिए, तो क्यों ना हम भी अपने प्रवाह की ओर प्रवाहित होएं।
0: बिल्कुल।

0: पानी पानी पानी। हम बात कर रहे थे अभी नदियों के बारे में, उसके साइड की कल्चर के बारे में। ऐसे कुछ कल्चर्स सिर्फ उस बातों में नहीं, कुछ पेंटिंग्स में भी होती है। कहीं संगीत कहता है तो कहीं कुछ पेंटिंग्स कहती है, उसके कलर कहते हैं। वैसे ही एक है पिछुआई, वो भी बहुत खूब है, अपनी कलाओं के बारे में बताती है।
1: और कई बार तो ऐसा होता है अक्षय कि चित्र के सामने अगर हम कहीं खड़े हो जाएं तो जैसे कोई संगीत है, प्रकृति है, जैसे संगीत शब्दों में कहता है, ठीक वैसे ही जो ये चित्र होते हैं अपने रंगों से काफ़ी चीज़ें बयां कर देते हैं। अब कई बार हम किसी चित्र के सामने खड़े हो जाएं तो ऐसा लगता है वो अपनी कहानी खुद सुना रहा है। राजस्थान की तो ये खूबी हमारे शुरुआत से रही है। यहाँ की हवेलियों की बात करें, मंदिरों की बात करें या पुराने महलों की, हर दीवार कुछ ना कुछ एक नई कहानी कहती है।
0: सच है, लेकिन क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि चित्र देख देख रहे हो तुम्हें, और देखकर ऐसा लगा हो कि सिर्फ कला नहीं है बल्कि भक्ति है, और यानी कि चित्र का अपना एक अवसर, अपना एक भाव होता है, वो तुम्हें दिखाई दे रहा हो।
1: और जैसे आपने नाम लिया भी अक्षय, पिछवाई, पिछवाई शब्द का जैसे हम सीधा अर्थ देखें तो पीछे लगाई जाने वाली सजावटी चित्रपट, यानी मंदिरों में हम देखें तो श्रीनाथ जी की प्रतिमा, नाथ द्वारा कभी अब तुम जाओगे तो वहाँ जाके अगर चित्रकला का कोई बेहतरीन उदाहरण है तो वो सबसे ज़्यादा पिछवाई ही मिलेगा। प्रतिमा के पीछे अलग अलग अवसरों पर ऋतुओं के अनुसार इन्हें सजा दिया जाता है, यानी हर चित्र का अपना एक नया अवसर होता है, एक नया भाव होता है।
0: बिल्कुल, और जैसे तुमने बताया ऋतु के हिसाब से सजाते हैं, वैसे हम ऋतु भी दिखाते हैं। कहीं कमल खिलते दिखते हैं तो कहीं गायें दिखती है, मोर दिखते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन्हें बनाने का कलाकार जो होता है वो महीनों लगा होता है, एक दिन दो दिन की बात नहीं है। एक
1: बिल्कुल
0: एक रेखा, एक एक रंग बड़ी सावधानी से लेकर चलता है। और आज जब हम मशीनों से कुछ जल्दी बनाने लगते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कलाकार धैर्य और अपनी कला जीवित रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे, क्योंकि हम मशीनरी देख पा रहे हैं। मुझे हमेशा से लगता है कि किसी कलाकार की सबसे बड़ी पहचान उसके हाथ नहीं, उसका धैर्य होता है।
1: हाँ, और यही पिछवाई कला हमें सिखाती है कि सुंदरता जल्दबाजी में कभी भी नहीं बन
0: कभी भी
1: सकती।
0: नहीं आती।
1: अगर तुम बात कर रहे हो मशीनरी की, अब मशीनरी एडिटेड अगर हम पेंटिंग्स देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं अधूरी तो लगेगी। देखो, जो कला, जो आनंद हाथ से बनाई हुई चीज़ों में मिलता है
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल
1: मशीनों से बनी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। इसीलिए समय, समर्पण और साधना, इन जब तीनों साथ मिलते हैं तब जाके कहीं कला का जन्म होता है। और यही ज़रूरी है कि अगर हम अपनी लोक कलाओं को नहीं अपनाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ तस्वीरें देखेंगी, यानी उनकी आत्मा ये नहीं समझ पाएगी कि लोक कला क्या थी। अब राजस्थान से हैं, अगर पिछवाई कला के बारे में अगर हम अपने बच्चों को नहीं बता पाएंगे तो हम क्या ही मतलब ऐसा संचय करके रखेंगे कि बच्चों को कुछ बता पाएं।
0: बिल्कुल, अपने अस्तित्व को खोने के बराबर हो जाएगा। और हम अब चलते हैं अपनी बात को समेटते हुए गीत की ओर।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूँ। मैं हूँ आपका कैलाश खेर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: संगठना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने पूछे से आपसे दो सवाल, तो उनका जवाब जाने का वक्त आ चुका है। आइए मिलाते हैं उनके जवाब। तो हमारा पहला सवाल आपसे ये था कि हाल ही में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो उसकी मेजबानी की थी हमारी राजस्थान की राजधानी जयपुर ने। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि हाल ही में लॉन्च हुई इंडियन स्किल्स कंपटीशन 2026 और 27 किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है? जिसका जवाब है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय।
2: और हमारे अब कुछ दोस्तों को इंतजार होता है रोजगार सूचना का, तो आज रोजगार सूचना में है अग्निवीर की तरफ से, जो कि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 6 जुलाई और 26 जुलाई तक ये चलेंगे, 12th पास के लिए है। आप अधिक जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट iafrecruitment.edcil.co.in पर जाकर के जान सकते हैं।
1: तो ख्याल रखिएगा अपना, अपनों का और हमारा भी, क्योंकि हम आते हैं शाम 5:05 पर युवाणी कार्यक्रम के साथ। नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रही थी दिव्या सारस्वत और अक्षय आचार्य। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 5:55 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा।

संध्या 7 बजे हमारे ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत, और आज के इस ग्रामीण जगत में चर्चा होगी सप्ताह के कृषि कार्य, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं वन महोत्सव सप्ताह। साथ में चर्चा हो पाएगी महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं और खराब मौसम में अपना व पशुओं का बचाव कैसे करें। इसके साथ में आप सुनेंगे लोकगीत।

संध्या 7:45 पर सुनिएगा सुगम संगीत। लोक संगीत आप लोगों के लिए होगा रात्रि 8:30 पर हमारे ढोला मारू चैनल से। संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, जिसमें आप सुन पाएंगे एक ही गीतकार के गीतों को। इसके साथ ही रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत होगा और आप फिल्म संगीत में आप और हम साथ में लुफ्त उठाएंगे 9:15 पर 9:30 पर।

रात्रि 10 बजे हमारे स्टूडियो से प्रसारित किया जाएगा रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसके कलाकार होंगे पंडित कैलाश चंद्र शर्मा। रात्रि 10 बजे सुनना न भूलिएगा अखिल भारतीय संगीत सभा, कलाकार होंगे पंडित चंद्र शर्मा। देश विदेश के समाचार जानने के लिए सुनिएगा रात्रि 8:45 पर हिंदी में समाचार, पश्चात आप सुन पाएंगे News@9 हमारे दिल्ली केंद्र से। News@9 पर होगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार, पश्चात जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात आप सुन पाएंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।

0: ये थी आज के हमारे कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, संध्या के 6 बजने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही समय बाद सुन पाएंगे हिंदी में समाचार, प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप

0: दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पांच सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंध संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आज आप सुन पाएंगे एक ही गीतकार के गाए गीतों को, और आज हमने आप लोगों के लिए उस गीतकार को लिया है जिसको हम कभी भूल ही नहीं सकते, जिसे इस फिल्मी जगत में पंचम दा के नाम से जाना जाता था। चलिए पहले उनका एक बहुत अच्छा सुनहरा प्यारा सा उनका एक गीत सुनते हैं। सुनिएगा पहले ये गीत, फिर हम उनके बारे में उनकी चर्चा करेंगे। तो ये गीत होगा मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में, और फिल्म है तीसरी मंजिल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में भी आज आप सुन रहे हैं एक ही गीतकार। तो लीजिए, एक ही गीतकार में आज हमने चर्चा की है आर डी बर्मन साहब की, जिनका पूरा नाम राहुल देव बर्मन था। हालांकि इन्हें सभी लोग प्यार से पंचमदा कहते थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आर डी बर्मन साहब का बहुत कम लोग जानते कि इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है राहुल देव बर्मन। भारतीय संगीत इतिहास के एक ऐसे क्रांतिकारी संगीतकार थे जिन्होंने बॉलीवुड म्यूज़िक का चेहरा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि 1960 से लेकर के 1990 तक के दशक तक उनका बेहतरीन दबदबा रहा। उन्होंने वेस्टर्न रॉक, जैज, लैटिन और भारतीय संगीत का एक ऐसा अनोखा फ्यूज़न तैयार किया जो आज भी उतना ही फ्रेश लगता है, जिसका एक गीत अभी हम लोगों ने हाल ही में सुना था। इनका जन्म जो है मित्रों, वो 27 जून 1939 को कोलकाता में हुआ था। ये महान संगीतकार एस डी बर्मन साहब, यानी कि सचिन देव बर्मन और मीरा बर्मन के इकलौते बेटे थे। उनके तो संगीत में ही वैसे गुण ही था। अब कई बार लोग ये जानना चाहते थे इनका नाम पंचम कैसे पड़ा। तो ऐसा कहा जाता है कि बचपन में जब वो रोते थे तो वो सुर जो है पा, यानी कि संगीत के सात सुरों का पांचवा सुर यानी कि पंचम सुर जैसा सुनाई देता था। इसलिए दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार, जिन्हें दादा मुनि के नाम से जाना जाता था, उन्होंने ही इन्हें ये नाम दिया पंचमदा। बचपन से ही धुन, बचपन से ही ये बहुत संगीतकार के उस्ताद थे। मात्र 9 साल की उम्र में उन्होंने एक धुन बनाई थी जिसे उनके पिता ने फिल्म फंटूश के गाने में ए मेरी टोपी पलट के आ में इस्तेमाल किया था। इसके अलावा फिल्म प्यासा का एक मशहूर गाना सर जो तेरा चकराए भी पंचमदान ने बचपन में ही कंपोज कर दिया था। चलिए, इनकी शिक्षा और करियर के बारे में और भी चर्चा करेंगे। लीजिए उनका एक बेहतरीन गीत और सुनिएगा, जो है किशोर कुमार की आवाज़ में, और उनका ये गीत जो है वो वह फिल्म अमर प्रेम से।

उम्मीद है कि आपको ये गीत बहुत अच्छा लगा होगा, और लगना भी है क्योंकि ये कंपोज किया हुआ पंचम दा का था। चलिए, जब हम बात कर रहे थे उनके शिक्षा और करियर की शुरुआत की, तो पंचम दा ने उस्ताद अली अकबर खान से सरोद और समता प्रसाद से तबला बजाना सीखा। वह माउथ ऑर्गन बजाने में माहिर थे। फिल्म सोलवा साल 1958 के मशहूर गाने में है अपना दिल तो आवारा में, है अपना दिल तो आवारा में माउथ ऑर्गन की धुन पंचम दा ने ही बजाई थी। शुरुआत में उन्होंने अपने पिता एस डी बर्मन के साथ में एक असिस्टेंट के रूप में कार्य किया। बतौर स्वतंत्र संगीतकार पहली फिल्म 1961 में गुरुदत्त के भाई आत्माराम की एक फिल्म आई थी छोटे नवाब से उन्होंने बतौर स्वतंत्र संगीतकार का पहला ब्रेक मिला। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी 1966 में आई फिल्म तीसरी मंजिल उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसका अभी हमने अब गीत भी सुनी था, ओ हसीना जुल्फों वाली, और आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा ब्लॉकबस्टर रहे। इस फिल्म के जरिए उन्होंने भारतीय सिनेमा में रॉक और जैज का तड़का लगाया। सुनहरी सफलता का दौर 1970 का दशक, पंचम दा का एक विशेष एक अच्छा समय 1970 का दशक पंचम दा के करियर का सबसे सुनहरा दौर था। उन्होंने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और देवानंद साहब जैसे सुपरस्टारों की फिल्म में एक से बढ़कर एक हिट संगीत दिया। अगर उनकी फिल्मों के बारे में अगर आप बात करें तो कटी पतंग, अमर प्रेम, हरे रामा हरे कृष्णा, यादों की बारात, आंधी, हम किसी से कम नहीं, गोलमाल और शोले जैसी अगिनत फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया।

जब एक बात आई शोले, तो जब भी शोले फिल्म आती है तो कुछ ना कुछ हमारे आंखों के सामने गब्बर, जय, वीरू, बसंती आ जाता है। उसका भी एक मित्रों बहुत फेमस गीत आज भी हम जब भी दो दोस्त बात करते हैं, दोस्तों के साथ मजाक होती है या दोस्त उसकी सुनता नहीं है, तो वो एक गीत जरूर गाता है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो चलिए पहले आज हम मन्ना डे की आवाज़ में ये गीत है शोले फिल्म का, पहले हम लोग ये सुनते हैं, और उनके साथ में भी आप आवाज़ सुनेंगे किशोर कुमार की।

पंचमदा के बारे में। उनके संगीत में अनोखे प्रयोग थे। पंचमदा सिर्फ ट्रेडिशनल या वाद्य यंत्रों तक सीमित नहीं थे, वो साउंड इफेक्ट्स के भी जादूगर थे। जैसे कि आपने गाना सुना होगा, फिल्म थी यादों की बारात, उसका एक गाना है चुरा लिया है तुमने जो दिल को, हम आपको ये जरूर गीत सुनाएंगे। उसमें सबसे पहले एक शीशे की बोतल की आवाज़ आती है, ये शीशे के बोतल को टकरा करके, गिलास को टकरा करके, आपस में टकरा करके जो धुन बनाई थी, ये पंचमदा का बहुत ही सुंदर प्रयोग था। कॉम और सैंड पेपर, आपने एक फिल्म और देखी थी सत्ते पे सत्ता, हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन की आवाज़, दुखी पे दुखी हो, उसमें उन्होंने कंगी सैंड पेपर पर रगड़ करके आवाज़ निकाली। गले से आवाज़ निकालने का भी उनका बहुत ज़बरदस्त एक उनका अनूठा उनका प्रयोग, उनकी काबिलियत थी। फिल्म शोले का एक बैकग्राउंड म्यूज़िक था और गाना था महबूबा महबूबा, उनकी अनोखी आवाज़ और वेस्टर्न बीट्स का एक बेहतरीन उपयोग था। उनकी एक बहुत अच्छी मूवी और आई थी 1942 ए लव स्टोरी, आपने वो देखी होगी। साल 1994 में विधु विनोद चोपड़ा की ये फिल्म थी, 1942 यानी कि 1942 ए लव स्टोरी में उन्होंने जो संगीत तैयार किया इस फिल्म के गाने, आहा साहब सुनिए, एक एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा और कुछ ना कहो, ने साबित कर दिया था कि पंचमदा का जादू कभी कम नहीं हो सकता। इस फिल्म ने संगीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन बेहद दुख की बात यह रही कि इस फिल्म की रिलीज होने और उसकी भव्य सफलता को देखने के लिए वो खुद इस दुनिया में नहीं रहे। 4 जनवरी 1994 को मात्र 54 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के कारण इस महान संगीतकार का निधन हो गया। उन्हें मरणोपरांत इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार भी मिला। आज पंचमदा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके बनाए गाने आज भी युवाओं के प्लेलिस्ट में रिमिक्स और ओरिजिनल रूप में राज कर रहे हैं। वो सही मायनों में अपने समय से बहुत आगे के बॉस थे। तो लीजिए, उनकी याद में सुनिएगा ये एक अंतिम गीत।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 6:30 होने को है। अब आप हमारे जयपुर केंद्र से सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, पश्चात जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात सुनिएगा राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन से सहकारिता के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ। करौली जिले के पांचना बांध में गंभीरी नदी और कमांड क्षेत्र के नहरों में पानी छोड़ने की शुरुआत हुई। राज्य में गंभीर अपराधों से 4% की कमी। डीजीपी राजीव शर्मा ने पुलिस की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। और प्रदेश के 13 जिलों में कल बरसात का ऑरेंज और 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। देश में सहकारिता के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है और समृद्धि का रास्ता खुला है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुधारों

0: डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन से सहकारिता के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ है। श्री शाह सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सहकारी बैंक आज करीब 27 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था में सहकारिता के बढ़ते योगदान को दर्शाता है। गृहमंत्री ने कहा कि राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की गतिविधियों को बढ़ाकर उन्हें मजबूत किया जा रहा है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: श्री शाह ने कार्यक्रम में जयपुर के सुमेल गांव में सहकार वन परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसमें 64 एकड़ जमीन पर सहकार वन विकसित किया जाएगा, जिसमें खेजड़ी, रोहिड़ा और नीम के पेड़ लगाए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ प्रदेश में हर गांव और ढाणी में सहकारिता आंदोलन पहुंचा है। राज्य की 42,000 से अधिक सहकारी समितियों से 1,35,00,000 से ज्यादा सदस्य जुड़े हैं। वहीं सहकार सदस्यता अभियान के तहत 8,90,000 से अधिक नए सदस्य जोड़े गए हैं।
2: सहकारिता से जुड़ी जानकारियों को राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाया। आपने देश को सहकार से समृद्धि का एक ऐसा मंत्र दिया जिसने देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर की तकदीर बदलने का काम किया है। इसी वजह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत में सहकारिता और डेयरी सेक्टर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई शक्ति दे रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के साथ दोनों देशों के बीच आपसी साझेदारी पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी जकार्ता में प्रवासी भारतीय समुदाय की सभा को भी संबोधित करेंगे। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया प्रवास पर रहेंगे। इसके बाद वे न्यूजीलैंड भी जाएंगे। करौली जिले के पांचना बांध से आज गंभीरी नदी और कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ा गया। इससे किसानों का लगभग 20 साल लंबा इंतजार समाप्त हुआ और अब उन्हें सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। इस अवसर पर हुए कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने 2 नई PDN आधारित लिफ्ट परियोजनाओं और गुडला लिफ्ट योजना की आधारशिला रखी। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री श्री रावत ने कहा कि इससे सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्र के किसानों को फायदा मिलेगा।
3: निश्चित रूप से हमारा जो पांचना बांध है, इस पे लाखों लोगों की आस्था है, कई लोगों के आजीविका का उपार्जन का एक साधन है, तो निश्चित रूप से 5 नदियों के इस संगम और तीर्थ स्थली पर्यटक के रूप में भी विकसित हम करेंगे। तो आज ये 61 करोड़ की परियोजना आज हमने इसका शिलान्यास किया और मेरे विभाग के अधिकारी इंजीनियर्स को मैंने डायरेक्शन दिए कि ये तय सीमा पे पूरी हो और गुणवत्ता से पूरी हो और सभी पक्षों ने शांतिपूर्ण तरीके से हमारा सहयोग किया।
0: गौरतलब है कि पांचना बांध के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से कमांड और गैर कमांड क्षेत्र के किसानों के बीच विवाद था, जिसे लेकर दोनों पक्षों ने आंदोलन भी किए। राज्य सरकार ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर आपसी सहमति से समझौता करवाया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता

0: कर पुलिस की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गंभीर अपराधों में 4% से अधिक की कमी आई है। वहीं पेपर लीक माफिया पर प्रभावी कार्यवाही, नशा तस्करों और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त अभियानों ने प्रदेश में पुलिसिंग को नई पहचान दी है। राजस्थान पुलिस अकादमी में हुई इस प्रेस वार्ता में पुलिस महानिदेशक ने पुलिस कार्य प्रणाली का पिछले 6 महीनों का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने कहा कि अपराधों की मदद से संपत्ति अर्जित करने वालों को आर्थिक लाभ से वंचित करने के प्रयास तेज किए जाएंगे। साइबर धोखाधड़ी और नारकोटिक्स का जिक्र करते हुए पुलिस महानिदेशक ने इस क्षेत्र की चुनौतियों को देखते हुए और तेजी से काम करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्मार्ट पुलिसिंग पर जोर दिया जाएगा। डीजीपी ने बताया कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में जांच को तेज किया गया है। पोक्सो के तहत दर्ज प्रकरणों में पुलिस का औसत अनुसंधान समय 78 दिन से घटकर 51 दिन और दुष्कर्म के मामलों में 81 दिन से कम होकर 52 दिन रह गया है।
1: महिला सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी प्राथमिकता रही है, उसमें और अधिक कार्य करने की दृष्टि से हम सबसे पहले जयपुर शहर में एक सर्वेक्षण कराएंगे महिला सुरक्षा को लेके, और उसके आधार पे जहाँ पे हमें और अधिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी उसको हम करेंगे। साथ ही साथ इसी तरह का समान कार्रवाई अन्य बड़े शहरों से प्रारंभ करके हम हर डिस्ट्रिक्ट में अपने पुलिस अधीक्षक गणों के माध्यम से कराना चाहेंगे।
0: प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समूचा देश उन्हें याद कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने निवास पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री शर्मा ने प्रदेश के 4 प्रमुख पार्कों का नाम श्री मुखर्जी के नाम पर करने और उनके आदर्शों को समर्पित स्मारक स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जयपुर स्थित वुडलैंड पार्क, जोधपुर के विवेक विहार स्थित सेंट्रल पार्क, कोटा के रामचंद्रपुरा अटवाल नगर स्थित पार्क तथा उदयपुर की सेक्टर 12 योजना के पार्क का नामकरण डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किए जाने का ऐलान किया। साथ ही इन सभी स्थानों पर राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को प्रदर्शित करने वाले स्मारक भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल प्रदेशवासियों को, विशेष रूप से नई पीढ़ी को, श्री मुखर्जी के आदर्शों और विचारों से जोड़ेगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर प्रदेश में अनेक स्थानों पर पौधरोपण और पुष्पांजलि कार्यक्रम रखे गए। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में डॉ. श्यामा मुखर्जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर संगोष्ठी रखी गई। पूर्वी भारत में हवाओं के कम दबाव से राज्य के पूर्वी हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक मॉनसून सक्रिय रहने के आसार हैं। इस दौरान अधिकतर भागों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 9 जुलाई तक उदयपुर और कोटा संभाग तथा आसपास के क्षेत्र में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बरसात की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। उधर जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी अगले 2 दिनों में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। विभाग ने कल तेज हवाओं और गरज चमक के साथ 13 जिलों में बरसात का ऑरेंज और 20 जिलों में येलो अलर्ट बताया है। इस बीच आज तेज गर्मी और उमस के बाद बालोतरा में अच्छी बारिश हुई। जैसलमेर, बाड़मेर जिले के शिव तथा चौहटन में भी धूलभरी आंधी चली और कई इलाकों में तेज पानी बरसा। जालौर के आहोर, सायला, भीनमाल, बागोड़ा में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बरसात हुई। झुंझुनू में भी तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का दौर चला। उधर पाली और राजसमंद जिले के कुमलगढ़ में करीब 1 घंटा मूसलाधार बरसात हुई। जून महीने से अब तक बीकानेर, चूरू और डीडवाना कुचामन में असामान्य बरसात हुई है। वहीं 10 जिलों में अत्यधिक, 18 में सामान्य और 10 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा। प्रदेश के छोटे बड़े 693 बांधों में से 394 इस समय आंशिक रूप से भरे हुए हैं। वहीं 5 बांध पूरी तरह से भर गए हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर आज से प्रदेश में विशेष अभियान शुरू किया गया। प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में बताया कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा। सड़क हादसों की रोकथाम करने और यातायात नियमों की पालना के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए ये पहल की गई है। चूरू जिले के रावतसर कुंजला गांव में पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। दो अलग-अलग मकानों पर दी गई दबिश में आरोपियों के कब्जे से 90

0: पे मोबाइल फोन जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार ये लोग पहले साइबर ठगी के बचाव के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करने की बात करते हैं। इसके बाद लोगों को झांसे में लेकर रुपए ऐंठने का काम कर रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन से सहकारिता के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ। करौली जिले के पांचना बांध से गंभीरी नदी और कमांड क्षेत्र के नहरों में पानी छोड़ने की शुरुआत हुई। राज्य में गंभीर अपराधों में 4% की कमी, डीजीपी राजीव शर्मा ने पुलिस की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। और प्रदेश के 13 जिलों में कल बरसात का ऑरेंज और 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं मनीष व्यास। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पिछले दिनों मौसम के कई रंग देखने को मिले। भीषण गर्मी और उमस के बीच कल मॉनसून ने दस्तक दे ही दी। बारिश की फुहारों ने जिलेवासियों को कुछ राहत प्रदान की, लेकिन उमस के चलते लोग परेशान रहे। इससे पहले आंधी तूफान और बारिश ने बिजली विभाग को बड़ा नुकसान पहुंचाया। जिले में 1500 से अधिक बिजली के खंभे गिर गए। बेमौसम की बरसात से 400 से अधिक गांवों और ढाणियों की बिजली की आपूर्ति बाधित हुई। जिले के रामगढ़ क्षेत्र में 20 किलोवाट क्षमता के एफएम स्टेशन का उद्घाटन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पिछले दिनों वर्चुअल रूप से किया गया। एफएम ट्रांसमीटर के लगने से सरहदी इलाकों के नागरिकों को आकाशवाणी के कार्यक्रमों की बेहतर गुणवत्ता के साथ विस्तारित कवरेज मिलेगी। साथ ही स्थानीय समाचारों, जनहितकारी योजनाओं, शैक्षणिक कार्यक्रमों और कृषि संबंधी जानकारी का प्रसारण प्रभावी रूप से सुनिश्चित हो सकेगा। ग्रामीण विकास को नई दिशा देने और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत जिले भर में ब्लॉक स्तर पर जनसम्मेलन आयोजित किए गए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता रही। पंचायत समिति जैसलमेर की रूपसी ग्राम पंचायत में जिला स्तरीय सम्मेलन रखा गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल सहित प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर रूपसी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोषण वाटिका निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। जिले के पर्यटन और रियल एस्टेट सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए नगर विकास न्यास ने महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। मूल सागर क्षेत्र में प्रस्तावित योजना के तहत 142 फार्म हाउस भूखंडों और 46 व्यावसायिक दुकानों की खुली नीलामी की जाएगी। इस परियोजना से न केवल जिले में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटन और स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। UIT को इस परियोजना से 22 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व की संभावना है। जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान को लेकर पोलियो बूथों पर विशेष उत्साह देखने को मिला। अभियान के तहत श्री जवाहर चिकित्सालय में विधायक छोटू सिंह भाटी ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पहले दिन वंचित रहे बच्चों को अगले दो दिन तक घर घर जाकर स्वास्थ्य कर्मियों ने पोलियो रोधी दवा दी। विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले जैसलमेर में पर्यटकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिला पुलिस ने विशेष पहल की है। इसके तहत स्वर्ण नगरी के होटलों में ठहरने वाले सभी मेहमानों का रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से ई विजिटर्स पोर्टल पर दर्ज करवाना होगा। इसे लेकर बीते दिनों बैठक आयोजित कर होटल संचालकों को इस प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी गई। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। शहर से लेकर सरहद तक योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर योगाभ्यास कार्यक्रम हुए। जिला स्तरीय कार्यक्रम शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में रखा गया। इसके अलावा शहर के पर्यटन स्थल सोनार किला और गढ़सीसर झील के साथ ही ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी कई कार्यक्रम हुए। नियमित और सुचारू पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पिछले दिनों गजरूप सागर स्थित विभागीय परिसर में 5 नलकूपों का लोकार्पण किया गया। 55 लाख रुपए की लागत से बनाए गए इन नलकूपों के शुरू होने से जैसलमेर शहर की पेयजल व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और नागरिकों की पानी की समस्या भी दूर होगी। केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने के लिए पिछले दिनों नगर परिषद सभागार में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। 3 दिन की ये प्रदर्शनी 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के थीम पर आधारित रही। जिले की सूली

0: पर सनसेट पॉइंट को विकसित कर पर्यटन स्थल के तौर पर पहचान दी जाएगी। नगर परिषद ने इस स्थान को मॉल रोड की तर्ज पर विकसित करने की खास योजना शुरू की है। प्रोजेक्ट से नगर परिषद को हर साल 38.5 लाख रुपए का राजस्व मिलेगा। पर्यटकों के लिए जैसलमेर में सनसेट देखने का सूलीडूंगर सबसे पसंदीदा स्थल है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज योजना 2 के तहत अब जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों का कायाकल्प किया जा रहा है। योजना के तहत बॉर्डर पर बसे सुदूर गांवों को विकास और बुनियादी सुविधाओं के साथ जोड़ा जाएगा। गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी तमाम आधुनिक सुविधाओं का एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसके तहत जिले के 30 गांवों का चयन किया गया है, जहां 3 करोड़ रुपए की राशि से ये विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके साथ ही जैसलमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर उपेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। केंद्रीय मंत्री अमित शाह काया सुधार डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन सू सहकारिता रा हल्का माए घणो बढ़ावो भी हो है। करौली जिला रा पांचना बांसू गंभीर नदी और कमांड क्षेत्री नहरा माए पानी छोड़ बारी शुरुआत भी। राज्य माए गंभीर अपराध माए 4% सू बत्ती री कमी, डीजीपी राजीव शर्मा पुलिस री उपलब्धियां रो ब्यौरो पेश करियो। और प्रदेश रा 13 जिला माए काल बरसात रो ऑरेंज और 20 जिला माए येलो अलर्ट जारी।

0: समाचार आरएस आ गए, मैं रचना पारिक और अब है समाचार विगतवार। देश में सहकारिता रे मार्फत लाखों लोगारा जीवन माए बदलाव आयो है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कया के सुधारा डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन सु सहकारिता हलका माए घणो इजाफो भी है। श्री शाह सहकारिता मंत्रालय रा पांचवा स्थापना दिवस रे मौके राख्या जलसा माए बोल रिया हा। वे कया के हर एक खेतर माए बत्तो चोखो प्रदर्शन करबा वाली पांच सहकारी समितियां ने मान्यता देबा खातिर रैंकिंग ढांचो ऐलान करियो गयो है। सहकारी बैंक आज करीब 27 लाख करोड़ रुपया रो कारोबार करे है और देश री माली व्यवस्था माए सहकारिता रा बढ़ता योगदान ने दर्शावे है। गृह मंत्री कया के राज्य माए प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्स री गतिविधियां ने बढ़ार मजबूत करियो जा रियो है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये पांच साल में किया है।
0: श्री शाह कार्यक्रम में जयपुरा सुमेल गांव में सहकार वन परियोजना की शुरुआत करी। इनमें 64 करोड़ जमी माथे 64 एकड़ जमी माथे सहकार वन विकसित करियो जावेला, जिनमें खेजड़ी, रोहिड़ा और नीम रा पेड़ लगाया जावेला। इन मौके मुख्यमंत्री कया के सहकारिता आर्थिक सशक्तिकरण रो जरियो बन्यो है। सहकार सु समृद्धि का मंत्र रह सागे ही प्रदेश रा हर एक गांव और ढाणी माए सहकारिता आंदोलन पूग्यो है। राज्य री 42,000 सु 32 सहकारी समितियां सु 1 करोड़ 35 लाख सु 32 सदस्य जुड़िया है। वठीने सहकार सदस्यता अभियान रे तहत 80 लाख 90 हजार सु 32 युवा सदस्य भी जुड़िया है।
2: सहकारिता से जुड़ी जानकारियों को राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाया। आपने देश को सहकार से समृद्धि का एक ऐसा मंत्र दिया जिसने देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर की तकदीर बदलने का काम किया है। इसी वजह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत में सहकारिता और डेयरी सेक्टर

0: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई शक्ति दे रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल हूं सू थोड़ी देर पहली इंडोनेशिया रा जकार्ता पूग्या। इंडोनेशिया रा राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हवाई अड्डा माथे प्रधानमंत्री मोदी रो स्वागत करिया। इन यात्रा रे दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी इंडोनेशियाई राष्ट्रपति रे सागे दोनों देशां रे बीच आपसी साझेदारी माथे चर्चा करेला। श्री मोदी जकार्ता माए प्रवासी भारतीय समुदाय री सभा ने भी संबोधित करेला। तीन देशां री यात्रा रा दूजा फेर मा श्री मोदी 8 सू 10 जुलाई ताई ऑस्ट्रेलिया प्रवास माथे रहवेला। इन रे पछे वे न्यूजीलैंड भी जावेला। करौली जिलारा पांचना बांध सु आज गंभीरी नदी और कमांडा हलकारी नहरा माए पानी छोड़ियो गयो। इनसु कास्कारा रो करीब 20 बरस लंबो इंतजार पूरो भी हो। अबे वाने सिंचाई खातर पानी मुहैया वह सकेला। इन मौके व्या कार्यक्रम माए जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म दोनों भी पीडीएन आधारित लिफ्ट परियोजनावा और गुडला लिफ्ट योजनारी नींव राखी। इन मौके जल संसाधन मंत्री श्री रावत कया के इनसु सिंचाई व्यवस्था मजबूत वेला और खेतर रा कास्कारा ने फायदो वेला।
0: निश्चित रूप से हमारा जो पांचना बांध है इसके लाखों लोगों की आस्था है, कई लोगों के आजीविका का उपार्जन का एक साधन है। तो निश्चित रूप से पांच नदियों के इस संगम और तीर्थ स्थली पर्यटक के रूप में भी विकसित हम करेंगे। तो आज ये 61 करोड़ की परियोजना आज हमने इसका शिलान्यास किया और मेरे विभाग के अधिकारी इंजीनियर्स को मैंने डायरेक्शन दिए कि तय सीमा पे पूरी हो और गुणवत्ता से पूरी हो और सभी पक्षों ने शांतिपूर्ण तरीके से हमारा सहयोग किया।
1: ध्यान जोग है कि पांचना बांधरा पानी रा बंटवारा बाबत लंबा टेमू कमांड और गैर कमांड हलकारा किसाना रे बीच विवाद चल रहे हो जिनने लेर दोनों पक्ष आंदोलन भी करिया। राज्य सरकार दोनों पक्षारा नुमाइंदा सु बातचीत कर आपसी सहमति सु समझौतो करवायो। ये समाचार आप आकाशवाणी राजयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा आज जयपुर माए प्रेस वार्ता कर पुलिस उपलब्धियां बताई। वणा कया के प्रदेश माए गंभीर अपराध माए 4% सु बत्तीरी कमी आई है। वटी ने पेपर लीक माफिया माथे कड़ी कार्यवाही, नशा तस्कर और समूह माए करया गया अपराध रे खिलाफ करोड़ो अभियान प्रदेशी पुलिसिंग ने नई पहचान दी है। राजस्थान पुलिस अकादमी माए भी इन प्रेस वार्ता माए पुलिस महानिदेशक पुलिस कार्यप्रणाली रो लारला 6 मीनारो लेखोजको पेश करियो है। वणा कया कि अपराधरी मदद सु संपत्ति इकट्ठी करबा वाला ने माली फायदा सु वंचित करबारी कोशिश तेज करी जारी है। साइबर धोखाधड़ी और नारकोटिक्स रो जिक्र करता थका पुलिस महानिदेशक इन हलकारी चुनौती ने देखता थका और तेजी सु काम करबारी जरूरत बताई। वे कया के इन खातर स्मार्ट पुलिसिंग माथे जोर दियो जावेला। डीजीपी बताया कि महिला सुरक्षा सु जुड़िया मामला माए जांच ने तेज करियो गयो है। पोक्सो रे तहत दर्ज प्रकरण माए पुलिस री जांच री मियाद 78 दिन सु घटार 51 दिन और दुष्कर्म रा मामला माए 81 दिन सु घटार 52 दिन रहगी है। वणा बताया कि साइबर अपराधारी रोकथाम और पीड़िता ने बेगी राहत देबा खातर बत्ती और प्रभावी कार्यवाही करी जा रही है।
2: महिला सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी प्राथमिकता रही है, उसमें और अधिक कार्य करने की दृष्टि से हम सबसे पहले जयपुर शहर में एक सर्वेक्षण कराएंगे महिला सुरक्षा को लेके और उसके आधार पे जहाँ पे हमें और अधिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी उसको हम करेंगे। साथ ही साथ इसी तरह का समान कार्रवाई अन्य बड़े शहरों से प्रारंभ करके हम हर डिस्ट्रिक्ट में अपने पुलिस अधीक्षक गणों के माध्यम से कराना चाहेंगे।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज अपरा रहवास माथे वाने पुष्पांजलि अर्पित करी इन मौके श्री शर्मा प्रदेश रा खास चार पारकारो नाम श्री मुखर्जी रा नाम माथे करबा और वारा आदर्श आने समर्पित स्मारक स्थापित करबारो ऐलान करियो मुख्यमंत्री जयपुरा वुडलैंड पार्क जोधपुरा विवेक विहार रा सेंट्रल पार्क कोटारा रामचंद्रपुरा अटवाल नगर रा पार्क और उदयपुरा सेक्टर 12 योजना रा पार्क रो नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रा नाम माथे करबारो ऐलान करियो साथ ही इन सगली ठोड़ा माथे राष्ट्रकानियों वारा योगदान ने प्रदर्शित करबा वाला स्मारक

0: उदयपुरा सेक्टर 12 योजना रा पार्क रो नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रा नाम माथे करबारो ऐलान करियो साथे ही इन सगली ठोड़ा माथे राष्ट्रकानियों मारा योगदान ने प्रदर्शित करबा वाला स्मारक भी बनाया जावेला मुख्यमंत्री कया के पहली प्रदेशवासियां ने खास रूप उन पीढ़ी ने श्री मुखर्जी रा आदर्श रा विचार सु जोड़या जावेला भारतीय जनसंग्रह संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी री 125वीं जयंती रे मौके प्रदेश माए कई ठोड़ा माथे पौधा लगाया गया और पुष्पांजलि कार्यक्रम राखिया गया पूर्वी भारत हवावारा कम दबाव सु राज्य रा पूर्वी हिस्सा माए आवता 4-5 दिन ताई मानसून सक्रिय रह सके है इन दौरान बत्ता हल्का माए हल्की सु मध्यम और कटे-कटे भारी में बरस सके है 9 जुलाई ताई उदयपुर और कोटा संभाग रे आरे सारे रा हल्का माए कटे-कटे भारी सु घनी भारी बरसात वे सके है मौसम महकमा रे मुजब आज अजमेर भरतपुर बीकानेर जोधपुर और जयपुर संभाग रा कुछ एक हिस्सा माए गरज रे साके तेज बारिश वे सके है बठी ने जोधपुर और बीकानेर संभाग माए भी आवता दो दिना माए कुछ एक हल्का माए भारी में बरस बारा आसार है महकमो काल तेज हवावा और गरज चमक रह सागे 13 जिला माए बरसात रो ऑरेंज और 20 जिला माए येलो अलर्ट बतायो इन बीच आज तेज गर्मी और उमस रे पछे बालोतरा माए चोखो में बरसियो जैसलमेर बाड़मेर जिला रा शिव और चौहटन माए भी धूल भरी आंधी चाली और कई इलाका माए तेज पानी बरसियो जालोर रा आहोर सायला भीनमाल बागोड़ा माए तेज हवा वारे सागे रिमझिम में बरसियो झुंझुनू माए भी तेज हवा वारे सागे चित्रायो में बरसियो वठेने पाली और राजसमंद जिला रा कुंभलगढ़ माए भी करीब एक घंटा मूसलाधार में बरसियो जून महीना सु हाल तय बीकानेर चूरू और डीडवाना कुचामन माए भी में बरसियो वठेने 10 जिला माए 32-18 और सामान्य और 10 जिला माए सामान्य कम पानी बरसियो प्रदेश का छोटा बड़ा 693 बांधा माए सू 394 माए टेम थोड़ा टेम माए पानी भरियो बठीने 5 बांध माए थोड़ो पानी भरियो है आज विश्व जुनोरिस दिवस है ओदिन जिनावरा सू मिनखा माए फैलवा वाली संक्रामक बीमारियां रा खतरा और उनसू सावचेती बरसबा और जाग जगाबारा लगा सू मनायो जावे है जुनोटिक बीमारियां जन स्वास्थ्य जिनावराई सेहत और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा खातर बड़ो खतरो है पशुआ और मिनखरा स्वास्थ्य सुरक्षित रखबा खातर पालतू जनावरों रो टेम माथे टीकाकरण करायो जानो जरूरी है और अबे आखिर माय खास खबरा एकर फेरू केंद्रीय मंत्री अमित शाह कया सुधार डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन सु सहकारिता रा हल्का माय घणो बड़ागु भीयो है करौली जिला रा पांचना बांसू गंभीरी नदी और कमांड क्षेत्री री नहरा माय पानी छोड़ बारी शुरुआत भी राज्य में गंभीर अपराध में 4% सु बत्ती की कमी डीजीपी राजीव शर्मा पुलिस उपलब्धियां रो ब्यूरो पेश करियो और प्रदेश का 13 जिला में काल बरसात रो ऑरेंज और 20 जिला में येलो अलर्ट जारी इन सागे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन अठोई पुरोबियो माखलो आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो चावेला नमस्कार
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ज पर संध्या के 7 बजे हैं और ये समय है हमारे ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम ग्रामीण जगत का आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे हैं बजरंग सारस्वत और डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य

0: छह तारीख होगी।
1: और वार क्या है आज?
0: वार है सोमवार।
1: तो सोमवार से लेर रविवार तक यानी आदितवार ताई अपर पूरे हफ्ते रोज को कार्यक्रम है। भी कार्यक्रम मतलब खेती बाड़ी से जुड़ी अपन कृषि से जुड़ी बात कर रहे हैं। तो ई हफ्ते जो है कृषि कार्य है यानी जुलाई रोज को और सप्ताह है इन मैंने कहीं कहीं करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और चूंकि बीकानेर जिला है तो बीकानेर जिले मैंने मानसून पहली जी की बरखा है बा 25 से 30 मिलीमीटर हो गया करे और खेती रो कार्य इन टाइम लगे लगे शुरू हो जाया करे। इन हफ्ते री जिकी तैयारी है बा तैयारी है जिकी पूरी पूरी तरह से खरीफ की पैदावार तैयार करें। इन खातिर सही बगत माथे काम करना जरूरी है क्योंकि अगर आप सही बगत पर काम नहीं करा कई भाई क्या हो क्या आलसी हो जाकर पड़िया रहे अपड़िया रहे जन क्या क्या खेत में बरखा होगी अब बारे क्या सरी साथ देवा को नहीं या कोई और कोई कारण हुए या आलस हुए तो भाई देखिए कोई कोई बरखा हेड़ी है आप सूता हूँ सूता हूँ पर सूतारा क्या करें सूतारी भैंसा कहीं जने है
0: पड़ा ही लावे और भरोसे भैंस पड़ा ही लावे
1: तो ई खातिर बे क्या सूता रह जावे और पछे खेत माने पानी पड़ी गड़ो है वो नमी रहे खेत माने बा पाछो तावड़ो आवे तो बा नमी सूख जाए पछे भले थे कहीं करो कोई काम रखो नहीं पर चूंकि अपने किसान भाई बहन है बे गणकरा जिका है बे मेहनती है
0: सजग भी है
1: सजग भी है
0: हाँ।
1: तो बाने भी क्या ई हफ्ते की काम करना चीजे
0: तो देखो अबार ई हफ्ते महीने बुआई से पहली तैयारी है जिका भाई अबार ते बुआई नहीं करी है बार वास्ते बहुत ही ओ मेहतावर कीमती समय है बाने बुआई कर लेनी चाहिए। और खेतरी अंतिम तैयारी रूप में मानसून री पहली बिरखा हो गए भी तुरंत पछे खेत में कल्टीवेटर या हैरो चला परार माटी ने भुरभुरी कर लेवा तो ठीक रहे। खेत में नमी बचावन सारू आपने पाटो जरूर लगानो चाहिए। खेतरी आपारे बाढ़ है बट है मजबूत करनी चाहिए ताकि खेत रो पानी खेत में ही रहे वो बारे ना जावे। सागे ही आपने उन्नत बीजा रो चयन करना है। बीकानेर जिले में आप जिकी फसला लेवा हाँ बारा उन्नत बीज जिया के मूंगफली री उन्नत बीज है मूंगफली सारू HNG गुणंतर। बाजरे की फसल लेनी चाहवा तो उन्नत किस्म है MP MH 17 और ग्वार लेनो चाहवा तो ग्वार ही उन्नत किस्म है RGC 1031 और जे मोटरी पैदावार लेनी चाहवा तो RMO 257 किस्म सगड़ों अच्छी है। बीज अपने हमेशा प्रमाणित विक्रेता या कृषि विभाग से ही खरीदना चाहिए।
1: और कई भाई जिका है बे जून रे आखिरी हफ्ते मायने बाजरी है या फिर दूसरी फसल बोई दी है तो बाने भी अबे कहीं है कि अबे 20-25 दिन हो गया होवेला तो बाने कहीं है कि खेत माने खर पतवार हुए तो भी खर पतवार ने निकाल और इन्हें साफ कर देना चाहिए। और खर पतवार निकालो तो एक बात ध्यान रखो कि जिसकी फसल है बीज की जड़ा है बा ढीली नहीं हो जावे और नमी भी माथे सुरक्षित रहे इस वास्ते भी माथे मिट्टी से दबा देना चाहिए। पौधों की छटाई करनी चाहिए एक जगह से एक जगह माथे 2-3 पौधा मान लो उग जाया करें इसको कहीं हुए कि पौधा ने माने जी की तंदुरुस्ती है बा कमज़ोर हो जावे तो बाने क्या है कि छटाई कर दे हर एक पौधे में जो बाजरी है भी पौधे से पौधे दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। मेरे अलावा कीट नियंत्रण भी रखना चाहिए। इन वक्त सफ़ेद लटरों प्रकोप शुरू हो जाया करे है और ई वास्ते यदि पौधा पारा पीड़ा पड़े सूखन लाग गया हुए तो भी जड़ारी जाँच करें रोकथाम खातिर क्लोर पायरिस फॉस 20 EC और 2 लीटर प्रति हेक्टेयर सिंचाई टाइम पानी सागे दे देना चाहिए।
0: और बहुत ही अच्छी बात बताई नमामि भाई सागे सागे हूँ बताऊँ तो चालू कि जिका भाई लोग सब्जी और चारा उत्पादन लेनो चाहे है बाने भी बहुत सावचेती सु काम करना है। और इन हफ्ते आप टिंडा लौकी तोरू भिंडी इरी सीधी बुआई कर सको। जे आप मिर्च टमाटर बैंगनी पौध नर्सरी में तैयार करोड़ी हुए तो 15 जुलाई बाद में खेत में रोप सको। पानी जठे भेड़ो हुए है बटे आप कद्दू वर्गीय सब्जियां नहीं उगाओ तो ठीक रहे। सागे हरे चारे सारू ओ बुआई रो ओ समय बहुत ही उपयुक्त है। ज्वार और चरीरी बुआई सारू 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर दर से आप बुआई करो तो 50 से 60 दिनार महीने चारों काटन लायक हो जावेला।
1: और चूंकि आपा किसान भैया तो पशु भी आपा रखा तो पशुआ माने इन बखत रोग रो खतरो बढ़ जाया करें। इन हफ्ते 2 काम जरूर करो देखो भाई लोगा पहले तो गलगोटू और लंगड़ो बुखार है जो टीको है वो आपने आसे पासे री कोई अगर पशु चिकित्सालय हुए तो बिर मन मुफत रमाने लगावे तो आप तुरंत जार बड़े जिका डॉक्टर साहब भी संपर्क करो और वो टीको लगवा लो। एक बात

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम सोनवाड़ा जिका भी किसान भाई बहन है आप सगला ने आप रोहित आलू साथी डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य
1: और बजरंग सारस्वतरा घना घना राम राम, राम, राम। नमामि भाई ने भी मारा घना घना राम राम
0: एकदम बजरंग भाई आपने भी मोकड़ा मोकड़ा राम राम। बजरंग भाई देखो अब जुलाई रो महीनो लाग गए
1: बिल्कुल सा वो पहलो सप्ताह है
0: हिंदी आप महीनो मानो तो अबे बैसा गयो जेठ गयो अबे
1: आषाढ़ लाग गयो बिल्कुल
0: सा पण आप अगर जिका ईस्वी सन देखा तो जुलाई महीनो है और आज तारीख भी कितनी है

0: दूसरी बात आ के आपार जो बाड़ो है बीरे माने कीचड़ ना हों दो कई बार बिरखा हुए तो कीचड़ हो जावे या पानी गिर जावे तो कीचड़ हो जावे तो बिस्सू कहीं हुए के जिका कीट है या परभक्षी कीट है बेच बेगा हो जाए करे पनपन लाग जावे तो बीर वास्ते भी क्या है फिनाइल और पानी है बिस्सू छिड़काव करता रहो ताकि खुरपका मुँहपका रोग से बचाव हो सके।
1: तो नमामि भाई बहुत ही अच्छी जानकारी दी इन हफ्ते आपा कहीं कहीं काम करा कुल मिलार मैंने आ समझ आई कि ओ बुआई रो समय है सप्ताह है इन हफ्ते आपा जिकी मेहनत कराला बीरो अपने पूरे बरस री जिकी आमदनी है बा इन हफ्ते री मेहनत माथे ही निर्भर करेला। उन्नत बीज काम में लेवा, बीज उपचार करावा, संतुलित खाद काम में लेवा और समय पर बुआई ए चार मंत्र है जिका आपने याद रखना है अपनावना है कम लागत में घणो उत्पादन आपने मिल सके है। मेहनत रे सागे आपा तकनीक ने भी जोड़ ले वाला तो आपारी जी की जीत है बा पक्की है।
0: तो अबे आपा सुना गीत खाने चला
1: बिल्कुल सर
0: किसान भाई बहन सामने निजर करा और गीत

0: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: जलवायु न्याय, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु संकट एक निष्पक्षता का भी मामला है। यह उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिन्होंने इसे पैदा करने में सबसे कम योगदान दिया है, जैसे कि गरीब लोग, महिलाएं, बुजुर्ग लोग और आने वाली पीढ़ियां। जलवायु परिवर्तन को मानव अधिकार के मुद्दे के रूप में देखने का मतलब है कि सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। यह उन लोगों को साक्षात बनाता है जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। यह देशों और पीढ़ियों के बीच जिम्मेदारी को निष्पक्ष रूप से बांटता है। जलवायु न्याय का मतलब है सबके लिए समानता, शांति और सतत विकास। क्या आप जानते हैं, यदि दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो अफ्रीका की आधी से ज्यादा आबादी कुपोषण के जोखिम में पड़ सकती है।
2: बजरंग भाई, एक बात है कि आपारा जो धरती है, ये धरती का श्रृंगार क्या है? वो श्रृंगार है आपारा दरखत है, रूख है। और जो महीना है ना जुलाई का महीना, ये महीने रे मायने क्या है कि आप जितना दरखत लगा सका वो ठीक रहसी, क्योंकि मानसून पहली फुहार है। भी फुहार सागे धरती जिकी है बा एकदम हरी भरी होने वास्ते तैयार हो जावे। और बीकानेर जेड़े क्षेत्र में ना पा रहे वहाँ तो अठे तो कहीं के जिका रूख है बे फकत छिया कोई देवे नहीं, बल्कि रेत ने भी रोक के बरखा ने बुलावे, किसान रे जीवन ने स्थायी आय रो साधन भी बनावे। तो आपा आओ मिल वृक्ष लगाएं, और नारो को नहीं है बल्कि खेत ने बचाने अभियान है। और इन सब मायने और सबसे लूठो जो कदम है ई वास्ते आपाने बेसी सु बेसी दरखत बे लगाना चाहिए।
3: बिल्कुल साना मम्मी भाई, देखो दरखत कोनी लगाना, आपाने लगाना है पौधा। पौधा लगावाला, दरखत रे रूप में तैयार कराला, आ आपारी जिम्मेवारी है, आपारो फर्ज है। और आपारे आने वाली पीढ़ी है भी सारू आपा भी ने की देर जावा, आ आपारी मोटी जिम्मेदारी है। नमामि भाई, काल रविवार हो और काल आपारे बीकानेर जिले रमाइने अठे गोचर भूमि है 11,000 खेजड़ी रज का पौधा है। बारो पौधा रोपण होयो बीकानेरी तमाम संस्थावा, स्वयंसेवी संस्थान, अठे अठेरा बच्चों और लुगाया ताई सगड़ा बढ़ चढ़ रही मायने इसो लियो। तो हूँ समझू के आ बहुत बड़ी चेतना जागी है अपारे इन आज की धरती है धोरा आड़ी इन्हें हरी भरी बनाने सारू। और रूख री आप बात करी तो बहुत ही फुटरी बात करी, रूख आपा ने देवे ही देवे काई छाया, फल फूल। और आप रो जिको भी इसो है वो सब समर्पित कर देवे आपा सारू। और ए रूख है आऊँ माटी तो संरक्षण होवे, भूजल है बी में बढ़ोतरी होवे, आपा अतिरिक्त आमदनी कर सका। खेती बाड़ी सागे जे आपा फलदार पौधा है, फलदार वृक्ष है, जिया बेर, आंवड़ा, अनार ए आपा लगावा तो आपा ने घनी आमदनी मिल सके। पशुधन वास्ते चारो तो मिले ही है और पर्यावरण रो संतुलन रेवे, सागे ही भांत भांतरा फायदा है। आपा अबार खेजड़ी, बेर, आंवड़ा, नीम, रोईड़ा, अनार, सहजन कोई भी भांतरो पौधो लगा सका, बिना रूख बना सका। पण ओ बात ध्यान रखनो है कि पौधो लगानो ही कोनी है, जिते ताई वो आपरे पगा माथे उबो नहीं हो जावे, आपरी हिफाजत खुद नहीं कर लेवे, जिते ताई बिना संभालने री जिम्मेदारी पूरी आपारी है।
2: तो अबे आपारी जिम्मेवारी एक और बने है, आपा चाला गीत लेखानी, मीठो मदरसो मीठ गीत है, वो मैं आपरे सामने नजर करूँ।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही

0: कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1 लाख दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: आरबीआई कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान।
8: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
7: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
8: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
7: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
8: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
7: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
8: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
7: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
8: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: बजरंग भाई देखो, अपराजिता घरे मायने भाई बेटी है, माँ है, बुआ है, काकी है, बढ़िया है, बाहर लोगा रोज को काम घर संभाले, मैंने कमान जावे पर बे घर संभाले। एक सोचा नहीं अगर आप बात कह के बे अगर घर संभालना बंद कर देवे तो घर तो लारे जावे पर, मतलब घर ने परोटनो जो काम है वह घर ही जिकी लुगाया है बे करे, पर आज वे लोग गए हैं उनसे भी आगे निकल गई है, बल्कि बेरोजगारों भी साधन अपना लागी है, सागे सागे दूसरा काम भी करने लागी है, मतलब घर भी संभाले और सागे एकदम मजबूत घर ही नींव बन गई है।
2: बिल्कुल सर,
1: मेरा कारण है कि सरकार जी को है बाबा ने संयोग कर रही है,
2: सरकार लोगों के सशक्तिकरण सारू अनेक भांतरा उपाय कर रही है, योजना बना रही है और जितनी भी सीटा है बट है महिला शक्ति वास्ते सीटा आरक्षित कर रही है कि इतनी सीटा माथे तो महिला वहाँ ही काम करे
1: एकदम। अब जो आपने बताऊँ मैं कि एक लखपति दीदी योजना भी सरकार शुरू करी है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू करी है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी स्वयं सहायता समूह रूप में मैंने भी काम शुरू करी है, सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य डिट्स अगर देखा तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जी की है भाभी शुरू करी है, और घरे माने लुगाया जी की है रसोई बनावे बारे धुएं सुबह आँखें खराब नहीं हुए कार जो नहीं दुखे ई वास्ते प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी शुरू करी है, आयुष्मान भारत अगर कोई माँ बहन है बीमार होगी हुए तो एक कार्ड बने हैं आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना बीरे मुझे भी क्या है कि बाने क्या है एकदम मजबूत मिले। और दूसरा अगर शिक्षा डिट देखा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रूप रे मायने जी को है शिक्षा क्षेत्र में बाने आगे बढ़ावे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना रूप रे माने बाने क्या है आगे बढ़ाने का काम कर रही है सरकार, ताकि क्या है कि कौशल भी इन्हें सिखावे और कौशल सिखा जाए सिलाई है ब्यूटिशियन है या खाने पीने चीज़ें हैं हेल्थ केयर है हर चीज़ें।

0: प्रशिक्षण देवे और पछे बने क्या है वजीफा भी देवे और देर पछे बने आगे बढ़ाने रो काम करे। अब जहाँ ड्रोन दीदी योजना है वह भी बहुत मोटी बात है। तो इस प्रकार के जहाँ महिला वैज्ञानिक योजना बहुत सी योजना है, बस जरूरी है कि चेतो रखना दी।
1: नमन भाई एक चीज हूँ और बताऊँ कि VBG राम जी योजना है इरमाइने महिलावादी भागीदारी सारू कुल श्रमिका में 33% महिलावादी भागीदारी है बात अनिवार्य करी जी है। बीकानेर में 55% सु 32 महिला वहाँ काम करे है और महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है बी में भी बहुत ही अच्छो काम हो रही है और भी भांत भांतरी योजनावा है बारा अधिकार सुनिश्चित करण सारू जाग जगावण सारू भांत भांतरा प्रयास हो रहा है। महिला सशक्तिकरण रो अर्थ केवल आर्थिक मदद को नहीं है बल्कि निर्णय लेने री फैसलो लेने री आज़ादी है। जब महिला रे हाथ में बैंक पासबुक होवेला मोबाइल माथे बाजारी जानकारी होवेला तो घर में भी बात सुनी जावेला और गाँव रो विकास होवेला।
0: तो अबे आपा साला गीत लिखानी अगलो गीत सुनाओ सा बहुत बढ़िया सा गीत।

0: तो साहब आज सावे रो महीनो है, सावो भी चाल रही है सागे सागे, तो ऐसे सावे जैसा गीतरला मैं आपने सुना यहाँ, पर सागे मौसम भी तगड़ो चाल रही है, छाड़ छिड़को हुए है, तो आपारा जगह पशु जिका है माने ईसु बचाव रखवाणो है, क्योंकि पशु ने आपा खोल देवा ई भरोसे के भाई ठीक है बारे घूमे, तो ध्यान रखो एक तो खुले रे मायने कोई भी काम करो तो थाने भी ध्यान रखना पड़से, जे बादल गरजे तो काम रोक देवो, खेत माने ट्रैक्टर है, हल है, पावड़ा है, दंताली है या दूजा लोहेरा जिका सामान बना छोड़ और अड़गाव जाओ। कई बार आप देखा नहीं कि बिजली पड़ जाए कर बीर माथे, तो ओ भी कारण हुए, और पेड़ हेठे तो इस मौसम मने कदे भी नहीं खड़ा होना चाहिए, और क्योंकि कई बार डाड़ा टूट जावे बिजली राज की बिजली पड़ जावे, तो ई वास्ते दूर रहो या फिर बिजली राज का खंभा है बासु भी दी रहो, पर एक है कि अकड़ू बैठा करो, यानी खुले मैदान माने कड़ी फंस जाओ, दोनों पैर जिका है बिना जोड़ अकड़ू बैठ जाओ, माथो ऐठे झुकाई लो, कान बंद कर लो, जमीन पर सोवो मत, तो ये बेहतर थोड़ो ध्यान रखना चाहिए।
1: ना मामी भाई बहुत ही अच्छी बात बताई कि खराब मौसम में आपा आपारो खुद रो और आपारे पालतू पशु और बचाव किया करा, कि अतिवृष्टि है, ओलावृष्टि है या और भी कोई कारण है, तो आपा जब खेत में एकला हुआ तो आपा ने कहीं कहीं काम करना है, आपारे पशुओं ने भी संभालना है और आपारे खुद रो भी ध्यान रखना है, आपा ने पानी से दूर रहना है, कोई नाडी है तालाब है भी दूर रहना है, और आपारे पशुओं ने भी पानी से बचावनो है, पशुशाला में पानी भेड़ो नहीं होनो चाहिए, ई बात रो भी पूरो सावचेती से ध्यान रखना है।
0: और अबे चालता एक और गीत सुना सा, चूंकि सावो है तो बिसो एक और गीत सुना।

0: तो वा सा नमा में भाई की ब्यावरों की सुनायो आप बहुत ही जोरदार और लागे हाथ अपा बात करता चला मौसम रही। तो मौसम है जेको देखो आपरा रंग बिरंगा तेवर दिखा रियो है, मानसून भी है तो बिरखा होवेला अपर अठे अलर्ट जिको है मौसम विभाग रो अलर्ट जारी करोड़ो है। तो आपा ने बुवाई सारू और अपर खेत रे मायने सावधानी सु अगला काम संभालना है।
1: और अब सिंजारी बिड़ा होगी है तो चाल चालता सुना एक हरजस।

0: तो सा सिंजारी बेड़ा हो गई है और अबे भगत हो गयो है आप सो सीख लेवण रो। आज्ञा देवो आप अपना इतालो साथी डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य ने
1: और बजरंग सारस्वत ने
0: घणा घणा
1: राम राम, राम।

अभी हमारे ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे ग्रामीण जगत और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे थे बजरंग सारस्वत और डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 7:45 हुए हैं और ये समय है हमारे श्रोताओं के लिए सुगम संगीत का। तो लीजिए सुनिए, सुगम संगीत में पहली आवाज़ हो गई मिताली सिंह की।

भूपेंद्र सिंह की आवाज़ के साथ ही सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, रात्रि के 8 बजने को है और ये समय है हमारे श्रोताओं के लिए फिल्म संगीत का। लीजिए फिल्म संगीत में अमाल मलिक और केके की आवाज़ में आप गीत सुनिएगा फिल्म एयरलिफ्ट से।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म पहली से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत में अगली आवाज़ होगी पेपॉन की और आप ये गीत सुनेंगे फिल्म मद्रास कैफे से।

श्रेया घोषाल और उमर नदीम की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म यमला पगला दीवाना से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत में अगली आवाज़ सुनिएगा, स्वानंद किरकिरे और उनके साथ में है अमिताभ भट्टाचार्य और ये गीत आप सुनेंगे फिल्म लुटेरा से।

नंदनी शिरीकर और विशाल ददलानी की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म रावण से। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं, अभी रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। लोक संगीत में पहली आवाज़ आप सुनिएगा समंदर खान की।

0: सीमा मिश्रा और मुकेश की आवाज़ के साथ ही सुगम संगीत लोक संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ठोला मारू चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा समाचार संध्या, तत्पश्चात न्यूज एट 9।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।

0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
1: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
3: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क,

0: रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
1: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए, और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
2: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्लाह अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की

के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्स

0: फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6th स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्र गिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his 3-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. Huge crowd gathers in Tehran to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in round of 16 match at Arlington in US tonight. Prime Minister Narendra Modi arrived in Jakarta today on the first leg of his high-stake 3-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated the relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A report from a correspondent from Jakarta covering Prime Minister's visit.
2: A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances were organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. Members of the Indian diaspora also greeted him enthusiastically. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. The discussions are expected to focus on strengthening cooperation in trade, investment, defense, maritime security, digital technology and cultural exchanges, further reinforcing the comprehensive strategic partnership between India and Indonesia. Speaking to Akashvani, members of the Indian diaspora expressed excitement over the Prime Minister's visit and voiced confidence that it would further strengthen bilateral ties and create new opportunities for trade and investment. Shrondipan Dashgupta, Jakarta, Indonesia.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of the 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee,

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म बेताब से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अगला गीत सुनिएगा मन्ना डे और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में फिल्म बॉबी से।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत ही संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिएगा पुरानी फिल्मों से गीत। पुरानी फिल्मों से गीत के अंदर पहली आवाज़ होगी लता मंगेशकर की, उनके साथ में हैं आशा भोसले जी, और ये गीत आप सुनेंगे फिल्म उत्सव से।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म लम्हे से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से गीत। लीजिए पुरानी फिल्मों से गीत में अगला गीत सुनिएगा। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत होगा फिल्म दीदार यार से।

अनूप घोषाल की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म मासूम से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अभी आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से गीत। लीजिए अगला गीत सुनिएगा फिल्म पाकीजा से, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये प्यार भरा नगमा आप लोगों के लिए।

0: कविता कृष्णामूर्ति की आवाज में अभी आपने गीत सुना फिल्म 1942 ए लव स्टोरी से। इस गीत के साथ ही पुरानी फिल्मों से गीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसमें आप कलाकार को सुन पाएंगे पंडित कैलाश चंद शर्मा के वांसुरी पर गायन को।
1: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी वादन। कैलाश शर्मा का संगीत जगत से परिचय बचपन में ही हो गया था। बांस से बने इस वाद्य यंत्र से निकलने वाली मधुर ध्वनियों से प्रेरित होकर उन्होंने नई दिल्ली स्थित गंधर्व महाविद्यालय में श्री प्रकाश एन सक्सेना से बांसुरी सीखना प्रारंभ किया। बाद में उन्होंने पंडित विनय चंद्र मोदगल्ले से भारतीय शास्त्रीय संगीत की बारीकियों का भी अध्ययन किया। बांसुरी कैलाश शर्मा के जीवन का अभिन्न अंग बन गई और उन्होंने निरंतर अभ्यास जारी रखा। उन्होंने अंतर महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर की संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। तब से लेकर आज तक कैलाश शर्मा ने अपने व्यावसायिक जीवन में एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने भारत तथा विदेशों के अनेक देशों में व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं और उनके संगीत को अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई है। उन्होंने महान संगीत सम्राट पंडित रविशंकर के साथ अनेक अवसरों पर कार्य किया तथा विश्वविख्यात रंगकर्मी श्री पीटर ब्रुक द्वारा पेरिस में आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए उनका चयन किया गया। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा मध्य पूर्व के 10 देशों की यात्रा पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एकल वादक के रूप में प्रस्तुति देने के लिए भेजा गया। कैलाश शर्मा ने राजधानी में आयोजित अनेक प्रमुख संगीत समारोहों में एकल वादक के रूप में प्रस्तुति दी है, जिनमें विष्णु दिगंबर जयंती, शंकरलाल संगीत समारोह, सेहर तथा नैना देवी स्मृति समारोह प्रमुख हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित कैलाश चंद शर्मा। पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक व्हाइल ही वॉज स्टिल अ चाइल्ड। इंस्पायर्ड बाय द साउंड्स दैट इमेनेटेड फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ बैम्बू, he started learning the flute from Shri Prakash N. Saxena at Gandharva Mahavidyalaya, New Delhi. Later, he also learnt the nuances of the Indian classical music from Pandit Vinay Chandra Modgalya. The flute became an integral part of Kailash Chandra Sharma's life and he played on. Participating in and winning prizes at inter-college university level music competitions, since then Pandit Kailash Chandra Sharma has come a long way professionally, having performed a great deal in India and many countries abroad. He has worked with the great maestro Pandit Ravi Shankar on many occasions and was selected to participate in a workshop organized in Paris by the renowned theatre personality Mr. Peter Brook. He was sent on a tour for 10 countries in the Middle East by the ICCR to perform as a soloist. Pandit Kailash Chand Sharma has performed as a soloist in some of the major music

0: festivals that are held in the capital, such as Vishnu Digambar Jayanti, Shankar Lal Music Festival, Seher, the Naina Devi Memorial Festival, to name a few.
1: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित विनोद लेले। पंडित कैलाश चंद शर्मा अपने कार्यक्रम का आरंभ राग मालगुंजी से कर रहे हैं। विलंबित रचना एक ताल व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
0: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। कैलाश चंद शर्मा बिगिंस हिज फ्लूट रिसाइटल विद राग मालगुंजी। विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू एक ताल and Drut composition is set to Teen Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी पर बजाया राग मिश्र खमाज। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित विनोद लेले। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। विद दैट वी कंक्लूड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी दिल्ली। दिस प्रोग्राम केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
2: अभी आप सुन रहे थे रविवासी अखिल भारतीय सभा, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैलाश चंद शर्मा के बांसुरी वादन को। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ज पर। रात्रि के 11 बजे हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा हिंदी में समाचार, पश्चात अंग्रेजी में समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम

0: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand.

395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। साथियों, रात्रि के 11:10 हुए हैं। आज की हमारी दूसरी सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:51 पर पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।